0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नव दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

0: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
1: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं, या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
2: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें, चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
1: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ
2: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, I will start experiencing those qualities जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, I will start experiencing in myself and the result of that will be कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
1: डिप्लीटेड
2: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ये तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। तो इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children.
1: हाँ,
2: but parents are in a lot of pain.
1: खुद किस situation में है? तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएंगे?
2: That's the point. तो जैसे ही आपका relationship उसके साथ जुड़ता है जो इतना powerful है, तो उससे आपको vibration कौन सी आएगी? आज एक parent भी एक बच्चे के साथ ये relationship जोड़ सकता है, not like God, but if a parent has the power कि वो unconditional love दे stability के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर, सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है, वी ऑल लव ईच अदर वी से बट सो मेनी कंडीशंस वी अप्लाई एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिसएम्पावर्ड। लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, यू नो जस्ट लुक एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, वी आर लुकिंग एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
1: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, वंडरफुल,
2: नो पेन, राइट, नो एंगर, नो स्ट्रेस, नन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवर पावरफुल, एवर प्योर, एवर पीसफुल, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर?
1: ओह, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग,
2: दैट्स ऑल That I will start experiencing. कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic. लेकिन भगवान से जो वो unconditional power, love, purity मिलती है, that helps me to overcome my pain and overcome my old संस्कार. And that's why relationship with God का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी, लेकिन यस, being in the company of that ever pure, मुझे वो इतनी vibration, इतनी power मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ,
1: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। Wonderful, this is a beautiful way to look at the relationship. अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है, मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में, कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल?
2: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है. एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन. हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच. एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच. अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है. लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी. और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड. एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ. मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल. एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन. यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए. लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं, तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन? अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. सो आई कैन शेयर, बट आई डोंट गेट द पावर जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ. अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है. नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ. रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ. आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन,
1: ये होना ही था,
2: या आपने ऐसा कर दिया, ये आप
1: इस हद तक,
2: या यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं. ठीक है, इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर. तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता. लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
1: वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा.
2: हाँ. वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया. अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा?
1: एंड
2: जब हम दर्द में होते हैं, हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है? वी नीड लॉट ऑफ लव. आई नीड अ सोल हु विल गिव मी सो मच लव दैट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन. लेकिन आज हम किसी से भी अपना पेन शेयर करें तो हमें रिटर्न में कोई, यू नो, वी स्टिल गेटिंग पेन. सो व्हेन आई शेयर माय प्रॉब्लम, माय कॉन्फ्लिक्ट, माय पेन विद हिम, इट इज़ नॉट दैट, यू नो, जस्ट द शेयरिंग डज द वर्क. एक तो शेयरिंग करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो इन रिटर्न मुझे फिर भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती कि आप जो हो, जैसे हो, आई स्टिल लव यू, दिस हेल्प्स मी टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल ओवर अगैन. तो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं. तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पढ़नी पड़ती. पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. माई एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माई थॉट. बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट? ये तो मुझे क्रिएट करना है, आई क्रिएट द थॉट. लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते हैं।
1: मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है।
2: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है? परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती। तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई, और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने के। जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवर पावर करता है। अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवर पावर करती है, एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
1: उनका फोन आ जाता
2: है, तो वो कब होता है? जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है। सो बेसिकली ही इज एवर रेडी।
1: अच्छा, ही इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड। यू नो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू You are there personally. But if I want to get connected to my daughter or
2: see,
1: like anyone
2: else, I may
1: else,
2: not be there personally. Sometimes I could be sitting here, but I'm not here. If my mind is there, mera man ho sakta hai na, main aapse baat kar rahi hoon, lekin man kahin aur hai. To aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga, kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain?
1: To main ye janna chahti hu, log bhi ye janna chahenge ki when I get connected to him, matlab jab main unko yaad karun, तो क्या वो कनेक्टेड मुझसे है हमेशा?
2: Absolutely.
1: This is what I think some reassurance
2: people. हमेशा ही कनेक्टेड है। You know, it's like a transmitter जो continuously ट्रांसमिट कर रहा है। अब सिर्फ रोल किसका बचा है?
1: मेरा,
2: रिसीवर। कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए। अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया? बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी। मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया? ऑफिस याद आया। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा?
1: परमात्मा,
2: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया
1: था। अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही था।
2: वो तो है ही है, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, वो तो है ही है। लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड आई डेंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू। अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई, कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके आई एम अ प्योर सोल। तो सोल को याद कौन आएगा? सुप्रीम सोल। फिर वो अनुभव करना, ही इज ऑलरेडी देयर, लेकिन द मिनट आई ट्यून इन आई विल स्टार्ट experiencing the flow. तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं. पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माई कर्मा. अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं स्व परिवर्तन करते. तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारे थॉट्स को पुट असाइड करें सब कॉन्शियस माइंड में जाएं जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए. फिर परमात्मा की वो शक्ति वो एक एक जो पावर है हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं. वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम. फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है. नाउ आई एम चेंजिंग इट आई एम अ प्योर सोल चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ शांति के सागर का बच्चा हूँ. आई वॉन्ट के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए लेकिन इसको एम्बेड कहाँ करना पड़ेगा यहाँ सब कॉन्शियस में. तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर कॉन्शियस थॉट साइड पे कर सब कॉन्शियस लेयर को जैसे यू नो ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते उसमें से पुराने बिलीफ्स के बदले ये नया जो सत्यता है अभी वो बिलीफ ही है उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं. तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम. अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें फिर माइंड को साइलेंट करें उसके साथ कनेक्ट करें अपना काम करें. कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं कोई डिसीशन आपको लेना है कुछ भी करना है कनेक्ट टू हिम. कोई बात बोझ है शेयर विद हिम. तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
1: बाकी सब.
2: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए. वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माई रिलेशनशिप. फिर जो मेरा पर्पज ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना तो वो करना
1: आसान बहुत ईजी हो जाएगा.
2: एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन लव एंड बिकॉज आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आई विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आई गिव एंड व्हेन आई गिव माई रिलेशनशिप्स बिकम वेरी क्लोज. जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन फैकल्टीज हैं माइंड इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस संस्कार ये तीनों फैकल्टीज अपना अपना रोल प्ले करते. माइंड क्रिएट्स अ थॉट इंटेलेक्ट उसको तुरंत विजुअलाइज करता है. जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी तुरंत पिक्चर आ जाएगी तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया गॉड परमात्मा सुप्रीम सोल तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट. आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो अभी कहाँ पर है क्या कर रहे है. तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते तो वो कहाँ पर है तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता. तो घर याद आता कि घर हमारा द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट कंप्लीट प्योरिटी एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं. जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं. तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा. मन थॉट क्रिएट करेगा इंटेलेक्ट उसको हल्के से डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग. इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है. यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
1: बस
2: फिर वो मन वहां चला जाएगा. तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देम, सेड पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो इट्स नॉट अ पिक्चर. एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली. मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है. ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं. यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है. दिस इज ऑल मैटर. आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति. ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिकुटी के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस. यहाँ से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूँ. मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ. ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है संबंध अनुभव करने वाली. मैं शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. I am a pure soul, purity, divinity. ये तो मेरी अपनी नेचर है. I see myself अपने घर की तरफ चलते हुए. अपने आप को देखे वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है. धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ. गोल्डन रेड लाइट, complete space of purity and peace. आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी. आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ. अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा. इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर, पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर, वाइब्रेटिंग ऑल ओवर. मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ. आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था. मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ. मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं. मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूँ. देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है, और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ. ओम शांति.
1: ओम शांति। सर शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ख़ुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है। बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनामिक हो सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में हर बार की तरह आपको यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे सवाल होते हैं, जो भी हम प्रोग्राम में करते हैं, फीडबैक आप ही से मिलता है। आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचता है और साथ ही आपके सवाल भी आते हैं। इन सवालों का हम हर बार स्वागत करते हैं और आज इस कड़ी में इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में आप ही के सवालों पर आधारित बहुत सी बातें और करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक

0: एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में, कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। इन दिनों श्रृंखला चल रही है लाइफ स्किल्स की, जिंदगी जीने की कला, वो स्किल्स जो अब हम सीख रहे हैं, जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत बार बात करते हैं मेडिटेशन की, योग की, और उसके अनुभव भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम मेडिटेशन या योग में हैं तो क्या हमारे बॉडी पर और मन पर असर हो रहा होता है। बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवन, दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, आज बात मेडिटेशन से शुरू करते हैं कि उसको हम काफ़ी टाइम से उसके अनुभव कर रहे हैं और उनका अपनी लाइफ पर होता हुआ परिवर्तन देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमें हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम योग में हैं, या फिर मन पर उसका साइंटिफिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुई है। जो हमने थॉट्स की इफ़ेक्ट के बारे में समझा था कि टॉक्सिक थॉट्स की क्या इफ़ेक्ट होती है, तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे शरीर को एक कार के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कार में एक्सेलरेटर है और ब्रेक है। वो एक्सेलरेटर सिंपैथेटिक सिस्टम है और ब्रेक है वो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है। तो मेडिटेशन में वो ब्रेक लगती है।
0: ओके।
1: कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और स्लाइटली पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी वो बढ़ती है। उसके कारण बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। और इसको अगर पहले समझना हो बेसिक के भी होता भी कैसे है, तो ब्रेन को हम सहज रूप में समझ सकते हैं। अगर ब्रेन को ऐसे समझे कि एक ऊपर का हिस्सा है और दूसरा ब्रेन का अंदर का हिस्सा है। जो ऊपर का हिस्सा है वह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा है थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो आमतौर पर ये जो ऊपर का हिस्सा है वो अंदर के हिस्से को बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। और वाइस वर्सा भी सत्य है कि जब हम लॉजिकली सोचते हैं, तर्क से सोचते हैं, तो ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से पर प्रभाव डालता है, और जब हम इमोशनल होते हैं तो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर के हिस्से पर प्रभाव डालता है।
0: तो ये दोनों कनेक्टेड स्पेस है दोनों के बीच में।
1: कनेक्टेड है, एक्चुअली कनेक्टेड है। सारे वो जो न्यूरॉन्स है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, परंतु मेडिटेशन में यही बात होती है कि ये दोनों के बीच में एक डिसकनेक्शन होता है, वो डिटैच होते हैं। जो मेडिटेशन के अभ्यास में भी जब हम शरीर से डिटैच होते हैं तो ये डिटैचमेंट भी होता है, और वो डिटैचमेंट के कारण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होना शुरू हो जाती है। पहली तो यही इफेक्ट कि सिंपैथेटिक जो अराउजल एक्सेलरेटर है उससे आपका पैर हट गया तो क्या होगा, जो पहले भी समझाया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, सांस की गति फूल रही है, वह सब कम होगा। बल नॉर्मल भी है, हमारा ब्लड प्रेशर आज नॉर्मल है, फिर भी थोड़ा सा कम होगा कि जो स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सबसे पहली बेसिक इफेक्ट है।
0: ओके। तो ये तो बात रही कि एक क्वाइट इंटरेस्टिंग वे हम दिख रहा है कि जब एक ब्रेन के दोनों जो पार्ट्स थे उनको जो मेडिटेशन है वो डिटैच कर देती है। सर शिवानी,
2: मेरे को उससे एक लगा, आई डिडंट नो दिस बिफोर बट व्हेन आई वाज हियरिंग दिस नाउ, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं कि हम में से हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी की पर्सनालिटी लॉजिकल ज़्यादा डोमिनेटिंग है और किसी की इमोशनल ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस क्रिएट होने लग जाता है। यू नो, जो बहुत लॉजिकल है वो साथ साथ इमोशनल का भी बैलेंस क्रिएट करते हैं, और जो पहले बहुत भावनात्मक थे वो लॉजिकल। सो बेसिकली दैट लॉजिक एंड क्रिएटिव का भी बैलेंस आने लगता है। सो मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दिस टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, आई डिडंट नो दिस बट दिस डेफिनेटली वी एक्सपीरियंस कि हमारा लॉजिकल एंड इमोशनल साइड दोनों कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को बहुत बैलेंस में चलना शुरू हो जाता है,
0: क्योंकि दोनों एस्पेक्ट देखना शुरू हो जाते हैं।
2: बेसिकली दोनों में से कोई एक डोमिनेंट नहीं रह जाता, यू नो, एंड ऑल्सो वी आर एबल टू, यू नो, जस्ट इट्स अ बेनिफिट दैट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली कि वेन एंड वेयर टू बी लॉजिकल एंड वेन एंड वेयर टू बी इमोशनल, दैट डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑटोमेटिकली समवेयर आई थिंक वो हार्मनी में जा रहा है। कई बार पहले नहीं तो कहीं इमोशनल होने की जरूरत है, हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं। कोई डिसीजन लॉजिकली लेने की जरूरत है, हम इमोशनली लेना शुरू करते हैं। बट हियर समवेयर, और इसीलिए मेडिटेशन से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि लॉजिक एंड इमोशन का बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है।
1: दिस इज एट अ डीपर लेवल, और ये राजयोग की भी यूनिकनेस है, और भी कई मेडिटेशन की टेक्निक्स है जिसमें भी रिलैक्सेशन तो मिलता है, ये डिटैचमेंट हो पाता है, व्यक्ति रिलैक्स होता है, जो एक फंडामेंटल रिसर्च स्टडी जब हुई, आज से मैं समझूंगा करीब 40 साल पहले, जो फंडामेंटल रिसर्च स्टडीज हुई जिसमें जो योग कर रहे थे उन पर उन्होंने अभ्यास किया और यह पाया कि उनकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, शरीर एक इंजन की तरह है, जैसे कुछ गाड़ियां ज्यादा पेट्रोल यूज करती है, कुछ कार कम पेट्रोल यूज करती है, तो जिनका इंजन फास्ट काम कर रहा है वो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल यूज करती है, तो ऐसे ही जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो जब ज्यादा होती है उसका मतलब कि वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। जब मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो कम फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनका उपयोग होगा, और इस रिसर्च में यही देखा गया कि उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट थी वो करीब 40-50% कम हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गई, और जब फिजियोलॉजिकल बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुई तो काफ़ी फिजियोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई और साथ साथ साइकोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई। ये वास्तव में साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमारे थॉट प्रोसेस है वो स्लो डाउन होते, वो हार्मोनियस होने लगते, उसके कारण फिजियोलॉजी पर भी ये इफेक्ट होती है।
2: इसी से शायद हो रहा होगा कि अगर मन हल्का है तो बॉडी की भी थकावट नहीं महसूस हो रही, क्योंकि बॉडी की उतनी एनर्जी फिर शायद नहीं कंज्यूम हो रही। एंड वी आर डूइंग द कॉन्ट्ररी आज, अगर हम बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं तो बहुत कम काम करके भी शायद हम जल्दी थकावट महसूस करते हैं।
1: उसमें वो दूसरा इश्यू है जो हमने टॉक्सिक थॉट के समय भी डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम ब्लड मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलता है, इसके कारण ग्लूकोज का एंड रिजल्ट लैक्टिक एसिड होता है। अब मेडिटेशन में इसका रिवर्सल है कि जब मेडिटेशन करते सिंपथेटिक अराउजल कम हो गया तो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर कम आया, ब्लड वेसल्स थोड़ी सी डायलेट हुई, ज़्यादा ब्लड पहुंचने लगा, ज़्यादा ब्लड पहुंचा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिला, ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो लैक्टिक एसिड का प्रमाण कम हो गया। और ये भी जो हम स्लीप के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, इस बात की भी तुलना की गई है कि आप आधा घंटा नींद करो तो भी लैक्टिक एसिड लेवल कम होता है, परंतु अच्छे से अगर आधा घंटा मेडिटेशन का अभ्यास करो तो लैक्टिक एसिड का लेवल करीब 3-4 गुना ज्यादा कम होता है, तो जिससे सिद्ध होता है कि इट इज ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स मोर बेनिफिशियल टू रिड्यूस लैक्टिक एसिड एंड गिव रिलैक्सेशन।
2: दैट्स व्हाई वी फील हाफ एन आवर ऑफ मेडिटेशन इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 2 आवर्स ऑफ स्लीप। तो अगर थोड़ा जल्दी उठ भी गए, नींद का त्याग किया भी है, अगर पहले 5-6 बजे उठते थे और अब 4 बजे उठे, जो ताकत, क्योंकि हमारी ये साइकोलॉजी है ना, मैं जल्दी उठा, आई हैव नॉट गॉट दैट एनर्जी, लेकिन जब आप अपने आप को ये समझाएंगे कि जो ताकत, जो एनर्जी मैं 2 घंटे सो कर क्रिएट कर सकता था, मैंने आधा घंटा मेडिटेशन करके क्रिएट कर ली, एंड आई स्टिल गॉट 1.5 आवर एक्स्ट्रा टू डू मोर वर्क।
1: ओनली थिंग, इसमें क्वालिटी मेडिटेशन चाहिए, अच्छे से मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ये बेनिफिट होगा।
0: अब आते हैं कि मेडिटेशन हो पाना ही, यू नो, मेडिटेशन के अनुभव, जैसा आपने कहा कि वो अच्छा होना चाहिए, हाउ विल आई नो वेदर इट्स अ गुड मेडिटेशन या मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा?
2: सबसे पहले एकदम कॉन्शियस लेवल पर भी अगर देखें तो आप अपनी थॉट्स को चेक कर रहे हैं। अगर मैं मेडिटेशन करने बैठा हो, और मेडिटेशन क्या है, जैसे गिरीश भाई ने कहा, अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन है, कई मेडिटेशन टेक्निक्स आज हैं जिसमें भाई बहने ट्राई करते हैं कि सोचना ही बंद कर दें। मेजॉरिटी पीपल फील दे स्टिल नॉट लर्न मेडिटेशन, उन्हें लगता है मेडिटेशन मीन्स कोई एक पॉइंट पर फोकस करो एंड सोचना बंद कर दो। दैट्स नॉट व्हाट वी डू इन राजयोगा। पर कई मेडिटेशन टेक्निक्स में कोई एक पावरफुल वर्ड या पावरफुल यू नो सिलेबल लेकर उसको रिपीट करते जाते हैं, जिसको कहेंगे मंत्र रेपिटेशन। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली प्योर एलिवेटेड थॉट्स चूज करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो जब हमें ये लक्ष्य रखा हमने कि ये थोड़ा सा समय जो मैंने निकाला है, इसमें मुझे कॉन्शियसली कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, अपने बारे में, द सोल एंड परमात्मा के बारे में। अब अगर बीच में थॉट्स आ रहे हैं, ऑफिस, बच्चे या एनीथिंग एल्स दैट हैज हैपेंड, देन आई एम नॉट मेडिटेटिंग, आई एम ओनली सिटिंग, आई एम सिटिंग, बट वो मेडिटेशन तो हो नहीं रहा। मैं अभी भी बैठ के शायद नेसेसरी थॉट्स या हो सकता है कई बार नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ बैठे हुए हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं हो रहा. सबसे पहले तो उसी लेवल पर चेकिंग हो जाती है, फिर अगर वो राइट कॉन्शियसनेस में हम हैं और उसको राइट तरह से कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस होने लगेगा ना, और फिर उसका प्रैक्टिकल जीवन में प्रूफ दिखाई देगा, संस्कार परिवर्तन, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका तो फिर जीवन पे हर एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ जाएगा.
0: डॉक्टर पटेल, ये बात तो रही कि जो सही मेडिटेशन है वो हमें अनुभव पता चलने लग जाएगा, अब उसको टेक्निक
1: तो और मैं आपको थोड़ी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना चाहूँगा. और एक जो रियल चेंज होता है कि जिस पर हमने रिसर्च भी की, जैसे मैं ब्रेन का यह समझाया कि इस प्रकार से जब डिटैचमेंट होता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है उस पर वो आ जाता.

0: सेकेंड में कितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट हुए उसको मेजर करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक सेकेंड में करीब 25-30 जितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आते हैं, जिसको कहा है बीटा वेव्स। और जब हम थोड़े रिलैक्स्ड है, पीसफुल है, तब 8 से 13 के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं, जिसको अल्फा वेव्स कहा। और जब व्यक्ति डीप रिलैक्सेशन में जाता है या तो गहरी नींद में है, तब थीटा वेव्स निर्माण होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है 4 to 7, और 4 से जो कम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वह है डेल्टा वेव्स। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो हमने रिसर्च की सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जो वहाँ के ही डॉक्टर्स थे, कुछ मैनेजमेंट स्टाफ भी था, उनको 2 हिस्से में डिवाइड किया। किसी को नहीं पता था कि भी हम कौन से ग्रुप में आएंगे। 2 चीट्स थी, एक में लिखा था M, एक में लिखा था C, और उन्होंने चीट्स उठाई। लोग हंसते हंसते आए, किसी ने कहा मेरा M निकला, किसी ने कहा मेरा C निकला। तो M का मतलब था मेडिटेशन, कि जिनका M निकला है उनको मेडिटेशन करवाना है, और जिनका C निकला है मतलब कंट्रोल, कि उनको म्यूजिक सुनाना है। कि इन सब का करीब 18 लोगों का किया था, उन सब का पहले तो बेसल उनका EEG लेवल मेजर किया, और फिर जिनका C निकला था उन्होंने करीब 20 मिनट सॉफ्ट म्यूजिक सुना। उसके बाद फिर से उनका EEG किया गया, और फिर उनको एक स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक दिया। पहले से ही सोचा था कि भी सबका एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक हो, कि भी 100 में से 7 कम करो, उसमें से और 9 रिड्यूस करो, ऐसे एक सेटअप बनाई थी। वह जिनको म्यूजिक सुना है उन्हें भी वह कराया गया, और जिनको M निकला था उनको मेडिटेशन कराया। बस सिंपल, कुछ समझाया भी नहीं गया था, उन्हें पता भी नहीं था कि राजयोग क्या है। बस थोड़ा सा कहा कि अभी आपका M निकला है, आपको मेडिटेशन करना है, आप ऐसे आराम से बैठिए, मैं आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स दूंगा, उस पर आप बस मन को उसी में एकाग्र करना, वैसे ही आप इस बात को फील करना। और फिर से उनका भी EEG किया गया। रिजल्ट्स आप मानेंगे नहीं, वर अमेजिंग। और इतने तो अच्छे कि भी तुरंत ही उन्होंने उस स्टडी को पब्लिश कर दिया। पहले तो जो न्यूरोलॉजिस्ट एसोसिएट थे उनको भी इतना विश्वास नहीं था कि भी क्या रिजल्ट्स होंगे। एक जो बात तुरंत सामने आई, एक तो जो हंसी में मुझे भी ये लगा इस रिसर्च के दौरान कि हम मेंटल एरिथमेटिक में कितने वीक है। जब उनको कहते थे कि भी 100 में से 7 कम करो तो कहेंगे 93, फिर कहेंगे 9 रिड्यूस करो तो सोचने लगते थे। और जिन्होंने म्यूजिक सुना था, भल सुनते समय तो उनमें भी अल्फा पैटर्न आई, लेकिन जैसे ही मेंटल एरिथमेटिक शुरू हुआ ऑलमोस्ट सब में बीटा पैटर्न आ गया,
1: स्ट्रेस आ गया ना।
0: लेकिन जिन्होंने मेडिटेशन किया था उनमें ऑलमोस्ट 80% में बीटा पैटर्न नहीं आई,
1: अल्फा में रहे।
0: हाँ, उनके अल्फा आप ग्राफ्स में भी देख सकेंगे कि उनमें जो अल्फा वेव्स है वो मेंटेन हुए। ये जो ग्राफ है जिसमें वो दोनों लेवल में भी, पहले बेसल और फिर मेंटल एरिथमेटिक के बाद डिफरेंस क्या है वह दिखाया गया है। जिन्होंने म्यूजिक सुना है उसमें आप देखेंगे अधिकतर सब में बीटा वेव्स बढ़ गए हैं, और अल्फा, थीटा और डेल्टा है वह कम हुए हैं। परंतु जिन्होंने मेडिटेशन किया उसमें मेजोरिटी में अल्फा मेंटेन हुए हैं। रिसर्चर्स को भी इतना आश्चर्य लगा कि ऑलमोस्ट 30% में थीटा और डेल्टा पैटर्न बढ़ी है।
1: अच्छा,
0: कि विच इज अमेजिंग। तो दिस इटसेल्फ शोज कि ये जो राजयोग की सरल विधि है, आमतौर पर तो ये मानते हैं कि आपको सालों का अभ्यास होना चाहिए तब आप मेडिटेशन कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया उनको कोई बात समझाई नहीं गई थी, बस 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया और फिर मेडिटेशन का अभ्यास कराया, तो इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ।
2: इससे एक और बात बहुत क्लियर होकर आती, कई बार हम कहते कि स्ट्रेस है, आई यूज म्यूजिक एज अ रिलैक्सेशन या कोई भी और स्ट्रेस बस्टर हम यूज करते हैं और अच्छा भी लगता है उस टाइम, लेकिन जैसे ये रिसर्च है इससे समझ में आया कि उस टाइम तो अल्फा स्टेज में गए, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी में आए फिर स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो फिर बीटा स्टेज में चले गए। इसका मतलब सिर्फ आप जितनी देर उस स्ट्रेस बस्टर के साथ होंगे, चाहे वो म्यूजिक है, वो जॉगिंग है,

0: जो भी है, आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा नॉट ड्यूरिंग द डे. लेकिन अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उस टाइम नहीं अल्फा में है, उसके बाद जब आप एक्टिविटी में भी चले गए तब भी आप अल्फा में रहेंगे. अगर फर्स्ट टाइम जो कर रहा है दैट पर्सन कैन गो इन टू अल्फा स्टेज. तो इसका मतलब अगर हम रेगुलरली करेंगे और फिर दिन में कई बार बीच बीच में करेंगे तो हम बीटा की बजाय अल्फा स्टेज में ही या शायद उससे भी लोअर स्टेज में शुरू रहना करेंगे. दादी जानकी जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ब्रह्मा कुमारीज के, उनके ऊपर ये रिसर्च हुआ है और डॉक्टर्स ने और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि दादी जी हमेशा डेल्टा स्टेज में होती हैं, ऑलवेज. उनको भी इसी तरह कोई प्रॉब्लम बताई, फिर कोई एरिथमेटिक इशू, फिर रिलैक्स, हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, शी वॉज ऑलवेज इन द डेल्टा स्टेज बिकॉज दिस इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस.
1: लैंगली पोर्टल साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई जो शिवानी बेन बता रहे हैं, और उसमें बस यही बात उन्होंने देखी कि कैसे दादी जी वो डेल्टा को मेंटेन कर रहे हैं. और वहां भी ये बात आई थी, और भी ब्रह्मा कुमारीज के मेंबर्स पर रिसर्च हुई थी. तो इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कुछ थे उन्होंने बस एक साल ही मेडिटेशन का अभ्यास किया था, फिर भी अच्छा उनका अल्फा या थीटा पैटर्न है वो मेंटेन हो रही थी. और ये बेनिफिट क्यों होता है, यहाँ पर भी मैंने जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनको भी ये बात को एक्सप्लेन की कि ये टेक्निक ऐसी है भी, और टेक्निक में हम और कोई चीज़ का, एक्सटर्नल चीज़ का आधार लेते हैं, तो जब तक आपने उसका आधार लिया है आपको बेनिफिट हुआ, परंतु जैसे ही बाहर आए परिवर्तन हो गया. परंतु इस टेक्निक में ही उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज किया गया था भी. यू आर अ स्पिरिचुअल एनर्जी, आप में वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, दैट इज यू. और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इज फुल ऑफ पीस. यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस. यू कैन यूज योर बॉडीली ऑर्गन्स इन अ पीसफुल वे. वी आर टोटली डिटैच्ड.
2: व्हाई डोंट वी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, उसको ही अनुभव क्यों ना करें. अभी हमारे सब दर्शक भी हैं साथ जुड़े हुए और इतना इंस्पायरिंग राइट नाउ तो है कि मेडिटेशन जो है वो हमारे जो थॉट्स की स्पीड है उसे डिक्रीज कर सकती है.
1: बिल्कुल. राजयोग के अभ्यास में जैसा सब जानते भी है कि हमें कोई स्पेशल पोस्चर की आवश्यकता नहीं है, आराम से सहज नेचुरल वे में बैठना है, संभव हो तो आंखें खुली भी हो, ताकि हम वही अभ्यास डालेंगे तो जब दैनिक कार्य कर रहे हैं तब भी उस अवेयरनेस को हम मेंटेन कर सकेंगे. तो मैं आपको एक थॉट पैटर्न्स देता हूं जो पॉजिटिव थॉट्स हम मेडिटेशन के दौरान जनरेट करते हैं. आमतौर पर तो कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, पर हम थोड़ी देर में उसका आपको एक टेस्ट देने की कोशिश करूंगा. मैं अपने आप को बाह्य जगत से न्यारा अनुभव कर रहा हूं. मैं एक दिव्य चेतना आत्मा हूं. मैं अपने विचारों को दो भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करता हूं. यह शरीर एक साधन मात्र है. मैं आत्मा इस शरीर का उपयोग कर रही हूं. मैं एक ज्योति बिंदु, दिव्य आत्मा हूं. जैसे ही मैं इस दिव्य चेतना के बारे में सजग होता हूं, न्यारेपन का अनुभव कर रहा हूं. इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाता हूं. मैं आत्मा शांति से भरपूर हूं. मेरा स्वधर्म ही शांति है. जैसे ही मेरी बुद्धि इस बात पर एकाग्र होती है गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा जो अविनाशी है, इटर्नल है, इस बात को समझ करके ही मैं निश्चिंत हो रहा, एकदम हल्कापन लगता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए सब आत्मा में समाया हुआ है। बस इस सजगता को कायम रखते मैं अपनी सारी दिनचर्या एकदम हल्केपन से डिटैच होकर के कर सकता हूँ। धीरे धीरे मैं वापस इस शरीर के बारे में जागृत होता हूँ, परंतु मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस अनुभूति को कर्म करते हुए भी कायम रखूंगा। ओम शां शां। तो ये छोटा सा, वास्तव में बहुत ही शॉर्ट था, परंतु एक टेस्ट का अनुभव होगा, और गहराई में जाए तो और डीप अनुभूति मेडिटेशन में कर सकते हैं।
2: असल से शिवानी, जो ये अनुभव आज बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, अगर आज इसे यहाँ अनुभव करेंगे, अपने घर पे कर रहे हैं, तो किन थॉट पैटर्न्स पर रहें वो, ताकि वो सही रास्ते पर चल पाए।
0: जो अनुभव अभी किया, अभी पक्का करें कि रोज़ सुबह इसको शुरू करना है। इससे इमिजिएटली क्या किया आज दिन तक शांति के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, क्या कुछ ना करने के लिए तैयार थे? 3 मिनट बैठे बैठे, ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत, वी एक्सपीरियंस्ड व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। इट वाज जस्ट दैट वी वर लुकिंग फॉर इट आउटसाइड, वी एक्सपीरियंस्ड इट हियर। आज दिन तक इसको प्राप्त करने के लिए और चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट किया, अपने को अपने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो लेट्स आज पक्का करें कि आज रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, कम से कम 2 बार तो ये पक्का कि सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और बीच बीच में, इस 2 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, जस्ट 2 मिनट्स इसको करेंगे तो हमारी भी ब्रेन वेव्स वो अल्फा स्टेज में रहेंगे, सो वी विल बी वेरी रेस्टेड एंड रिलैक्स्ड वाइल बीइंग वेरी बिजी आउटसाइड। अंदर इजी, बाहर बिजी। बाहर बहुत काम करना है, बहुत करना है, लेकिन अंदर इजी रहकर करना है तो और भी ज्यादा काम कर पाएंगे।
2: ये कंफर्ट लेवल,
1: वास्तव में टाइम कम था तो मैंने वो एंड में, अगर टाइम अधिक है तो ये जो हमने शांति का अनुभव किया कि मुझ आत्मा में वो शांति का खुट खजाना है, उसको शरीर में भी हम भेज
2: सकते,
1: वो जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं उसको फील भी करो कि सारी बॉडी में स्प्रेड हो रहे, सभी बॉडीली ऑर्गन्स हार्मनी में जा रहे हैं। इवन स्पेसिफिक कोई बीमारी हो तो भी वह स्पेसिफिक वाइब्रेशंस है, वह हीलिंग है, उस ऑर्गन को भी हम भेज करके हील कर सकते हैं।
2: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, ना सिर्फ ये अनुभव आपने हमें आज करवाया, बल्कि पूरा ज्ञान, हमें अपने बारे में अवेयरनेस, और जिस तरह से थॉट्स के पैटर्न और किन स्टेजेस में हम जाते हैं उसके बारे में हमें अवेयर कराया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
2: आज जो बात हमने की है, सचमुच अगर हम देखें, हमने बाहर बहुत सारे रिसोर्सेस को यूज़ किया है, क्योंकि हम रिलैक्स होना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आज इस मेडिटेशन के अनुभव ने ये बता दिया कि सचमुच अपने अंदर है, अपने साथ ही काम करने की ज़रूरत है। ये सारे अनुभव तो हो जाएंगे, शांति को हमने अनुभव किया यहाँ बैठे बैठे, हर एक ने अपने अपना, हर एक का अपना अपना अनुभव रहा, प्रोसेस चाहे यहाँ हो रहा था, हम इस थॉट पैटर्न के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यही अगर हम म्यूज़िक सुनते तो बाहरी सोर्सेस पर हमें डिपेंड होना पड़ता। अगर ये, जैसा कि कहा डॉक्टर पटेल ने, अखुट खजाना जो कोई नहीं लेकर जा सकता, वो मेरे अंदर है, तो उसे अभी तक क्यों नहीं अनुभव कर रही थी। ट्राई करें, ये अनुभव सचमुच हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएगा। मन में कोई बात है, कोई सवाल, आप हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे भी मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: भारत।
1: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है, शनिवार हम लोग आप सभी से रूबरू होते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के साथ, जोड़ देते हैं आपको आज के दिन। विशेष हमारे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नए नए करियर के बारे में बात करते हैं, तो अलग अलग जो चीज़ें हैं और बहुत सारी करियर की ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी कभी नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग फील्ड में रहेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन स्कूल टाइम में ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलता। इसीलिए लोग जो हैं स्कूल में, आप देखेंगे कि कई बार कुछ ऐसे पिकनिक कराते हैं कुछ स्कूल के माध्यम से कि आपको कोई फैक्ट्री दिखाने लेके गए, कोई आपको किसानों का खेती काम करते हुए उनको दिखाना शुरू कर दिया, पहाड़ों के बीच में आपको लेके गए। तो इस तरह का ये जो बाहरी का आवरण है जो हमारे स्कूल के साथ साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ एज ए पिकनिक माना मौज करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ें हम लोग देख कर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर आपको सीखना होता है, लर्निंग होता है कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। अगर फैक्ट्री देखने गए तो फैक्ट्री कैसे बना और उसमें क्या चीज़ें बनती है, कितने लोग लगते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अगर आप कोई बिजनेस चीज़ें देखने जाते हैं, कुछ ऐसे मार्केट में चलेंगे तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में सारी चीज़ें आती कैसे हैं और डिलीवर कैसे होती हैं, लोगों के पीछे पास में कैसे पहुँचती हैं, वो आपका अगर सोचने का तरीका आ जाए आपको तो आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं या समझते हैं या किस तरह की आपकी सोच है। तो सिर्फ पिकनिक है, मौज मस्ती के लिए गए, ऐसा सोच के जाएंगे तो फिर आप कुछ उठा नहीं पाएंगे, है ना। तो कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आपको करियर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें और किस तरह से ये काम किया गया है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ पंजाब लुधियाना से विशेष हरि किशोर जी आए हुए हैं और आप वाटर फिल्टर का काम करते हैं और बात लंबे समय से, तो उसके बारे में जानेंगे आपसे। लेकिन आपको पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। कैसे हैं हरि किशोर जी आप?
4: जी बहुत ही बढ़िया
3: जी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपकी बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा कराइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और वहाँ का परिवेश कैसा था, तो हमें अच्छा लगेगा।
4: जी भाई जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया बाबा। एक्चुअली भ्राता जी, इस शरीर का नाम परिचय देना चाहते हैं। इस शरीर का नाम हरि किशोर है और बचपन से ही स्कूल टाइम में गाने का बहुत शौक रहता था और नाट्य कला में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा और समय अनुसार ये अवसर भी मिले और स्कूल में कविताएं, गीत और अभिनय करते और ये सब करने का काफ़ी इंटरेस्ट रहा शुरू से, यानी कि तो ये सब करते हुए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हमारे जो लौकिक पिताजी थे, यानी कि हमारे पिताजी, वो आर्मी में थे।
3: अच्छा,
4: मिलिट्री में। तो जैसे उनकी आर्मी की ड्यूटी होती थी जहाँ पे भी, तो वो हमें अपने साथ ही रखते थे, यानी कि फैमिली को। तो फैमिली को साथ जैसे रखते थे तो वहीं पे हमारा पढ़ना लिखना, हमारी परवरिश वो आर्मी कैंपस में ही होती थी, यानी कि वहाँ के जो फैमिली क्वार्टर्स होते थे वहीं पे रखा जाता था। तो पढ़ाई भी हमारी जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, ट्रांसफ़र होती थी, तो उनके साथ साथ ही वहाँ जाना होता था। तो ऐसे ही बहुत सारे मौके मिले आर्मी में भी, जब उनके वो कुछ कार्यक्रम होते थे तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेंट करने का मौका मिलता था। तो ऐसे करके अभिनय वगैरह करते रहे।
3: बिल्कुल
4: जी।
3: तो मैं चाहूँगा कि बचपन की कुछ यादें ताज़ा कराइए कि आप संगीत वगैरह की जो बातें कर रहे हैं
4: जी,
3: तो कुछ स्कूल में आपने कंपटीशन में या कुछ प्राइज आपको मिला हो, ऐसे कुछ इवेंट हुए हो जिसमें आपने भाग लिया हो, उसके
4: नहीं,
3: बारे
4: उस समय उस समय तो भ्राता जी कोई प्राइज की कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि ये बात करें तो मैं जाऊँगा 1980 में।
3: अच्छा,
4: तो उस समय में जो स्कूल का जो था वो क्लास होती थी 9 की, तो उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती थी, छोटी क्लासेस जो होती थी उसमें ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती थी। तो इन चीजों को सामने रखते हुए तो एक चलो एक जैसे स्कूल में जो भी जैसे होता है किसी को गिफ्ट के तौर पे पेन दे दिया, कॉपी दे दी, तो मना ये सब चीजें चलती थी उस समय। तो ऐसा होता था। बाकी अभिनय की बात करें तो जैसे हम जाते थे किसी दूसरे अन्य स्थानों पे, तो वहाँ पे जब हम अपना आर्ट शो करते थे तो वहाँ पे प्राइजेस वगैरह दिए जाते थे।
0: अच्छा।
4: हाँ, वहाँ पे मिलते थे। अभी लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में 1985 में हम लुधियाना में आए थे
0: जी।
4: तो वहाँ पे फर्स्ट में जैसे ही हमें थिएटर करने का मौका मिला और थिएटर करते करते बहुत सारे कह सकते हैं कि अवार्ड वगैरह भी दिए जाते थे वहाँ पे, तो वो सब भी हासिल हुए और अभिनय करने का जो एक अच्छा था कार्यक्रम, आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्म लाइन में भी तब्दील होता गया।
3: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और बचपन की यादें भी आपने ताज़ा कराई। उस समय तो इस तरह की कोई बात होती नहीं थी, लेकिन जहाँ भी आप प्रेजेंटेशन देते थे लोग पेन या फिर किताब आपको देते थे ऐसे यादों के बारे में। तो आइए, और मैं चाहूँगा कि बचपन में स्कूल लाइफ में जैसे आपके पिताजी आर्मी में रहे हो
4: जी,
3: तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी मना बदली भी होते थे आपके स्कूल के, तो उसके बारे में बताइए।
4: हाँ, बदली होती थी। उसमें ये था कि कुछ समय वहाँ पढ़ लिया, कुछ समय और किसी जगह पे जाके स्कूल में कह सकते हैं कि दाखिला ले लिया, तो ऐसा ये सब चलता था।
3: अच्छा अच्छा, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होती थी क्या?
4: जी, परेशानी तो वैसे स्टूडेंट लाइफ थी तो ये तो होता था कि जो पढ़ेंगे तो पढ़ने पे ही सारा डिपेंड होता था, कितना हम पढ़ लेंगे उसी के आधार पे सारा सब कुछ चलता रहता था। हाँ, नवीन अगर बात करें कि वहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और है, तो ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता था, एक जैसा ही रहता था। जी जी जी,
3: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा है ना, कोई जगह पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय रुक गए तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उससे फैमिलियर हो जाते हैं, फिर नए जगह पे जाएंगे तो वापस थोड़ा टाइम लगता है।
4: हाँ, वो टाइम तो ठीक कहा आपने, लेकिन जैसे छोटी क्लासेस थी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उस समय बस इतना ही था कि जो टीचर्स होते थे तो वो पहले जब उनको मना स्कूल में लिया जाता था, उनका दाखिला होता था, तो वो मना पूछा करते थे आप इंग्लिश के बारे में, या वो जो चैप्टर होते थे स्कूलों में जो भी अपने, तो उनके बारे में पूछा करते थे, बताते भी थे ठीक है ये बच्चा चलने लायक है या उस क्लास में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, तो इसी तरह ये सब चलता था। तो वो समय थोड़ा सा होता था भाई, फिर भी क्वेश्चनों के जो आंसर पूछे जाते थे तो वो दिए जाते थे।
3: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बचपन की याद कराई
4: जी,
3: और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बचपन में कुछ ऐसी चीजें भी, होमवर्क नहीं करने पर मारवीर पड़ती थी क्या उस समय आपको, या कुछ ऐसी मस्ती वाली बातें आपकी किसी
4: मार की बात? हाँ, मार की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है भ्राता जी, प्लेसमेंट तो होती ही है, अगर हम स्कूल का कार्य नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि होगा, ऐसा तो होता ही था। तो हाँ, अपनी बात करें तो कभी जैसे कभी कोई क्वेश्चन मिला और उसका आंसर लास्ट में अगर थोड़ा सा भी एक भी कहीं एक शब्द गलत हो जाता था तो नेचुरली ही हाथ आगे करना पड़ता था। जी
3: बिल्कुल जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है। और इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं कि करियर को लेकर आपका क्या भावना थी, आप क्या सोचते थे बचपन में, आपकी जो है किस तरह की विचारधारा थी करियर को लेकर, या बचपन में कुछ ऐसे सोचा भी करते थे कि नहीं ये भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई पढ़ना है और आगे का आगे देखा जाएगा इसी मानसिकता में रहते, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने करियर को लेकर थोड़ा सा चिंता या फिर थोड़ा सा उसके पर विचार चलता है स्कूल पढ़ते वक्त।
4: जी भाई जी,
3: तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपके विचार कैसे चलते हैं उस समय और किस तरह का, और देखा गया कि वो परिवेश कैसा है, आप जिस संकुल में रहते हो, जहाँ पर रहते हो, वो परिवेश भी आपको जो है मोटिवेट करता है कि क्या करना है क्या बनना है। तो अगर ऐसे आपके आसपास में लोग नहीं हैं और आप नहीं जान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, या फिर माता पिता भी इतना अवेयर नहीं है कि क्या बताना है बच्चों को, किस तरह से उनके करियर के लिए उनको काउंसलिंग, खुद माता पिता अगर बोले कि भाई आप पढ़ते पढ़ते क्या बनना चाहते हो उसके बारे में सोचिए, आपकी रुचि क्या है इसके बारे में हमें बताइए, ताकि हम आगे उसके बारे में आपके लिए तैयारी कर सके, तो ये बातें शायद कई कई कम होता है। लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो शायद बच्चों को ये सवाल पूछते हैं, तो दोनों तरफ से बात अच्छी हो जाती है। तो बच्चे की मानसिकता तैयार होती है, वो बच्चा बताएगा तो उसी हिसाब से काम कर सकते हैं।
4: जी, जी, जी।
3: तो हर एक साल दो साल के बाद उसको अगर आप इस तरह की बातें उनके साथ शेयरिंग करते हैं तो बच्चों की शेयरिंग सुनने के बाद उसकी रुचि क्या है और उसके मार्क्स देखिए, उनका सब्जेक्ट में किधर अच्छा काम आ रहा है, बच्चा अच्छा गेन कर रहा है, तो उस अनुसार उसको अगर मैनिपुलेट करते हैं तो आपको काउंसलिंग करने की या बाद में करियर के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, आपको पता पड़ जाता है कि बच्चा इसमें एक्सेल है और उसकी मनसा ये है, तो दोनों मैच हो रहा है तो आप उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय में शायद माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते थे जिसके वजह से ये चीजें पीछे रह जाए।
4: जी भाई जी।
3: आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शायद बच्चों से ये बातें कम होती है। हाँ। क्योंकि बच्चों का और माता पिताओं का मेल या मिलन जो है समय उनके पास कम है।
4: जी भाई
3: तो
4: जी।
3: इस वजह से भी ये थोड़ा गैप पड़ जाता है। तो हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से इन चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेनुमाधवन 107.8 एफएम पर, जिया करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हरि किशोर जी हमारे साथ है पंजाब लुधियाना से, और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया अपने पढ़ाई के बारे में, स्कूली लाइफ के बारे में उन्होंने शेयर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हरि किशोर जी से वापस जोड़ता हूँ मैं आप सभी को। हरि किशोर जी, बताइए मुझे कि आप स्कूल टाइम में या 8वीं 9वीं 10वीं में जब आए सेकेंडरी स्कूल में आप एंट्री कर लिए
1: जी,
0: तो क्या उस समय आप अपने करियर को लेकर कुछ बनना चाहते, इसके बारे में सोचते थे क्या? अगर सोचते तो किस तरह के विचार आपके होते थे?
1: हाँ, ये कहना चाहेंगे भाई जी इसके ऊपर कि बचपन से बस मुझे ये होता था कि संगीत सीखना है और कोशिश करनी है भाई गीत गाने हैं, तो इसमें यही होता था कि चलो मैं एक अच्छा सिंगर बन जाऊंगा या फिर कुछ एक्टर बन जाऊंगा, ऐसा मन में एक संकल्प रहता था और ये भी रहता था। और दूसरा बात करें तो सिंगिंग की, तो सिंगिंग में यही होता था कि ज़्यादातर मैं किशोर कुमार जी के गीत सुनता था, तो उनको अपना एक आइडल भी समझता था।
0: अच्छा
1: जी जी जी जी, तो उनके ही गीत बहुत सारे मुझे अच्छे लगते थे, बहुत ही मना स्वाभाविक तौर पे वही ज़्यादातर मैं गीत गाता था। वैसे बहुत सारे गीत थे, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मन्ना डे हैं, मुकेश जी हैं और अन्य हैं, तो केएल सहगल जी हैं जैसे, तो बहुत अच्छे महान ये महारथी रहे हैं संगीत लाइन में, और सबकी रेस्पेक्ट होती थी। लेकिन किशोर कुमार जी की अगर बात करें तो वो जो गीत जैसे गाते थे और उनकी जो वॉइस टचिंग थी वो बहुत ही हमें आकर्षित करती थी, तो संकल्प यही होता था कि मैं जब भी गाऊंगा तो जब भी कहीं कैरियर शुरू हुआ तो मैं इन्हीं के माध्यम से, यानी कि इन्हीं को सामने रख के मैं कुछ गीत स्टार्टिंग करूंगा
0: जी, जी,
1: तो ऐसा ये मेरा उस समय चलता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: चलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि किशोर दा का कोई गीत आप गुनगुनाई दीजिए हमारे श्रोता मित्रों को, अच्छा लगेगा है ना?
1: किशोर कुमार जी के गीत तो बहुत है, जैसे बहुत ही खूबसूरत एक गीत हमारे शाहिर लुधियानवी जी ने लिखा था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। तो चलिए दो चंद लाइनें हैं वो मैं आपको
0: सुनाई
1: पेशे खिदमत करता हूं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जा

0: एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले।
1: क्या बात है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। और जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे करियर के बारे में, तो करियर को लेकर आप और क्या सोचते थे, किस तरह की बातें आप जो है किया करते हैं, थोड़ा सा बताइए। और कि गाने के अलावा आपको क्या बनना पसंद था?
0: कैरियर में भाई जी बस यही होता था कि ज़्यादातर हमें यही रहता था कि हमने इस सिंगिंग लाइन या फिर बात करें फिल्म लाइन की, तो कोशिश यही रहती थी कि या तो कोई अभिनेता बनूंगा या फिर कोई सिंगर बन जाऊंगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन लेकिन ड्रामा में कुछ और ही था। तो ऐसा रहा। और यहाँ तक कि अभी थोड़े समय की बात करें तो चंद 4-5 साल की बात है, उससे पहले भक्ति मार्ग में काफ़ी गीत भजन और माता की भेंटें बहुत सारी गाई हैं। तो ये करियर बन के रहा ये काफ़ी हमारी लाइफ में। और यहाँ तक कि फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में ऐसा पंजाबी फिल्में बहुत सारी की, जिसमें से धार्मिक फिल्में भी थी, गैर धार्मिक भी थी, और सामाजिक फिल्में जिसे कहेंगे ये सब। अभी लास्ट में जो मूवी स्टार्टिंग की थी बॉलीवुड की मूवी फर्स्ट यानी के कह सकते हैं, तो उसमें एक छोटा सा करेक्टर मिला था, वो फिल्म का नाम था दंगल। तो दंगल में बस छोटा सा काम मिला था। तो बस जैसे कहते हैं ना कि समय जो है ना वो अपनी ही रफ्तार से चलता है, और जब वो समय आ जाता है
1: तो अपने आप सब कुछ
0: तो अपने आप ही ऐसा परिवर्तन आता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। यानी कि ये कहेंगे कि उसके बाद तैयारी थी कि मुंबई जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे। जूनियर आर्टिस्टों की बहुत ज़रूरत होती थी वहाँ पे, तो सारा कुछ तैयार हो चुका था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: या कहेंगे कि बैग बैगेज भी पैक हो चुका था, लेकिन परमात्मा पिता की मर्जी कुछ और थी। उन्होंने इस भाई को आगे जाने की अनुमति नहीं दी।
1: अच्छा।
0: तो हमें वापस बुला लिया।
1: ओके। तो दंगल में आपने कौन सा शॉट किया?
0: दंगल में भाई जी एक्चुअली ना वो जो अपना बोलते हैं जो बिजली डिपार्टमेंट होता है, तो उसके कुछ कार्य जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उनके ही रूप में एक छोटा सा करेक्टर था, जैसे रनिंग शॉट भी कुछ कह सकते हैं, कुछ अपने फेस इंप्रेशन कह सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो क्योंकि बड़ी मूवी थी, इसमें एकदम तो अगर चाहें कि कोई भी चाहे पंजाबी एक्टर्स कोई अच्छा भी हो बढ़िया भी होगा तो भी इंडस्ट्री उसको जल्दी वर्क नहीं देती है।
1: नहीं
0: एक सॉन्ग की तो बात वो तो अलग से है, लेकिन एक शब्द जो है वो भी उनकी वो अपने ही हिसाब से चलते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब तक ये भले जितना मर्जी इसने काम किया हो, लेकिन जब तक वो इंडस्ट्री में आके कुछ स्ट्रगल नहीं करेगा,
1: तब तक उनको
0: हमारे ऑफिसों के चक्कर नहीं काटेगा, तब तक इससे कुछ भी नहीं करवाएंगे, लेकिन बुलाएंगे जरूर। तो वो आएंगे तो कुछ करेंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि देते हैं मौका देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: जी,
0: आज अगर एक शब्द का ही अगर क्यों ही कहना है तो वो भी बहुत मान्य रखता है।
1: जी,
0: है ना।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि आज के वर्तमान समय में भी ये ट्रेंड है कि अगर फिल्मों में या फिर कहीं आपको थिएटर में काम करना हो तो थोड़ा सा चक्कर जरूर लगाते हैं, और आपके अंदर की जुनून को देखा जाता है और आप कितने उसके लिए पैशनेबल है ये देखा जाता है। और जब आपका पैशन ही है तो आप उसके लिए तैयारी रहते हैं, आप चक्कर लगाते रहते हैं और आप काम भी करते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। फिल्मों के अलावा या फिर एक्टर या फिर सिंगर के अलावा और क्या सोचते थे आप कि क्या बनना है आपको?
0: बनना भाई जी वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे शुरू से ही मैं मिडिल फैमिली को बिलोंग करता रहा हूँ, और बस यही होती थी कि भाई खाना है कमाना है तो खून पसीने की कमाई से ही कमाना खाना है, हमने ज़्यादा वो नहीं करना है जिससे हमारा ईमान जो है वो बिक जाए। तो यही रहा। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई,
1: हाँ,
0: जी
1: हाँ।
0: फिल्म लाइन जो है या संगीत की लाइन है, जो बाहरी लाइन जिसे आज हम आध्यात्मिकता में कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो भ्राताश्री, वो क्योंकि जब आध्यात्मिकता से जुड़ा जाता है तो उसका और इसका डिफरेंट होता है,
1: बिल्कुल
0: फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए जो एक योगी होता है उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
1: सही बात,
0: तो इसीलिए बाबा ने हाथ पकड़ा, बाबा ने खुद हाथ पकड़ा और मुझे सदा काल के लिए उस लाइन से अलग कर दिया। ये कहना चाहूंगा
1: जी, जी,
0: क्योंकि
1: जी,
0: वो मैं छोड़ चुका हूँ। बाबा चाहते हैं कि बच्चे अगर आपने कुछ करना है तो बाबा के लिए ही करें।
1: कर सकते हैं
0: जी।
1: हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जब आदमी आध्यात्मिकता की ओर जाता है तो निश्चित तौर पे आध्यात्मिकता हमेशा कहता है कि आप गंदगी से बचो, विकारों से बचो। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप जो है एक्टिंग की दुनिया में जो है आपका खाना पीना अलग हो जाता है, आपका रहन सहन अलग हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक माहौल को पकड़े रहना मुश्किल होता है। ऐसा मुश्किल भी नहीं है, अगर आदमी जो है जुनूनी है और वो अपने नियम संयम पे कायम रहना चाहते हैं तो उसे कोई विचलित भी नहीं करता है।
0: जी भाई जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे हैं, और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी जो है वेजिटेरियन है
0: जी,
1: तो वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप छोटे से शुरू करते हैं तो सब चीजें जो है आपको फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं मन जो है आपका वहां पर हार जाता है। तो जो बड़े होते हैं उनकी ऑर्डर्स चलते हैं तो वो उस हिसाब से उनको जो है सब कुछ मिल जाता है, वो भी होता है
0: जी।
1: लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि आप अगर वैल्यू के साथ, अपने मूल्यों के साथ अगर जीना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो बचपन से ही, तो वो चीजें आपके साथ भी चलती हैं
0: जी।
1: तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधु वन 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपने करियर को कैसे फ्रेम आउट कर सकते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए काम किया जा रहा है। तो आप भी विचार कीजिए, आप किस करियर के बारे में सोच रही हैं, अगर नहीं सोच रहे तो आज से सोचना शुरू कर दें। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आइए, हरि किशोर जी से बातें हो रही हैं और हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और जहां पर करियर को लेकर बातचीत हो रही थी और किशोर जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताया कि उनको फिल्म लाइन या सिंगिंग लाइन में इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे बनने में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं और कई बार हम जो सोचते हैं वो होते नहीं और जो होता है उसके बारे में कभी सोचते नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये एक ज़िंदगी का फ़लसफा है, लेकिन अगर आप सोचते हैं तो निश्चित तौर पे आज न कल जो है उसका अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है, जैसे किशोर जी को भी अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि ये चीज़ों में ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उनको रोकने का वो फिर उनको अच्छा भी लगा ये चीज़ कि शायद मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो जो मुझे चाहिए वो शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने उन चीज़ को गिवअप कर दिया और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर अपना काम कर रहे। तो अब वर्तमान में किस तरह का काम कर रहे हैं आप, किस तरह से आपकी रोजी रोटी चल रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए।
1: हाँ जी, ये बात तो भाई जी बहुत अच्छी करी आपने। रोजी रोटी के लिए तो मनुष्य जो है वो अपना कार्य ही करता ही है, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे वो एक ऑफिसर्स है, तो चाहे वो कोई नेता है या अभिनेता है, वो उनकी लाइनें हैं, वो अलग से हैं। तो ये बात कहेंगे कि जैसे अभी बात की कि हम ये जो कार्य हैं वो क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जी मेरा आरओ वाटर प्योरीफायरी का काम है, तो इसमें सेल है, सर्विसेज हैं, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं और इनका सारी ये कार्य से ही अपना रोटी जो है वो चलती है, धंधा चलता है, यानी कि कारोबार चलता है, तो करते हैं।
0: तो इसके बारे में आपको पहले कुछ पता था या बाद में ही आपने सीखा और इसको करना शुरू कर दिया?
1: कह सकते हैं कि जैसे उस समय मैं ये करता था साथ में, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ थी तो बहुत कुछ देखने में आ रहा था। और थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि जैसे पीछे से ही कोई पावर है जो ये कह रही है कि कुछ साथ में होना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन छोटा सा एक अनुभव सुनाएंगे कि रामलीला ग्राउंड में एक दशहरे से पहले जो 8 दिन या 9 दिन होते हैं, उन दिनों में रामलीलाएं हुआ करती थी। तो अभिनय का तो शौक था ही, तो ऐसे ही जब अभिनय करते थे तो वहाँ पे एक भाई आते थे, उनका वाटर फिल्टरों का ही काम था। तो उन्होंने कहा कि किशोर भाई जी, आप भले काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करिए, और साथ में ये जरूर करिए कि आपका जो कारोबार है थोड़ा सा एक साइड में ये भी रखिए, थोड़ा सीख लेंगे तो कहीं काम आ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो भाई जी, कम से कम मैंने 1 साल उस काम को सीखा। सीखने के बाद में वो जहाँ जहाँ पे सर्विसेज देती थी, जैसे रेलवेज हो गई या जैसे कोई ऑफिसेज हो गए, तो वहाँ पे कमर्शियल आरओ एंड डोमेस्टिक आर

0: तो उसमें उसकी रजा में कहते हैं खुश रहो तो सदा ही खुशी मिलती रहेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो दो जुनून तो यही है कि दो वक्त की रोटी, चाहे वो दाल से मिले या नमक के साथ मिले, तो उसी में खुशी है सबसे बड़ी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और ये आर ओ का काम करते हुए कैसे ये काम चलता है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप कि कंपनी के थ्रू ये सारी चीज़ें हो जाती है या आप कुछ करते हैं?
0: ऐसा है भाई जी, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और कंपनी का जो होता है, कंपनी अलग अलग की कंपनियां हैं, दो तीन कंपनियां हैं जो आज मार्केट में चल रही हैं। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है।
1: अच्छा,
0: अगर वो हाँ, क्योंकि चीज़ें हैं भाई जी, ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो नेचुरली कॉस्टली भी होती हैं, और जो खुद खुद मतलब एक्स्ट्रा तैयार की करके बनाते हैं,
1: हैंडमेड
0: तो
1: बनाते हैं।
0: जी जी तो उनका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन क्वालिटीज अच्छी होती हैं। तो बस ये चीज़ें जब वो सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप ही हमें हायर कर दीजिए, बना दीजिए, तो अच्छा है। तो ऐसे ही ये सब चलता रहता है। अगर कंपनी की मांगते हैं तो वो भी मिल जाती है।
1: दोनों मना आप करते हैं?
0: जी जी हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर।
0: जी
1: मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक कोई एक्सपीरियंस आपका जो है, जैसे ना जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं और कंज्यूमर को, क्योंकि एक मार्केटिंग वाली फील्ड आती है, तो
0: जी
1: यहाँ
0: भाई
1: पर
0: जी
1: थोड़ा सा स्ट्रगल भी लगता है शुरू शुरू
0: जी
1: में,
0: जी जी जी
1: और बाद में एक बार आप अनुभवी हो जाते हैं तो एक सेटिंग हो जाती है,
0: जी भाई जी
1: एक एवरेज आपको बिजनेस मिलता ही है।
0: जी
1: तो अब मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसको सेट करने में, शुरुआत में क्या दिक्कतें आई और बाद में कैसे सेट?
0: जी भाई जी, सेट करने की बात करें तो ये बिजनेस लाइन ऐसी है भ्राता जी, इसके ऊपर, इसके अंदर स्थायी रूप से कुछ नहीं रहता है।
1: अच्छा,
0: इसका ये है कि ऊपर नीचे अवस्थाएं जैसे मनुष्य की होती है, वैसे ही इस कारोबार की भी ऊपर नीचे होती रहती है। और आज कहीं थोड़ा सा अच्छा है तो कल थोड़ा डाउन भी है, वो
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल
0: बर्दाश्त करना पड़ता है। और जहाँ देखा कि चलो दो पैसे का काम है कर लो, तो वो भी चलो ठीक है। हाँ, अब ये है कि सब इच्छाएं समाप्त होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता,
1: जी,
0: लेकिन बस वो थोड़ा सा तो चाहिए ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो सब चलता रहता है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक आध गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाई दीजिए।
0: श्रोताओं का गीत, जी बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक आध्यात्मिक गीत जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक भाई हैं, बीके भाई हैं, उन्होंने ही कुछ लाइनें लिखी हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि सुना सकूँ आपको।
1: बिल्कुल,
0: मेरी रूह तुझको बाबा तुझे याद करते जाए, तेरी याद में हम सब कुछ

0: सब कुछ दुनिया को भूल जाए, मेरी रूह तुझको बाबा।
1: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव को सुनकर। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आशा करूंगा कि हमारे मिडिल फैमिली में इस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह का अनुभव हरी किशोर जी ने सुनाया, और आपको सुनकर कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी लगी होगी कि बचपन में जिस तरह के हम सपने देखते हैं, बड़े होने तक वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम उस तक नहीं पहुँच पाते, और फिर जीवन के जो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो हमारी वास्तविकता है, उसके साथ हम सौदा करते हैं और उसके साथ जीने भी लगते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं हमारे आसपास में जो होती हैं वो उनके जरिए जो चीज़ें मिल जाती हैं वैसे हम लोग करते हैं। जैसे कोई बच्चे का अगर पिताजी नौकरी करता है, एज ए फैक्ट्री में काम करता है, तो बच्चा भी फैक्ट्री में करने लग जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी थोड़ा सा अगर सपोर्ट करता है या फिर फैमिली की सपोर्ट मिल जाते हैं तो वो कहीं और भी काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके साथ में मैं यही कहूँगा कि आप अपने करियर के लिए अगर आप फ्रेम आउट अभी से करना शुरू कर देंगे, अभी से सोचना शुरू करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, और आज इंटरनेट का ज़माना है तो थोड़ा सा आपको जो

है, नॉलेज भी ब्रीफ में मिल ही जाएगा कि इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें हैं और उसके लिए किस तरह के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, क्या तैयारी है, क्या क्वालिफिकेशन लगता है, क्या पढ़ाई लगती है, टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद या डिग्री के बाद वो चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ाई पूरा कर लीजिए और पढ़ाई पूरा होने के बाद फिर आप अपने करियर के लिए, उस मुकाम के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, थोड़ा सा जो है एप्रिसिएशन वाली बात आती है और उन चीज़ों को समझ लें और अप्रेंटिस पर कुछ काम, कुछ हद तक दो तीन जगह काम कीजिए जहाँ पर आपको करना है आपको। और अगर आप आर्टिस्ट के लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको थिएटर ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ जुड़ के काम करना पड़ता है और थोड़ी देर के बाद आपको जो है आइडिया मिल जाता है, आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर को बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं, और कुछ लगे तो हमें ज़रूर कॉल करके 9414151415 इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी बात हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं और हम आपको हेल्प पूरी तरह से करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कम सोचो धीरे सोचो, कम बोलो धीरे बोलो, कम खाओ धीरे खाओ। चलिए आज मैं आपसे इस विषय पर अपना चिंतन शेयर करूंगी। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कम खाओ धीरे खाओ, कम सोचो धीरे सोचो, कम बोलो धीरे बोलो, लेकिन इसका रियल अर्थ क्या है? चलिए आज हम इस पर गहराई से सोचते हैं, सुनते हैं। कम खाओ धीरे खाओ, कम सोचो धीरे सोचो का गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ है। यह वाक हमें संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कम खाओ धीरे खाओ, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या उपयोग हैं? इसे हम अपनी जीवन शैली में कैसे उतार सकते हैं? कम खाओ, इसका रियल अर्थ है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, ना कि लालच या स्वाद के लिए। अधिक खाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखता है। संयमित भोजन आयुर्वेद और योग में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब जानते हैं धीरे खाने का क्या फायदा है। भोजन को शांति और ध्यान पूर्वक ग्रहण करना माना भोजन को धीरे धीरे खाना। भोजन को धीरे धीरे चबाने से पाचन बेहतर होता है, इससे शरीर को अधिक पोषण मिलता है और ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। भोजन को आनंद और कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे विषय पे बात करते हैं, कम सोचो धीरे सोचो, इसके क्या फायदे हैं और इसका रियल मीनिंग क्या है। कम सोचो, अनावश्यक चिंताओं और विचारों में ना उलझे। अति सोचने से मानसिक तनाव बढ़ता है और मन अशांत रहता है। जीवन में सरलता और संतोष रखना मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। फालतू और नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मकता को अपनाना ही कम सोचने के फायदे हैं। अब चलिए जानें धीरे सोचो का अर्थ और उसके फायदे। धीरे सोचो माना विचारों को संतुलित और धैर्य पूर्वक रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बल्कि धैर्य पूर्वक सोच विचार कर करें। मन को स्थिर और केंद्रित रखना जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आवश्यक है। जल्दबाजी के लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। अब चलिए आइए जानते हैं तीसरे विषय में, कम बोलो धीरे बोलो, इसके फायदे और इसका अर्थ क्या है। आवश्यकता से अधिक बोलना कभी कभी समस्याओं को जन्म देता है, इसलिए सोच समझकर और मित भाषी बनकर बोलना चाहिए। धीरे और शांति से बोले गए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। इससे संवाद बेहतर होता है और हम दूसरों को अधिक सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वाक हमें संयम, धैर्य और संतुलित जीवन जीने की सीख देता है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। कम खाओ धीरे खाओ, कम बोलो धीरे बोलो, कम सोचो, धीरे सोचो एक गहरी जीवन शैली से जुड़ी सीख है, जो संतुलन, धैर्य, आत्मसंयम की ओर इशारा करती है। इसका अर्थ अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
0: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार, मी मोनाली सावागत। तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं. वेलकम सिस्टर.
4: ओम शांति.
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
4: थैंक यू.
3: आपने एक बहुत सुंदर बात की थी लास्ट टाइम कि गिविंग मोर देन टेकिंग. और टेकिंग में मैंने सोचा कि जब जिसके पास एक राजा है, प्रजा को बांटता फिरता है एंड रॉयल है, वैसे हमारे पास अबंडेंस में है. इतना प्यार, इतनी प्योरिटी, इतनी लव, इतना पीस. अगर मैं जैसे आप कह रही थी, अगर नहीं बोलूंगा, देखिए पुरानी आदत, अगर मैं सोल हूँ तो बोलने वाला था मैं.
4: अगर मैं
3: आई एम सोल एंड आई एम प्योर,
4: राइट,
3: आई एम प्योरिटी, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम दैट,
4: राइट.
3: लैक ही नहीं है तो फिर हम क्यों गिविंग में फिक्र करें?
4: वो तो तब होगा जब ये पता होगा ना कि हमारे पास है. ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं ही प्योरिटी. ये भूल गया कि मेरे पास अनलिमिटेड है देने के लिए. ये भूल गया कि ये मैं जितना दूंगा ये उतना बढ़ता जाएगा. तो फिर तो हमने सोचा कि मुझे चाहिए औरों से, तो लैक की तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी. इफ इट्स लाइक इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, इतना धन है, इतना धन है, तो फिर लैक की फीलिंग क्यों आनी चाहिए? देना चाहिए ना. किसी को जरूरत पड़े तो देना चाहिए, घर में कोई काम आया तो देना चाहिए, कुछ किसी ने मांग लिया तो देना चाहिए. कमी की तो फीलिंग ही नहीं है, लैक नहीं है. लेकिन ये सब तो तब होगा जब याद होगा ना कि कितना है. अगर ये पता ही नहीं होगा कि है, अगर ये मालूम ही नहीं होगा कि कितना है, फिर कितना थोड़ा भी कोई खर्चा आएगा घर में तो हम कहेंगे पैसे नहीं है, ये नहीं करना, पैसे नहीं है, ये नहीं करना, है नहीं. उल्टो और उनको कहेंगे तुम मेरे को दे दो. और सो लैक की एटीट्यूड हैज कम ओनली बिकॉज वी डिडंट नो दैट दिस इज हु आई एम. अब जैसे ही हमें नॉलेज मिलेगी दिस इज हु आई एम, इमीडिएटली वो लैक की फीलिंग नहीं डिसअपियर हो जाएगी. क्योंकि जो मैं हूं उसको अब मुझे अनुभव करना है. अभी तो नॉलेज है, अभी नॉलेज है, अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. वो ग्रूव है लेकिन उसको यूज नहीं किया है. जब तक यूज नहीं करेंगे तो देंगे नहीं, देंगे नहीं तो अनुभव नहीं होगा. तो इसलिए थोड़े समय के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है.
3: क्या एक्सपेरिमेंट करें?
4: एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक थी जीवन जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते थे वो करे ना, वो दें, वो पहले प्यार से बात करें, गलती उन्होंने की,
3: पहले वो नमस्ते करें,
4: पहले वो नमस्ते. वो तो बहुत छोटी बातें है ना, सारा दिन में भी.
3: हाँ.
4: वो थोड़ा एडजस्ट करें, वो देंगे, उनसे मुझे मिलेगा. दिस इज टेकिंग, नॉट इवन टेकिंग, आस्किंग. हम मांग रहे थे, हम वेट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम पहले करें, उनसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम ही कर लें. हम प्यार दें, सामने वाला नहीं ठीक से बात कर रहा, हम करें. दिस हैज टू बी डन. इनिशियली थोड़ा सा ईगो क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा. लेकिन ईगो को कम करना यही तो जर्नी है. अगर हम इस साइड पर भी फोकस कर लेना कि मुझे ईगो को कम करना है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है ऑटोमेटिकली. अहंकार को घटा रहे हैं. जब भी अहंकार ने कहा मैं क्यों, उसको दबाया, बोलो इसको कम करना है. उन्होंने पिछली बार ऐसे बात की, फिर भी मैं प्यार से बात करूं, जी दबाया, कट किया, कम किया, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आत्मा की शक्ति बढ़ रही है।
3: पहले पहले जब ट्राई किया था तो लोग मुझे बाद में बोलने लगे, ये बड़ा कमजोर सा सुरेश ओबेरॉय जैसा कावर्ड है। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि फलाना एक्टर भी तेरे जैसा कावर्ड है, डरपोक है, उसने इतना किया तो अभी चुप रह गया या उसको हाथ मिला लिया जाके। और उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस से क्या हुआ कि फिर समझ में नहीं आया कि ये करना सही है कि नहीं है, तो वहां बड़ा हर्ट होता था। लोग कहते थे यार बात गई छोड़ो, भूल जाओ। मैं भी ऐसे करने वाला था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे धीरे सोसाइटी में इसमें आते वापस वो आ गया, वाई मी। अब मैं करूंगा तो ये लोग बोलेंगे देखा सुरेश ओबेरॉय के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, देखा लाइन पे आ गया ना।
4: इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या हुआ। सिर्फ
3: नुकसान उधर भी मेरा हो, अभी भी मेरा हो रहा है।
4: पहले क्या था, झुक जाना, एडजस्ट करना, गिव इन कर देना, खुद प्यार से बात कर लेना, और जैसे आपने कहा रात कई बात की, मतलब बातों को इजिली लेट गो करना, भूल जाना, ये संस्कार था।
3: लेकिन ऐसा भूलना नहीं था मेरा, वो बोलना ऐसा था ऊपर से, लेकिन अंदर याद रहता था।
4: ठीक है, लेकिन ऊपर से तो एफर्ट किया
3: ना? वो किया था मैं,
4: है ना, बात तो की ना,
3: लेकिन हमेशा उसके लिए मुझे वो मिली, फायरिंग, थ्रैशिंग, बदनामी
4: मिली आसपास के लोगों से।
3: सब लोगों से,
4: तो आसपास के लोगों से वो मिलने से राय हमने क्या सोचा, दिस काइंड ऑफ संस्कार इज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि आसपास के लोगों ने कहा कि ये संस्कार सही नहीं है, आसपास के लोगों ने कहा कि ये संस्कार कमजोरी है, आसपास के लोगों ने कहा ये संस्कार मतलब डरपोक, ये आसपास के लोगों ने कहा। हमने पिछली बार भी देखा जो आसपास के लोग कहेंगे वो अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू कहने वाले हैं, राइट? तो जिसने भी कहा था कि ही इज ऑल्सो अ कावर्ड लाइक यू, दैट्स बिकॉज दैट वॉज नॉट हिज संस्कार, राइट? उस आत्मा के लिए ह्यूमिलिटी कमजोरी थी। तो उसने कहा, उसने जब आपके अंदर ह्यूमिलिटी देखी, उसने कहा वो भी आपके तरह कमजोर है, क्योंकि उस आत्मा के लिए ह्यूमिलिटी कमजोरी थी, उस आत्मा के लिए अहंकार स्ट्रेंथ थी, वो उनका ओपिनियन, दैट्स ओके। हमने उनकी बात को सुना, उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लिया, अपने संस्कारों को चेंज कर दिया, ह्यूमिलिटी के संस्कार को
3: दबा दिया,
4: यूज करना बंद कर दिया। हमने कहा ठीक है, अब मैं दिखाता हूं इस दुनिया को, ठीक है? तो अब सामने वाला एक लाइन बोलता तो हम चार बोलते, सामने वाला भी कुछ करता ही नहीं तो हम जोर से डांट देते। तो हमने क्या किया, अपनी एक इमेज में शिफ्ट लाई है। दिस इज ऑल्सो इमेज बिल्डिंग नो, एक्चुअली हमने इमेज में शिफ्ट लाई है कि मैं वो सॉफ्ट व्यक्ति नहीं हूं जो तुम देख रहे थे मुझे, मैं वो सॉफ्ट नहीं हूं जिसको तुम कमजोर कह रहे थे।
3: और ये करते करते करते मेरा ऐसा संस्कार बन गया कि नॉर्मली भी मैं फोन पे भी ऐसी बात करता था, उस पे होटल्स में जाके लॉन्ड्री किसी को भेजो, लाइक दैट।
4: नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड,
3: लैंग्वेज खराब हो गई थी।
4: लैंग्वेज नहीं सिर्फ खराब हो गई,
3: टोन तो बिल्कुल,
4: एटीट्यूड खराब हो गया है, क्योंकि एटीट्यूड में अंदर क्या फिट कर लिया, जोर से डांट के बोलो तो भी काम होता है, क्योंकि जब मैं सॉफ्ट था तो लोगों ने कहा वो कमजोरी है, तो मतलब
3: क्या, क्या बोलते थे, चुप रहता तो लड़की है, कमजोरी है।
4: सी, तो वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पब्लिक ओपिनियन, राइट? वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, वी चेंज्ड एंड वी अडॉप्टेड अ न्यू संस्कार। नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, इस यात्रा में मैं जोर से बोला लोग चुप हो गए, लोग मेरे सामने डरने भी लगे, ये सब कुछ हुआ। रियली नीड टू रिफ्लेक्ट टूडे कि क्या ये न्यू अडॉप्टेड संस्कार या एटीट्यूड मेरे लिए लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहा?
3: मेरी मदर इतनी वाइज थी, उन्होंने समझाया भी था मुझे, बोले पुत्र तू ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पंजाबी में लाइन बोली थी, लज मरिंदा अंदर बढ़िया मूर्ख जाने मैं तो डरिया, मतलब लाज के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक इज्जतदार आदमी, कोई आदमी सामने घर से खिड़की दरवाजे से आपसे लड़ रहा है तो आपने अपना दरवाजा बंद करके आप अंदर वाड़िया,
4: राइट?
3: शरीफ आदमी अंदर चला गया, मूर्ख जाने मैं तो डरे, मूर्ख समझेगा कि मेरे से डर गया, देखा देखा डर गया।
4: लेकिन आपने चेंज कर दिया ना संस्कार उस प्रोसेस में, दुनिया की बात सुनकर
3: क्योंकि लॉन्ग टर्म से चल रहा था.
4: लॉन्ग टर्म से चलने के कारण टुडे वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, हम सही रास्ते चल रहे थे जिसमें अंदर हमारी ह्यूमिलिटी थी, सॉफ्टनेस थी, आत्मा की वो पावर थी, हमारा अपने कर्म इंद्रियों पर संयम था उस टाइम, हम जब चाहते विड्रॉ कर सकते थे, सामने वाला कुछ कहता हमारे अंदर चुप रहने की ताकत थी, हमें फॉरगिव करने की भी ताकत थी, ये सब हमारे पास ताकत थी. दूसरों ने कहा ये ताकत कमजोरी है.
3: मेरे साथ करता तो मैं दिखाता, आप तो बस इतने बड़े और इतने स्ट्रांग हो कि आप क्या.
4: तो दूसरों ने हमारी ताकत को कमजोरी कहा, हमने फिर क्या कहा, व्हील चेंज.
3: हाँ.
4: तो हमने जोर से बोलना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया.
3: और काम किया वो मेरा?
4: काम तो करेगा ही, वो बिल्कुल काम करेगा. बाहर लोग डर जाएंगे, लोग फटाफट से काम करना शुरू कर देंगे, लोग आपके कहने से पहले ही काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कौन डांट खाएगा, पहले ही काम कर
3: दो, मुसीबत को पहले दे दो यार. चाहे
4: देखो लाइन आपने बोली है.
3: हाँ, यहाँ तक कि एक बार साउंड रिकॉर्डिस्ट ने, मैं बार बार पीछे उसका बेट, मुझे मालूम नहीं था उसका बच्चा पीछे बैठा है, मैं डबिंग करता जाऊँ वो कुरकुर कुरकुर कुछ करता जाए, तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गया, तो उसने बोला जरा खतरे से दूर हो जाओ, आ जाओ. He insulted me that way.
4: He didn't insult you.
3: I mean, this attitude made me hear such lines.
4: This attitude made them
3: say,
4: think like that about you.
3: हाँ.
4: Obviously, अगर कोई जोर से बार बार बोलता है, बहुत ज्यादा react करे, aggressive हो, unpredictable हो, पता नहीं अचानक कभी भी कुछ भी कह देंगे, तो लोग कहेंगे ना खतरे से दूर रहो. जितने साल ये समय चला होगा, हर बार जब आपने वो मेथड यूज किया, आत्मा की शक्ति तो घटी, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की ना,
3: उस टाइम एटीट्यूड क्या था, काम तो हुआ ना.
4: काम तो हुआ, वो तो 100% है कि काम तो हुआ, बाहर का काम हुआ, सोल पावर कम हुई, करते करते ये हमारी एडिक्शन बन गई.
3: और कितनी बद्दुआएं भी ली ना.
4: ये एडिक्शन बन गई, तो जहां जरूरत नहीं थी वहां भी ऐसे ही बोला.
3: हाँ.
4: है ना. अब जैसे आपने कहा होटल में फोन किया, लॉन्ड्री वाले को बोला ऐसे, अभी तो उसने कोई गलती नहीं की है, अभी तो उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ की फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है. हाउ डू यू नो कि वो फर्स्ट पार्टी में काम करेगा या नहीं करेगा. एटलीस्ट अगर वो बिलीफ सिस्टम भी था कि गुस्से से काम जल्दी होता है, वो तब करना चाहिए ना जब चार बार बोल के काम नहीं हुआ था. हमने फर्स्ट टाइम में वो मेथड यूज करना शुरू कर दिया. अब आप एक क्षण सिर्फ विजुअलाइज करें कि आप उस लॉन्ड्री वाले भाई की जगह पर है, ठीक है, एक होटल में कोई फोन करता है फर्स्ट टाइम, कौन है नहीं मालूम, और उसे एक छोटा सा काम बोलता है लेकिन जोर के डांट के बोल देता है, सामने वाला कैसी थॉट क्रिएट करेगा.
3: एक कोई अजीब सा कस्टमर आया हुआ है फोन पे,
4: दुआएं तो नहीं है, अब ये है
3: ऑपोजिट ही है उसका.
4: अब आप उस सिर्फ टाइम पीरियड पे अगर रिफ्लेक्ट करें कि ऐसे करते करते दिन में कितनी बार इस तरह से बात होती होगी लोगों से.
3: नॉर्मल हो गया था, हमेशा ऐसा करता था. मैंने बोला अब तो दुनिया को तो ये रूप अच्छा लगता है, करते करते फिर ऐसा नेचर हो गया.
4: दुनिया को ये रूप अच्छा लगता है, लाइन को चेक करना होगा. दुनिया से ये काम करवा लेता है, ये रूप दुनिया को डरा लेता है. दुनिया को ये रूप अच्छा लगता है,
3: डिजर्व करती है दुनिया, ऐसे समझा था.
4: फिर करते करते आपने कहा ये मेरा नॉर्मल हो गया, मतलब मैं ऑलमोस्ट दिन में सबसे ऐसे बात करने लगा.
3: हाँ, हमेशा ही. और कई फ्रेंड्स बाद में जो रियल फ्रेंड्स थे बोलने लगे, डू यू नो आपने उस पेपर वाले से कैसे बात की. तो मैंने बोला मैंने क्या किया, मैंने तो उसको नॉर्मल बोला. बोले नहीं आपने नहीं बोला, किसी ने मुझे बोला कि यू नो समथिंग तुम्हारी वॉइस में एक एरोगेंस सा है, कोई एक्सप्लेन. तो मैं सोचने में और डूब जाता था कि मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लोग ये लोग क्यों ऐसी बात करें मुझे.
4: मैं अच्छी बात कर रहा हूँ मतलब, क्योंकि मैं वो नॉर्मल बात कर रहा हूँ.
3: तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा ऐसा बन गया था कि टोटली मैं समझ रहा था कि दिस इज मी. और वो बन ही गया था, जैसे सिनेमा में कैमरे के सामने मैं एक रोल करता हूँ ना, और बिल्कुल वही बन जाता हूँ. तो वैसा बन गया था, मुझे मालूम ही नहीं था कोई और रूप भी होता है.
4: विच मीन्स जो रोल हमें लोगों ने सिखाया कि ऐसे बोल के काम करो, हम उस रोल में इतना घुस गए
3: कि मुझे
4: कि हम 24/7 वो रोल जीने लग गए.
3: तो आई वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट आई एम राइट, आई एम ओके, मैं तो बड़े प्यार से बात की, यार तुम क्या बोल रहे हो? तो मैं सोच में पड़ जाता था व्हेन ही सेड, कि न्यूज़पेपर का मुझे आज तक याद है, न्यूज़पेपर वाला हमारा सीनियर था उम्र में, तो साथ में फ्रेंड बैठा था, तो आया तो मैंने उससे क्या बात की याद नहीं पड़ी, आई स्टिल रिमेम्बर हिज लाइंस, डू यू नो हाउ ही स्पोक विद हिम? फिर मेरे छोटे भाई ने एक बोला, आप क्या सभी प्रोड्यूसर से ऐसी बात करते हो? आपको मालूम है आपने इससे कैसे? दो चार लोग टोके, बच्चे रोने लगे जब मैं बात करूं नॉर्मली, वरना बच्चे भाग के आते थे मेरे पास। तो ये मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ, लेकिन टाइम नहीं मिला अपने ऊपर काम करने का।
4: अब ये जो पीरियड बीतता है ऐसे, इसमें हर बार हमने वो मेथड यूज किया एंड फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक क्रॉनिक केस है ये, कि वो ही नॉर्मल मेथड बन गया।
3: हाँ.
4: है ना, वो नॉर्मल मेथड बन गया तो आत्मा की बहुत शक्ति इसमें घटती है, और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स अबाउट हरेक के साथ वैसे बिहेव किया। देखो जो आसपास के लोग होते हैं ना, फैमिली फ्रेंड्स, वो फिर भी हमारी नेचर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जान जाते हैं।
3: हाँ,
4: है ना।
3: हाँ.
4: उनको पता होता है कि नहीं ये वैसे अच्छे हैं, लेकिन इनका आदत पड़ गई है इस तरह से बात करने की, तो उनके यहाँ कुछ नहीं क्रिएट होगा। लेकिन रैंडम सारा दिन में जिन लोगों को हम मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा न्यूज़पेपर वाला, ऐसे जो लोग हमें जानते नहीं है, लेकिन वन टाइम मिले, कहीं मिले, कहीं काम हुआ और उनसे इस तरह से बात कर ली, तो वो तो हमें नहीं जानते, तो उनको तो सिर्फ कौन सी एनर्जी मिलेगी, तो वो हमें कौन सी एनर्जी भेजना शुरू कर देंगे। तो करते समय डिप्लीशन, वहां से आया तो डिप्लीशन, आत्मा की शक्ति घटती गई।
3: मेरा बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि मैं जो लोग मुझे समझने लगे थे ना, बहुत स्वीट है, लड़कियां मुझे आके सीनियर बड़ी बहन की चीज वगैरह, कितना प्यारा है तू, यू नो, मुझे लगता था कि मुझे वो कह रहे हैं कि मैं लड़की जैसा लगता हूँ, कितना स्वीट है, कितना लड़का है, कितना भोला है, कितना, अरे मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे लोग ऐसे क्यों हाथ लगाते बात करते हैं।
4: दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आज बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि ये मेरा संस्कार था, झुकना मेरा संस्कार था, एडजस्ट करना मेरा संस्कार था, जो दूसरा मांग रहा है वो दे देना, फॉरगिव करना, ये मेरा संस्कार था, लेकिन सबने कहा आज के समय पे दिस संस्कार विल नॉट वर्क, या जैसे आपने कहा, सबने कहा कि ये तो कमजोरी है, तो हमने क्या कर दिया, उस प्योर संस्कार को मर्ज कर दिया, और एक वातावरण के संग के कारण हमने एक रफ संस्कार अक्वायर किया। अब ये रफ संस्कार ने हमारा नुकसान किया है, वी नो इट, बट द ब्यूटिफुल पार्ट इज कि ओरिजिनल संस्कार तो प्योरिटी है, इस जन्म में भी उसको एक्सपीरियंस किया है, तो वो ज्यादा पुराना नहीं है, कितने साल नहीं यूज किया होगा, ज्यादा 10 साल, 20 साल, 30 साल, उतना ही नहीं किया होगा, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। तो अब जैसे ही वापस उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल जर्नी, क्योंकि वो इसी जन्म का संस्कार है। हम में से बहुत है जिसके लिए वो इसी जन्म का संस्कार है, छोड़ दिया था, क्योंकि एक बार धोखा खाया, दूसरी बार किसी ने कुछ किया, तीसरी बार किसी ने कहा, हमने कहा दिस डजंट वर्क।
3: तीसरी बार ये एवरी डे का प्रॉब्लम था ना, आई डिड नॉट चेंज इन वन डे। हम स्कूल बंक नहीं करते थे, पिक्चर में हम क्लास मिस करके नहीं जाते थे, हमारे साथ के लोग कॉफी सिगरेट विगरेट पीते थे, हम नहीं पीते थे, तो करते करते मैं जो लेवल हो गया था कि ये तो लड़की है, ये तो डरपोक।
4: कलयुग में लेबल्स को ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि लेबल्स जो लगा रहे हैं वो भी आपको कौन से फिल्टर से देख रहे हैं, अपने संस्कार के, एंड मेजोरिटी कलयुग का जो बिलीफ सिस्टम है उसके थ्रू। मैं आत्मा सही हूं या नहीं, इसकी चेकिंग अपने आप करनी होगी कि व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम बीइंग, डज दिस मेक मी फील नाइस एंड अदर्स फील नाइस, पैरामीटर है हमने शुरू में सेट किया इस सीरीज में।
3: लाइनें मुझे अच्छी लगती थी।
4: अच्छी लगती है ना,
3: अभी भी अच्छी लगती है, कभी कभी ऐसी लाइंस चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खा के कुछ वो जो कुकी तोड़ के उसके अंदर से भी निकलता है, तो हाँ। वहाँ भी अच्छी अच्छी लाइनें मिलती थी, ये सब अच्छा लगता था।
4: यस।
3: लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि मैं एक वो वाले संस्कार के पिंजरे में फंस गया था।
4: कोई बात नहीं, अक्वायर्ड संस्कार है ना। नाउ वी हैव टू ओनली रिमेम्बर द क्राइटेरिया, मेक मी फील नाइस, मेक अदर्स फील नाइस, जो मेरे लिए एट ईज कम्फर्टेबल है औरों के लिए है। दुनिया पूरी कहे ना कि ये गलत है, कुछ लोग नहीं, पूरी दुनिया कहे ना ये संस्कार गलत है, तो भी नहीं छोड़ना है, तो भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट मेक्स मी फील नाइस, इट मेक्स अदर्स फील नाइस। दैट्स हाउ वी नीड टू होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि वो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। जब हम आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को कर्म में लाते हैं, सबसे पहले आत्मा को खुद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि द सोल एक्सपीरियंसेस इट्स ओरिजिनलिटी, अपना निजी गुण जो उसको सुख देता है। जब आत्मा वो अनुभव करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। हम कितना भी शोर मचा लें, गलत कर लें, अंदर सुखी नहीं होंगे, एट ईज नहीं होंगे, शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो लेट्स सी वो सेवन क्वालिटीज जो हमारी अपनी है, उसको अगर सारे भी कहें कि नहीं यूज करना, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। अगर सारे भी कहें कि इट डजंट वर्क इन टूडेज वर्ल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू देम, क्योंकि वो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। कैसे पता चलेगा कि वो मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है? वो चीज आज हम ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, शांति हम ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं,
3: घर घर जाके देख लो आप,
4: शांति ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, शांति दे दो, मंदिरों में जा रहे हैं, शांति दे दो,
3: घर में पूजाएं करवा रहे हैं,
4: कर रहे हैं, शांति दे दो,
3: अपनी कुंडलियां दिखवा रहे हैं कि शांति कब मिलेगी यार, मुझे बताओ।
4: क्योंकि हम वो मांग रहे हैं, वो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, जो मैं आत्मा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही अंदर, क्योंकि मैं उसको कर्म में नहीं ला रही, और कोई तरीका नहीं है एक्सपीरियंस करने का, कुछ भी नहीं है। कर्म में लाया, अनुभव हो जाएगा। आपके सामने किसी ने कुछ गलत किया और आपने फॉरगिव किया और आप कंफर्टेबल होके बैठ गए, उस क्षण आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? शांति एक्सपीरियंस करेंगे। वही तो मोमेंट्स हैं, दोज आर द मोमेंट्स इन विच वी एक्सपीरियंस पीस, बिकॉज वी हैव एक्सप्रेस्ड द कर्मा इन पीस। जो एक्सप्रेस किया वो एक्सपीरियंस, जो एक्सप्रेस किया वो एक्सपीरियंस, मांगा उससे नहीं होने वाला। तो शांति हर आत्मा मांग रही है, वी नो दैट। प्यार हर आत्मा मांग रही है। सो जो हम मांग रहे हैं वो हमारी ओरिजिनलिटी है। लव, लव मीन्स एक्सेप्टेंस, लव मीन्स केयरिंग, लव मीन्स कंपैशन। नाउ वी वॉन्ट दैट फ्रॉम अदर पीपल। When we shift our consciousness, ke love means acceptance, which means I will accept every soul. Main har atma ko accept karu, wo jaise hain, jo unke sanskar hain, main unko pyar ki energy radiate karu, because I am a loveful being. Main prem swarup atma ho. Jaise hi radiate karenge, achha feel hoga. Wahan se vibration achhi aayengi, aur achha feel hoga. नहीं तो जीवन भर औरों से मांग रहे हैं प्यार दो, प्यार दो, प्यार क्या है वो भी भूल गया है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं मालूम है, उसको कितनी और चीजों के साथ मिक्स कर दिया है। वी हैव नॉट इवन फॉरगॉटन व्हाट इज रियली लव। अब जो आपने कहा ये मैंने पहला संस्कार था, झुक जाना, फॉरगिव करना, इज इट पॉसिबल टू कम बैक टू दैट अगेन?
3: आई बीन कमिंग, कब से कर रहा हूं?
4: कर रहे ना,
3: मैंने जब से आपसे मिला और जब से ये एपिसोड्स कर रहा हूँ, तो तब से तो मैं ये कोशिश कर ही रहा हूँ।
4: तो हो रहा है ना?
3: हो क्या रहा है? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेइज्जती करवा के भी हुआ, जो भी हुआ, मन ने बोला कि तूने अपनी बेइज्जती करवा के इतना क्यों मरना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
4: अब जो वो क्षण है जब आप ऐसा कर लेते हैं, विच इज वेरी ऑफन नाउ, उस क्षण क्या अनुभव होगा?
3: अब अच्छा लगता है। पहले पहले लगता था कि मैंने अब सरेंडर करके बेइज्जती करवा ली, झुक गया।
4: अब अच्छा लग रहा है ना?
3: अब जब आपकी बातें समझ में आई, तब तो और अच्छा लगता है कि आई एम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अर्लियर मुझे लगता था कि क्या कमजोर हो गया हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, और लोग भी आके बोलते थे ये
4: वीकनेस। फील कैसा होता है उसको करने के बाद?
3: मुझे एक वन स्टेप हेड एंड फर्दर और एक माइल और आगे बढ़ गए अपने पाथ पे, मेरा जो गोल है
4: राइट
3: कि सबको सोल देखना है
4: हाँ,
3: और सब खुद भी खुश रहना है, दूसरे को भी खुश रखना है, मेक अदर्स फील हैप्पी
4: राइट
3: एंड उसकी अच्छी क्वालिटीज देखनी।
4: कैन यू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू फीलिंग्स, जो पुराना वाला मेथड था रिएक्ट कर देना, डरा देना, वो लो थी
3: और उसके अब बाद पहले लड़ने के बाद झगड़े करने के बाद घंटों आवर्स नाइट्स डेज नींद खराब और गुस्सा,
4: अब
3: तो बहुत मजा आता है,
4: हो गया ना सिंपल,
3: अब एलिवेटेड फील करता हूँ
4: सिंपल। एंड विच मीन्स जिन्होंने वो राय दी थी वो सही नहीं थी ना राय, ये वाला बेटर फीलिंग है ना।
3: जिन्होंने राय दी थी वो जो मैं करता था तो उसका जो रिपरकशन होता था वो राय देने वाले को रिपरकशन नहीं मिलता था, फेस तो वो ट्यून मुझे करनी पड़ती थी। अगर कल पुलिस स्टेशन कोई चला गया, कोई झगड़ा बढ़ गया, कोई कोर्ट चला गया, तो सारा तो मैं ही ना।
4: उन्होंने जो आपको राय दी ना
3: हाँ,
4: वो राय किस लिए दी कि आप जोर से बोलेंगे ना तो आपके काम हो जाएंगे, वो राय ठीक थी, लेकिन हमने उस राय को चेक नहीं किया कि उसके बाकी सब रिपरकशंस कितने आने वाले हैं। अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट मिला, आपने अभी कहा अच्छा लग रहा है, लाइटर फील हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है, विक्ट्री, वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय गोल, ये सब कुछ चीजें हर रोज अपने आप को याद दिलानी है। परमात्मा सिखाते हैं कि ज्ञान और मेडिटेशन से जो आपको प्राप्ति हो रही है अपने आप को रोज याद दिलाओ, अपने आप को रोज याद दिलाना है, मुझे ये प्राप्ति हुई है, मुझे ये परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन से मेरा ये फायदा हुआ है, ये अपने आप को रोज याद दिलाना है, ताकि फिर आत्मा और ज्यादा मोटिवेट होगी वही वाले तरीके को यूज करने के लिए। नाउ व्हेन एवर एनी सिचुएशन विल कम, बात आएगी, परिस्थिति आएगी, पास्ट एक्सपीरियंस, अब कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस है, अब इस पास्ट एक्सपीरियंस को लेना है, उस दिन झुके थे बहुत अच्छा लगा। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, कि आई एम अ सोल, प्योर सोल, सामने वाला भी आत्मा। बिलीफ सिस्टम क्या है, लव वर्क्स, पीस मेक्स माई लाइफ ब्यूटिफुल, बिलीफ सिस्टम। जब तीनों फैक्टर्स चेंज हो गए, थॉट्स चेंज, डेस्टिनी चेंज।
3: बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मेरा पहले संस्कार चेंज किया था, अच्छे से गुस्से वाला, कड़क बात करना और ये करना, मैं नॉर्मल हो गया था, तो मुझे लगता था कि जो भी बोल रहा है कि यू डिडंट यू स्पोक टू मी रूडली, तो मैं तो कमाल है यार, आप ऐसे ही बोल रहे हो। वैसा जितना नॉर्मल और नेचुरल वो सेल्फ बना था, इसमें कैसे आऊं।
4: यस श्योर,
3: थैंक यू सो मच,
4: ओम शांति,
3: ओम शांति, थैंक यू।
5: व्हेन वी आर सोल कॉन्शियस वी ब्रिंग द ओरिजिनल संस्कार्स ऑफ द सोल, प्योरिटी, peace, love, power and happiness into our karma. We experience these qualities when we bring them into action. For example, if we cross a problem peacefully, we will experience peace. When we experience our qualities, we do not expect them from others. When we are body conscious, we expect peace, love, power and happiness in our roles, achievements and from people. When we are soul conscious, we accept others as they are. We use our qualities in every thought and action and radiate them to others. We shift from asking to giving. If we pay attention to working on our ego, we start putting aside our ego and bringing our qualities into action. Qualities of forgiveness, humility, letting go and acceptance will increase soul power. We will start shifting from body consciousness to soul consciousness. Social conditioning teaches us to use our acquired sanskars because it appears to get our work done and demands respect from others. Acquired sanskars will always deplete soul power. and will radiate negative energy to others and receive the same in return, which further depletes our power.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: बाजू बाबू

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो हम आज देखते हैं कि योगाभ्यास एक इंसान के जीवन का एक पहलू बनता जा रहा है, लेकिन इसकी विधि क्या है, योग और योगा में अंतर क्या है, इसे नहीं जानने के कारण हम योग को ही योगाभ्यास समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम इसकी विधि को जाने तो हमें पता चल जाएगा कि योग क्या होता है, इसे हमें कैसे करना चाहिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, योगाभ्यास के लिए इसकी क्या विधि है। तो योगाभ्यास के लिए विधि और विधान, यहाँ पर हम देखते हैं प्रायः यह माना जाता है कि योगाभ्यास के लिए तो मनुष्य को कहीं दूर जंगल में या गुफा में चले जाना पड़ता है, या अलग थलग एक कुटिया बनाकर और एक लोटिया मात्र ही अपने पास रखकर साधना करनी पड़ती है। लेकिन गीता में इस सत्यता की साक्षी है कि भगवान ने तो ऐसा कुछ भी आदेश निर्देश नहीं दिया है। वास्तव में बात तो यह है कि ये जो हमारा शरीर है, शरीर ही आत्मा की एक कुटिया है। अतः भृकुटी जिसमें कि आत्मा का वास है, एक कुटी अथवा गुहा ही तो है। अतः जंगल में जाकर कंकड़ पत्थर को जोड़कर कुटिया बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुटिया में तो आत्मा पहले से ही है। योगी के लिए विधान यह नहीं है कि वह किसी निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहे, बल्कि यह है कि वह अपने मन को निर्जन करे, अर्थात उसमें मित्र जन संबंधी जन की बजाय एक परमात्मा, परमपिता परमात्मा की स्मृति को स्थापित करे। फिर वह इस सत्यता का मनन करे कि यह शरीर तो एक कुटिया है, मैं इस कुटिया का वासी एक चेतन हाँ आत्मा हूँ। अब हमें चैतन्य में ही आत्मा को कुटिया में महसूस करना है, उसे जानने की कोशिश करनी है कि आखिर वो कुटिया में कहाँ है, कैसे है। यही हमारा परमात्मा के साथ, जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा से हमारा कैसे संबंध होगा, इसे हम इसी विधि से जानेंगे कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है योगाभ्यास के लिए विधि। यदि हम देखते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की भूल यह है कि वह इस संसार को एक मुसाफिर खाना मानने की बजाय अपना देश मान बैठता है और घर को अपना घर समझ लेता है। फिर जब वह उससे लगाव छोड़ना चाहता है तो यहाँ से निकलकर दूर कहीं कुटिया बनाने की सोचता है। परंतु यदि वह यह समझकर चले कि मैं तो एक यात्री हूँ, यह संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर तो मुझे यहाँ से परम धाम अपने प्यारे घर अथवा देश में जाना है, तो उसमें आसक्ति अथवा मोह नष्ट हो जाएगा और वह भ्रिकुटी अथवा देह को ही अपना शिविर अथवा पड़ाव मानकर तथा स्वयं को इसमें जागती हुई एक ज्योति मानकर उन्नति कर सकेगा। तो यही है योग की विधि। अगर हम ये समझ ले कि इसकी विधि क्या है, तो इसकी विधि के द्वारा ही हम योग कि जो एक सफल प्रयास है उसमें संपूर्ण जो उसकी स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है योगाभ्यास के लिए विधि। तो हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि योग के लिए एक अन्य बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। हम देखते हैं कि घर की तार को जब बिजली घर से आ रही तार से जोड़ा जाता है तभी घर की तार में भी करंट आता है। परंतु तार को तार से जोड़ने की विधि यह है कि दोनों के ऊपर से जो रबड़ अथवा प्लास्टिक उतार कर ही धातु को धातु से जोड़ना पड़ता है। वरना यदि रबड़ या प्लास्टिक समेत तारों को जोड़ दिया जाए तो बिजली का करंट और लाइट तथा उसका जो पावर है नहीं आ सकती वहां तक। ठीक इसी प्रकार शरीर भी आत्मा के लिए रबड़ है, प्लास्टिक या चमड़ा ही है। जब एक मनुष्य देह के भान से अगर वो उससे परे होकर रहे तो ही वो आत्मा को समझ सकता है। देह के भान में रहकर परमात्मा को याद करेगा तब तक उसे ईश्वरीय लाइट और पावर की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी जो शक्ति है उसकी प्राप्ति उससे नहीं होगी। अतः योगाभ्यास जो भी है जो इसे करते हैं एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस प्रकार से मनन करे कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, अचर अमर अविनाशी, मैं देह नहीं हूँ। देह तो मेरी कुटिया है, मैं अजर अमर अविनाशी एक आत्मा हूँ। इस तरह अपने को आत्मा समझ कर ही हम इस देह के भान से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार कच के चिंतन से आत्मा देह भान से न्यारी हो जाएगी और तभी उसकी स्मृति रूपी तार परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमात्मा से तार को जोड़ने के लिए हमें अपने देह के भान से निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे नहीं छोड़ते हैं तो हम परमात्मा को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है। अगर हम कहते हैं कि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, हाँ, अगर हम परमात्मा को परम पिता बोलते हैं तो बच्चे तो अक्सर अपने पिता की तरह ही होते हैं। तो पिता भी तो हमारा वैसा ही है जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु। तो इस ज्योति स्वरूप को हम किस रूप में पहचानने के लिए अपने कौन से स्वरूप को हमें याद करना है इसे जानने की बहुत जरूरी है। तभी हम परमात्मा को और उनके साथ अपने संबंध हम जोड़ सकते हैं, अपने पिता के साथ हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद आती है कि कर ले शिव का ध्यान सदा तुत सुख पाएगा। समय बड़ा अनमोल नहीं फिर आएगा, सतयुग त्रेता द्वापर से तू आए पड़ा कलयुग में, खो दे सारी पुण्य की पूंजी, लाया था जो संग में। सत्संग बड़ा है
प्यारे शिव भोलेनाथ पुकारे। भीतर के खोल विकार जो किवाड़ है उन्हें किवाड़ को खोलना है, भीतर के खोल किवाड़। कुछ पल्ले पड़े तुम्हारे देहभान के छोड़ो धंधे, क्यों बने नैन सुख अंधे, स्मृति रख चलते फिरते तो कटे गले के फंदे। तू रोता क्यों जंगल में, शिव आए तेरे जीवन में, साधारण मनुष्य तन में मुरली सुन मन मधुबन में, कर ले शिव का ध्यान सदा तो सुख पाएगा, समय बड़ा बलवान नहीं फिर आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि एक शिव परमात्मा से अगर हमारा संबंध जुड़ जाए तो और क्या चाहिए, यही है हमारी योग की विधि। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: इतनी खुशी है यहाँ की जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो, अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता, हम लोग मजे से उसी क्या किया रेस्टोरेंट में डांस करने लगे। लेकिन यहाँ
1: अच्छा, अब देखो

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
2: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद शायद खेतड़ी में ही सबसे ज्यादा दिन रुके थे। उन्हें राजस्थान से विशेष लगाव हो गया था। राजा अजीत सिंह भी जी जान से स्वामी जी की सेवा करते थे। दोनों की आत्मीयता बहुत गहरी हो गई थी। खेतड़ी के अनेकों संस्मरण हैं।
1: स्वामी जी जब कोई पुस्तक पढ़ते थे तो उनके पढ़ने की गति देखकर चकित होकर महाराजा ने एक दिन पूछा,
2: स्वामी जी इतनी जल्दी आप कैसे पढ़ लेते हैं?
1: इस सवाल का जवाब स्वामी जी कई लोगों को कई बार दे चुके थे। इस बार भी उन्होंने समझाया,
3: कोई बालक जब नया नया पढ़ना आरंभ करता है तो वो एक अक्षर का दो तीन बार उच्चारण करने के बाद ही पूरे शब्द का उच्चारण करता है। उस समय उसका ध्यान प्रत्येक अक्षर पर रहता है, परंतु जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है तब उसकी दृष्टि अक्षर पर नहीं बल्कि एक एक शब्द पर पड़ती है और वो अक्षरों पर ध्यान दिए बिना ही सीधे शब्द का बोध करता है। जब उसका अभ्यास और भी बढ़ जाता है तो उसकी दृष्टि सीधे एक एक वाक्य पर पड़ती है और उसके अर्थ का बोध भी बढ़ जाता है। इसी अभ्यास में और भी वृद्धि हो जाने पर एक एक पृष्ठ का ज्ञान होने लगता है। ये केवल अभ्यास, ब्रह्मचर्य और एकाग्रता का फल है और कुछ नहीं। प्रयास करने पर ऐसा कोई भी कर सकता है। आप प्रयास कीजिए तो आपसे भी ऐसा ही होगा।
0: खेतड़ी के राजा को पुत्र नहीं था। उन्हें विश्वास था कि गुरुदेव के आशीर्वाद देने से अवश्य पुत्र लाभ होगा। इसी से वे एक दिन जिद कर बैठे।
2: महाराज, आप आशीर्वाद दें कि मुझे एक पुत्र हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके श्रीमुख से इस बात का उच्चारण मात्र से मेरी इच्छा पूरी होगी।
1: राजा का एकांतिक अनुरोध और अटूट विश्वास देखकर स्वामी जी ने हृदय से आशीर्वाद दिया था। डेढ़ वर्ष के बाद दूसरी बार खेतड़ी में लौटकर आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ था।
0: राजा से घनिष्ठता होने के बावजूद स्वामी जी हमेशा राजमहल में नहीं रहे। वे तो अक्सर दीन दरिद्र भक्त प्रजागण के घर भी जाया करते थे। खेतड़ी के भक्तों में अन्यतम अनुरागी भक्त थे पंडित शंकरलाल। इनके दरिद्र ब्राह्मण होने पर भी स्वामी जी ने अनेकों बार उनके घर पर भिक्षा ग्रहण की थी। उनके निकट राजा, प्रजा सभी समान स्नेह के पात्र थे। वे सबको आनंद पूर्वक धर्म कथा सुनाते तथा श्री रामकृष्ण के उपदेश और जीवन की घटनाओं का उल्लेख कर उन सब बातों को सरल भाव से समझा दिया करते थे।
1: खेतड़ी में स्वामी जी आनंद पूर्वक ही थे और खेतड़ी वासी भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे, परंतु स्वामी जी की अंतरात्मा उन्हें कभी भी स्थिर होकर रहने नहीं देती थी। अतः 27 अक्टूबर को उन्होंने खेतड़ी से विदाई ली। शर्मा जी के मतानुसार खेतड़ी से विदा लेने के पूर्व राजा अजीत सिंह ने उनके विदाई समारोह के लिए राज्य सभा बुलाई थी एवं वहां उन्हें विवेकानंद नाम से अपना परिचय देने और इस नए नाम को नहीं बदलने का उनसे अनुरोध किया था।
0: खेतड़ी से चलकर पहले वे अजमेर पहुंचे और अपने पूर्व परिचित श्रीयुत हरिविलास सारदा के घर दो चार दिन ठहर कर बेवार चले गए। उस समय हरिविलास जी के मित्र पंडित प्रवर श्यामी जी कृष्ण वर्मा अजमेर में रहते थे, किंतु स्वामी जी के अजमेर में रहने के समय वे कार्यवश बंबई चले गए थे। लौट कर आने के बाद जब उन्होंने सुना कि स्वामी जी बेवार चले गए हैं, तब वे भी तक्षण बेवार जाकर स्वामी जी को लौटा लाए और उन्हें अपने घर में प्रायः 14-15 दिनों तक रखा। अजमेर में स्वामी जी के रहने के समय हरिविलास जी और श्याम जी ने उनसे घनिष्ठ रूप से मिलने का सुयोग पाया था तथा स्वामी जी के वेदांत में पांडित्य, स्वदेश प्रेम, सुकंठ का संगीत आदि से वे दोनों विमुग्ध हो गए थे। हरिविलास जी की दैनंदिनी में लिखा है, यदि मेरी बहुत बड़ी भूल ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये विश्ववरेण्य होंगे।
1: राजस्थान भ्रमण के समय अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हुई थी। उन घटनाओं से स्वामी जी के चरित्र के विविध आयामों से परिचित होने के अवसर मिलते हैं। राजस्थान में एक बार ट्रेन से यात्रा करते समय उनके डिब्बे में दो अंग्रेज सहयात्री थे। इन लोगों ने सोचा कि स्वामी जी मात्र एक साधारण फकीर हैं, अतएव वे अंग्रेजी वार्तालाप करते करते स्वामी जी का प्रसंग उठाकर हंसी मजाक करने में उन्मत्त हो गए। स्वामी जी जैसे कुछ समझते ही नहीं है इस भाव से चुपचाप अम्लान वदन बैठे रहे।

0: कुछ देर बाद एक स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर स्वामी जी ने स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में एक ग्लास पानी मांगा। दोनों अंग्रेज सहयात्रियों ने देखा कि स्वामी जी उन लोगों की भाषा जानते हैं, तब बहुत लज्जित और आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा कि वे सब कुछ समझने पर भी रंच मात्र क्रोध व्यक्त किए बिना कैसे चुपचाप बैठे थे। उत्तर में स्वामी जी ने कहा,
1: देखिए मित्रों, मूर्खों के संपर्क में मैं अपने जीवन में ये पहली बार ही नहीं आया हूँ।
2: ये सुनकर सहयात्रियों को क्रोध तो अवश्य हुआ, किंतु स्वामी जी का तेजोदित सुगठित शरीर देखकर उन लोगों ने अपना क्रोध दबाकर उनसे क्षमा याचना की।
0: राजस्थान में ही एक बार ट्रेन से लंबा सफर करते समय एक ऐसे थियोसोफिस्ट सहयात्री आ गए जो अलौकिकता में प्रचंड विश्वास रखते थे। विद्वान होने पर भी वे धर्म के विषय में अत्यंत अज्ञता का परिचय देकर अपने अनेक मूर्खोचित प्रश्नों से स्वामी जी को उतप्त कर रहे थे। स्वामी जी हिमालय गए थे कि नहीं, वहाँ अलौकिक शक्ति संपन्न महात्माओं का पता लगा था कि नहीं, आदि प्रश्नों का अंत नहीं था। स्वामी जी ने निश्चय किया कि इस मूर्ख पंडित को शिक्षा देना आवश्यक है। अतएव भीतर की हंसी को भीतर ही दबाए रखकर वे महात्माओं की अति आश्चर्यपूर्ण सिद्धियों और उनके प्रयोग के संदर्भ में ऐसी चमत्कार पूर्ण कहानियां कहने लगे कि वे महोदय विस्फोरित नेत्रों से उनकी ओर देखकर और अपने दोनों होंठ खोलकर मानो उनकी कहानियों को निगलने लगे। स्वामी जी के थोड़ा रुकने पर उक्त महोदय ने पुनः प्रश्न किया कि महात्मा गण ने वर्तमान युग की अवधि के संबंध में कुछ कहा है या नहीं।
2: हाँ, महात्माओं के साथ इस विषय पर लंबी चर्चा हुई थी। महात्माओं ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कब किस प्रकार महाप्रलय आएगा और प्रलय के अंत में नवीन सत्य युग के प्रवर्तन के लिए वे लोग किस प्रकार नए मनुष्य की सृष्टि करेंगे। उक्त सज्जन ने स्वामी जी की सभी बातों पर निर्विवाद रूप से विश्वास कर लिया और इतनी सहजता से उन्होंने इतना बड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है कि उसके प्रतिफल स्वरूप स्वामी जी को अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने सहज ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था।
0: भोजन उपरांत स्वामी जी ने उक्त व्यक्ति को कुछ और ठीक से देखा। वे समझ गए कि वे सज्जन हृदयवान, सरल और अलौकिक कार्यों के प्रति इतने आस्थावान हैं कि इन्होंने विचार बुद्धि खो दी है। अतएव मस्तिष्क की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए उन्होंने तब दृढ़ स्वर से ही बातें खोलकर कहा,
1: आपने अपनी विद्या और बुद्धि के रहते हुए भी इन सारी असंभव अद्भुत बातों को कैसे मान लिया।
2: उक्त सज्जन ने लज्जा से सर झुका लिया और एक बात भी नहीं कही। तब धर्म के तात्पर्य की व्याख्या एवं सीर अद्भुत विश्वसनीय धारणाओं को मिटाने के उद्देश्य से स्वामी जी कहने लगे,
1: बंधु, देखने से तो आप बुद्धिमान ही प्रतीत होते हैं। आपके समान व्यक्ति के लिए कुछ बुद्धि विवेचना कर चलना उचित है। सिद्धाई के साथ आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विचार कर देखने से यही पाया जाता है कि जो व्यक्ति सिद्धाई दिखाता है वो अपनी वासना का दास और स्वार्थपरायण होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है चरित्र बल रूपी यथार्थ शक्ति अर्जित करना। इसका अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि रूपों को जीतना और वासना को निर्मूल करना। जिन जादुओं या इंद्रजालों से मानव जीवन की किसी भी समस्या का यथार्थ समाधान नहीं होता, उनके पीछे दौड़ने का अर्थ है शक्ति का अनुचित अपव्यय। यह मात्र एक हीन स्वार्थपरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इसके फलस्वरूप मस्तिष्क विकार उत्पन्न होता है। इन्हीं मूर्खताओं ने तो हमारी जाति का सर्वनाश किया है। अभी हम लोगों के लिए आवश्यक है सशक्त और सबल व्यवहारिक बुद्धि की, सर्वसाधारण के साथ सहानुभूति की तथा मनुष्य निर्माण करने योग्य दर्शन और धर्म की।
0: सब सुनकर स्वामी जी के उद्देश्य, धर्मनिष्ठा और महाप्राणता के संबंध में उक्त सज्जन के संदेह जाते रहे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब से वे स्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण करेंगे।
2: श्री गिरीश चंद्र घोष को एक दिन बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने एक और घटना बताई थी। एक बार वे कहीं जाने के लिए राजस्थान के किसी स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु किसी कारण से ट्रेन के नहीं आ पाने से उन्हें 3 दिन वहीं रुकना पड़ा था। उस समय अनेक लोग उनके पास आकर धर्म चर्चा किया करते। दिन रात लोग आते और वार्तालाप कर चले जाते, किंतु उन्होंने कुछ खाया है या नहीं ये कोई भी नहीं पूछता और वे भी नहीं कहते। तीसरी रात सबके चले जाने पर एक दीनहीन व्यक्ति ने आकर पूछा,
3: महाराज आप 3 दिनों से लगातार बातें ही कर रहे हैं, जलपान तक नहीं किया, मुझे आपको देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है महाराज।
1: तुम तो नारायण बनकर मेरे पास आए हो। हाँ मैंने सही में 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे?
3: मेरा मन तो यही चाहता है महाराज, पर मैं अपने यहाँ बनी रोटी आपको दूँ कैसे? आज्ञा हो तो मैं आटा दाल ला दूँ, आप स्वयं ही पका लीजिए।
1: नहीं, मैंने नियम बना लिया है कि आग स्पर्श नहीं करूंगा, तुम मुझे अपनी बनाई हुई रोटी ही ला दो, मैं वही खाऊंगा।
3: महाराज मैं खेतड़ी राजा की प्रजा हूँ, उन्हें अगर मालूम पड़ गया कि मैंने आपको अपनी रोटी खिलाई है तो मुझे भारी दंड मिलेगा महाराज, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा।
1: अरे डरो मत, तुम्हें दंड नहीं देंगे, मेरी बातों पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
2: इस घटना का जिक्र करते हुए स्वामी जी ने कहा था, उस क्षण अगर देवराज इंद्र स्वर्ण पात्र में अमृत भी लाकर उन्हें देते तो शायद उन्हें इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी उस गरीब की रोटी से हुई थी।
0: उसकी दया देखकर स्वामी जी की आंखों में जल भर आया और उन्होंने सोचा कि ऐसे हजारों उच्च चेतना संपन्न व्यक्ति पर्ण कुटियों में निवास करते हैं, किंतु हमारी नजरों में वे बराबर घृणा के पात्र और हीन रहे हैं। उन्हें उसके हाथों का भोजन ग्रहण करते देख स्टेशन के उच्च जाति के कुछ लोगों ने कहा,
4: आपने उसके हाथ का खाना खाया, क्या ये अच्छा हुआ?
1: तुम लोगों ने तो मुझे 3 दिनों से बकवाया, किंतु मैंने कुछ खाया कि नहीं क्या इसकी खोज खबर ली थी? फिर भी वो व्यक्ति छोटा है और आप अपने को ऊंचा कहकर अपनी बड़ाई करते हो, उसने जो मनुष्यता दिखाई है उससे वो छोटा कैसे हुआ?
2: खेतड़ी के राजा से परिचय होने के बाद स्वामी जी द्वारा राजा को इस घटना के संबंध में बताने पर राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया। वो तो भय से कांपते बदन से राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। मन में यह शंका हुई कि पता नहीं आज भाग्य में कौन सा दंड बदा है, किंतु राजा ने उसकी प्रशंसा की और राजा की कृपा से उस दिन से उसकी दरिद्रता दूर हो गई।
0: स्वामी जी परिवारजक जीवन की बात बहुत कुछ नहीं बताया करते थे, केवल बातचीत के क्रम में 2-1 घटनाएं व्यक्त हो जाती। एक बार एक शिष्य के सामने अन्य मनस्क भाव से उन्होंने देखा था,
1: ओह कितने कष्टों से दिन बीते हैं, एक बार लगातार 3 दिनों तक भोजन नहीं मिलने से रास्ते पर मूर्छित होकर पड़ा था, जब होश हुआ तो देखा कि सारा शरीर वर्षा के जल से भीग गया है, पानी में भीगने से शरीर थोड़ा स्वस्थ लग रहा था, तब उठकर धीरे धीरे पैदल चलकर एक आश्रय में पहुंचकर कुछ खाया, तब प्राण बचे।
2: स्वामी जी राजस्थान भ्रमण समाप्त कर गुजरात पहुंचे। उनका पहला पड़ाव था अहमदाबाद, वहां पर उन्होंने श्री लाल शंकर उर्मिया शंकर नामक एक उप न्यायाधीश के घर में आश्रय पाया। अहमदाबाद गुजरात का ऐतिहासिक स्थान है। पहले उसका नाम कर्णावती था, बाद में उसे मुसलमान सुल्तानों की राजधानी होने का गौरव मिला। कभी यह भारत का एक अन्यतन सुरम्य विशाल महानगर था। टॉमस रो ने इसका लंदन की भांति विशाल कहकर उल्लेख किया था। जैनों के समुत्थान काल में ये अनेक सुंदर जैन मंदिरों तथा मुसलमानों के शासन काल में अनेक मनोहारी मस्जिदों और मकबरों से सुशोभित हुआ। स्वामी जी ने इस नगर के मध्य और आसपास में स्थित इन कीर्ति चिन्हों का अवलोकन किया। यहाँ जैन पंडितों से चर्चा करने का सुयोग पाकर उन्होंने जैन धर्म और दर्शन के संबंध में अपने ज्ञान भंडार को और समृद्ध किया। इस प्रकार कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत करने के बाद वे काठियावाड़ के अंतर्गत स्थित वर्धमान पहुंचे। वहीं रानिक देवी के मंदिर का दर्शन करने के उपरांत लिमड़ी की ओर चले, जहां उन्हें भयंकर चक्र में फंसना पड़ा था।
0: लिमड़ी राज्य कपास के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य की राजधानी का नाम भी लिमड़ी है और तत्कालीन राजा का नाम था ठाकुर बेहमिया चांद लिमड़ी। लिमड़ी नगर तक स्वामी जी पांव पैदल हो गए थे। दिन भर रास्ता चलकर वे भिक्षात्र से उदर पोषण करते और शाम होने पर जहां तहां ठहर जाते। लिमड़ी शहर में पहुंचकर खोजने पर पता चला कि समीप ही साधुओं का एक आश्रम है। वहां निवास और भोजन दोनों की सुव्यवस्था है। साधुओं के पास आते ही उन लोगों ने उनका सादर स्वागत कर उनके रहने के लिए एक अलग कमरा दिखा दिया और कहा कि जब तक उनकी इच्छा हो वे यहाँ रह सकते हैं। उस समय स्वामी जी काफी थके हुए और भूख से व्याकुल थे, अतः जगह कैसी है इस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया और फिर साधुओं के आश्रय के संबंध में सहसा किसी के मन में संदेह उत्पन्न ही क्यों होगा। अतएव वे उपस्थित समस्या के समाधान के उद्देश्य से वहीं ठहर गए।
2: किंतु एक दो दिन बाद ही उन साधुओं का जो परिचय मिला उससे उनका सर चकरा गया। उन्होंने देखा कि ये वाम मार्गी धर्मध्वजी साधुगण अत्यंत घृणित साधना प्रणाली का अनुसरण करते हैं। धर्म के नाम पर कुत्सित कर्मानुष्ठान ही उन लोगों का ध्येय है। लोगों की आवाज सुनकर स्वामी जी सहज ही समझ गए कि ये सब इंद्रियोपासक हैं। सब कुछ देख सुनकर उन्होंने संकल्प किया कि शीघ्र ही वे जगह छोड़ देंगे। लेकिन भारी विपदा आ खड़ी हुई। वहां से भागने के लिए जब वे दरवाजा खोलने गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे को बाहर से चटकनी लगाकर बंद कर दिया गया है और अड्डेबाज भ्रष्ट साधुगण उन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मोटे तौर पर उस समय वे उन लोगों के हाथों बंदी थे। अनजाने परिवेश में इस प्रकार के हीन व्यक्तियों द्वारा छल बल से ग्रसित होकर वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे थे, ये कहने की जरूरत नहीं है। इससे भी बढ़कर जब उन साधुओं के मनोभाव से वे अवगत हुए तब उनकी भांति निर्भीक वरी का हृदय भी कांप उठा। इन व्यभिचारी दुर्वृत्तों के प्रधान पुजारी ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम एक उच्च कोटि के साधु लगते हो और तुम्हारा तेजोदित शरीर देखकर प्रतीत होता है कि तुमने लंबे अरसे में ब्रह्मचर्य पालन किया है। अब तुम अपनी तपस्या का फल हम लोगों को दान करो। हम लोगों ने एक विशेष साधना का अनुष्ठान कर रखा है, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम जैसे ब्रह्मचारी भंग करना आवश्यक है, अतः तुम तैयार हो जाओ।
0: वे सिहर उठे, किंतु उन्होंने अपनी सुध बुध नहीं गवाई। उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे अनेक गुप्ताचारी तथा कथित साधु हैं जो धर्म के नाम पर घृणित अनुष्ठान करते हैं, यहाँ तक कि नरहत्या भी करते हैं। किंतु वो प्रभिज्ञता ऐसे निष्ठुर रूप से उनके ही जीवन में उन्हें प्राप्त होगी, इसकी तो कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। तथापि विपत्ति के समय मूर्खता से काम नहीं चलेगा, रक्षा का उपाय निश्चय ही ढूंढना होगा। इसी से प्रकट रूप से बिना किसी घबराहट को व्यक्त किए उन्हीं लोगों के निर्देशानुसार पुनः उसी बंदी गृह में वे चले आए और एकाग्र मन से अपने इष्ट देवता का नाम जपने लगे।
2: यहाँ आने पर एक लड़के को स्वामी जी खूब स्नेह करते थे। वो नित्य उनके पास आता और गपशप करता। अड्डे के लोग उस लड़के पर संदेह नहीं करते थे और उसके आने जाने में मनाही नहीं करते थे। दूसरे दिन यथा समय उस लड़के के आने पर स्वामी जी ने मानो मनचाही वस्तु पाली। उन्होंने मित्र भाव से उस लड़के को अपने समक्ष उपस्थित संकट के विषय में बच्चों के समझने योग्य रूप में मोटे तौर पर बताया। इस पर अत्यंत कोमल स्वरों में उसने जानना चाहा कि वो इस प्रसंग में कुछ कर सकता है कि नहीं। स्वामी जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे द्वारा ही मेरा उद्धार होगा। उन्होंने मिट्टी के टूटे घड़े के एक टुकड़े पर लकड़ी के कोयले से अंग्रेजी में अपने समक्ष उपस्थित संकट का परिचय देने के उद्देश्य से दो चार बातें लिखकर अपनी मुक्ति के लिए सहायता की याचना की और वो ठीकरा उस लड़के को देकर उसे लिमड़ी के राजा तक पहुंचा देने को कहा। लड़के ने उसे कपड़े में ढक लिया और तुरंत दौड़कर लिमड़ी के राजा ठाकुर साहेब बेहमिया चांद के पास पहुंचा और मिट्टी के भांड का टुकड़ा उनके हाथों में देकर स्वयं जो सुना था वो भी उसने राजा को सुनाया। ठाकुर साहब ने पल भर की देर किए बिना अपने कुछ अंग रक्षकों को स्वामी जी के छुटकारे के लिए भेजा और अड्डे के चारों ओर सेना तैनात कर दी। इस उपाय से स्वामी जी ने शीघ्र राजमहल आकर अपनी विपता की कथा ठाकुर साहब से कही। तब राजा ने क्रोध से आग बबूला होकर उन भ्रष्ट एवं कपटी साधुओं को दंड दिया। तदुपरांत महाराजा के अनुरोध पर स्वामी जी राजभवन में ही रह गए। राजा ने भविष्य में वास स्थान का निर्णय करने और अधिक सतर्कता बरतने के लिए स्वामी जी को सावधान कर दिया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वामी जी ने भी स्वयं इसकी आवश्यकता का अनुभव किया था। लिमड़ी के महाराजा ठाकुर साहब बहुत ही खुले दिमाग के व्यक्ति थे। कई वर्ष पूर्व वे इंग्लैंड और अमेरिका से हो आए थे और उन्होंने ही सबसे पहले विवेकानंद को विदेश जाकर वेदांत का प्रचार करने का अनुरोध किया था। लिमड़ी में रहते समय स्वामी जी ने अनेक पंडितों से संस्कृत में विचार विनिमय किया था। पुरी के गोवर्धन मठ के तत्कालीन परमाध्यक्ष श्री शंकराचार्य इसके साक्षी थे। उन्होंने कहा था कि स्वामी जी के पांडित्य और विवेक ने उन्हें चकित कर दिया था।
0: ऐसे ही अनेकों अच्छी बुरी घटनाएं स्वामी जी के जीवन में घटी। भ्रमण के दौरान विभिन्न प्रकृति के लोगों से मिले, अनेक ज्ञानार्जन किया और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों और घटनाओं से हमेशा कुछ न कुछ नया सीखा। ये सारे खट्टे मीठे अनुभव उनके भविष्य के कर्म जीवन में काम आए।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, जीवन में जब भी दुख तकलीफ होता है, व्यक्ति अपने प्रियजनों में अपनी माँ को सबसे ज्यादा याद करता है, क्योंकि माँ के पास उसके दुख के जख्मों पर मरहम लगाने की ताकत होती है। हमारे शरीर में कितनी ही बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों का इलाज हम जनरली डॉक्टर्स के पास एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी आदि आदि सब चेक कर चुके होते हैं। कई बार इनका इलाज माँ प्रकृति की गोद में सहज रूप में प्राप्त होता है। सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते और उसका उपयोग नहीं कर पाते। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आरजे शांतनु, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके साथ हूं आज एक और नए गेस्ट के साथ। रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं साथियों, और आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हमारे बीच में हैं, उन्हें हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है, और ये है हमारे बीच में आदरणीय पटेत साहू जी। पटेत साहू जी ओडिशा के बहुत छोटे से एक गांव से आते हैं और वहां से आज वो हमारे बीच में जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो पटेत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला।
3: जी जी
2: पटेत जी, आप अपने अगर जीवन के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहें, कैसा था आपका बचपन, कैसा मतलब ये जो आप काम करते हैं कि आपने लगभग 3000 से भी ज्यादा प्रकार के औषधीय पौधों को अपने घर के पीछे आंगन में जगह दी है, और उनमें से कितने ऐसे पौधे हैं जो कि भारत सरकार के लिस्ट में एंडेंजर्ड है, मतलब जो खत्म होने की कगार पर है, ऐसे स्पीशीज को आपने जगह दी है, ऐसे जैव विविधताओं को जगह दिया है, ये शुरुआत कहाँ से हुआ? आपके जीवन का थोड़ा हमको परिचय कराएं तो बड़ा अच्छा होगा।
3: जी जी जी मैं पटेत कुमार साहू, ओडिशा स्टेट कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट गांव रांदोल, हमारा जूनागढ़ ब्लॉक। तो हम जो मेडिसिन पौधा के बारे में आपको कुछ पूछेंगे, तो अभी तक जो केमिस्ट्री के बारे में तो बहुत क्षति भी हुआ, तो हमारा जो खेती में जो केमिकल फर्टिलाइजर डीएपी यूरिया और जो पेस्टिसाइड मेडिसिन के लिए जो हमारा मनुष्य का प्राणी जगत का जो उपकार किया, जो कीट पतंग तो जिया, वो तो हमारा उपकारी किसान का उपकारी प्राणी है ना, वो तो वो जो केमिकल संपर्श में आने से तो वो पूरा खत्म हो गया। तो हमारा इसीलिए हमको याद आया कि हमारा दादी एक पारंपरिक चिकित्सक थे जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल हीलर, इसीलिए हमको मेरे दादी को बोला।
2: तो साथियों, पटेत साहू जी जो है उड़ीसा के एक बहुत छोटे से गांव कालाहांडी से आते हैं, और कालाहांडी में उन्होंने जो अपने घर के पीछे एक जादुई दुनिया बसा रखी है मेडिसिनल प्लांट्स की या औषधीय पेड़ पौधों की, वो देखने लायक है। आज उस जादुई दुनिया में हम जाने का एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और पटेत साहू जी से उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। पटेत साहू जी हमसे उड़िया में बात करेंगे और मैं आपके साथ हिंदी में उसका सार समझाऊंगा, और इसलिए पहला सवाल पटेल जी आपसे यही है कि आपके जीवन की शुरुआत ये पेड़ पौधों के साथ कैसे हुई? माँ प्रकृति के प्रति आपका ये जो प्यार है, ये कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: मोर ओजा स्वर्गत गोवर्धन साहू से जो पारंपरिक चिकित्सक थे, तो ताको सहित प्राय मु सबुबले माने से मते बेसी भलो पाथे, से मु केमती से पारंपरिक चिकित्सा सिखिबी सेति भाई मते तांकर प्रयास चल छिला। तो दिने कोन हला, तो एठी हमर पंचम क्लास पढुथिलु आमे, बोर्ड परीक्षा 5-7 दिन थिला, सेइ समय आमे पढापुरी करथिलु तांको कोठरी रे, सेठी से कौन से हिमदशा रे औषध गुडा कुंडी के डुगडा फोगवा को सबको डिस्टर्ब होता है। तापर ये जो चिता चेतन मान भागवत फागवत पाठ कर चिता चेतन काटुले सेठ मुझे कहली आउ चिता चेतन काटिले कौन हम आउ बही गुड़ाक रखिकी आमको बुढ़ा आमको पढ़े दौना एणुक बही को चिरीके फिंगी दे भल भाव से उठिली बही को फिंगीदेली फिंगी दे से कहले तो विभिन्न प्रकार पुस्तक ए बही विभिन्न भाषा भाषिक आज कल प्रिंट हो प्रचार प्रसार चली तु गोटे पुस्तक सीना फिंगी देलु चिरी फोपाड़ी देलु पोड़े देलु आउ विभिन्न भाषा जो प्रचार होची से पुस्तक गुड़ाक सारा विश्व तु कौन पोड़े दे पार से दिन शास्त्र प्रति मोर बहुत आह्लाद आसला आउ ये पारंपरिक चिकित्सा प्रति मोर आंचलिक गोटे
2: तो दोस्तों पटेल जी जो कह रहे हैं वो ये कि बचपन से ही उन्होंने अपने दादाजी को देखा था, दादाजी या पिताजी गोवर्धन साहू जी को देखा था जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक थे और उन्होंने ट्रेडिशनल हीलर जिसे कहते हैं जो कि पारंपरिक चिकित्सक होते हैं जो कई ऐसे पद्धतियों से बीमारियों का इलाज करते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी समस्या का समाधान या इलाज करते हैं। तो उनको देख करके इनके मन में बहुत प्रेरणा जगी कि ये क्या है जो मैं भी सीख सकता हूँ। उस समय वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच उनको लगा कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जागा, लेकिन जो ये पारंपरिक चिकित्सा का जो भी ज्ञान है वो हर भाषा में अवेलेबल नहीं है। और जहां तक मैंने पटेल जी के बारे में जाना है या पढ़ा है, आपके परिवार वाले चाहते थे कि आप पढ़ाई लिखाई करके कोई दूसरा जॉब या कोई दूसरे प्रकार के व्यवसाय में खुद को आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई की लेकिन आपने अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा के बीच में ही रखा। पटेल साहू जी आज भी अपने घर के बाहर एक लंबी कतार लोगों की होती है जिनकी वो चिकित्सा करते हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात दोस्तों बिना मूल्य करते हैं। वो ये जो चिकित्सा करते हैं पारंपरिक चिकित्सा प्रकृति के जड़ी बूटियों के द्वारा, उसका वो कोई भी पैसा नहीं लेते। लोग प्यार से जो भी उनके लिए लेकर के आते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, कोई कुछ नहीं लेकर के आए वो तो भी उन्हें उतने ही प्यार और सम्मान से उनकी चिकित्सा करते हैं। ऐसे महान पटेल साहू जी आज हमारे बीच में है। तो साहू जी आपसे अगला प्रश्न यही है कि जब लोग कोई काम करते हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी काम करे, एक अपेक्षा रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं कि कुछ पैसा कमाएं। आपके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा पैसा मैं भी कमाऊं, थोड़ा धन मैं भी कमाऊं?
3: पैसा भी था मुझे जरूरी नहीं, तो कैंती ये पारंपरिक चिकित्सा बची रह तो आगामी पीढ़ी जनता जमीती की माने से माने बहुत सुविधा पाइबे कहीं ना। आजिकल आधुनिक जो चिकित्सा बहुत महंगा चिकित्सा, गरीब लोग पैसा ना, तो चेरमूल चिकित्सा द्वारा से माने जो प्रकार उपकृत हे से अहर एपर्यंत मो चेष्टा चले आसी। आउ जो प्लांट गुड़ाक संपूर्ण चिरदिन बुड़ी जावा पर बसि से रियाज प्लांट गुड़ाक आम कलेक्शन कर रखीचु, आउ गोटे संग्रहालय कर से संग्रहालय जो प्लांट गुड़ाक रखा जाए से कुंडे अच्छी तले लगाई पलिथिन सेट कर लगाई। आउ आजिकल जो बटनिक कलेज जो बटनिक स्टूडेंट गुड़ा प्राक्टिकाल करने प्राय मो पाक बेस आसती फोन माध्यम गुड़ा गचर तार स्थित पचार।
2: तो पटेल साहू जी जो कह रहे थे दोस्तों वो ये कि ये सारा कुछ जो है वो एक उपकार की भावना से करते हैं, पैसे कमाने की भावना से नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जैसे एलोपैथी होम्योपैथी या जो भी है वो बहुत महंगा है, और वो चिकित्सा जो है वो बहुत कम लोग ही उसके पास तक पहुंच पाते हैं या उसको अपने लिए यूज कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। उस गरीब है, जो आदिवासी है, जो ऐसे लोग है जो गाँव के एकदम अंतराल में रहते हैं, जिनके पास इतना धन नहीं होता, वो कैसे अपने बीमारियों का इलाज कराए? तो प्रकृति जो है वो सभी संसाधन हमें फ्री में उपलब्ध कराती है, वो हवा भी फ्री में देती है, वो जड़ी बूटियां भी हमें फ्री में देती है, तो उन जड़ी बूटियों से इलाज का वो कैसे पैसा ले सकते हैं? इस भावना से उन्होंने ये परंपरा को आगे बढ़ाया अपने दादा गुरु का। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, देखा कि आसपास में वो जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधीय पेड़ पौधे हैं, उनका धीरे धीरे अब विनाश हो रहा है, लोग जानते नहीं हैं, कई लोग उनको मिटा देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको संग्रह करना शुरू किया। अपने घर के पीछे 1.5 एकड़ जमीन को उन्होंने संग्रहालय की तरह तैयार किया। उसमें उन्होंने लगभग 3,000 ऐसी प्रजातियों को जगह दी है जिनको स्टडी करने के लिए, जिनके बारे में जानने के लिए बॉटनी या ये पेड़ पौधों का जो स्ट्रीम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं बॉटनी की, वो तक आते हैं, वो आकर के भी जानते हैं, सीखते हैं। तो ये एक तरीका है समाज की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, प्रकृति की सेवा करने का, जो पटेल साहू जी और उनके दोस्त, उनके परिवारजन इसमें जुड़े हुए हैं। पटेल जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया तो आपको कैसा फील हुआ, क्या अनुभव था, कैसा लग रहा था आपको?
3: আমার প্রতিবর্ষ এটি হরওয়াল ফেয়ার হয়ে উড়িষ্যার তো আমার 2017 আর 2019 আমার ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার ভবানীপাটনা হরওয়াল ফেয়ার হয়েছিল সেইটি আমি প্রদর্শন করেছিল রেয়ার প্লান্ট প্রায় সাড়ে সাতশো ভেরাইটি 2017 তো সেটি তার সার্টিফিকেশন না দিয়া হয়েছিল তার পরিবার দিয়া হয়েছিল ঔষধ কেউ সে ঔষধীয় বৃক্ষটা কেউ রোগের ব্যবহার হব তারপরে কেতে পরিমাণে দিয়া যাব কেউ কেউ সময় কেউ জিনিস কলেকশন করা যাব তার ঔষধ গুণ যদি ভরপুর থিব তো এই এই সব গুড়াক আমি সে ঔষধ গুড়া প্রদর্শন করিকি সেটি মধ্য গোটে আমার যে সাংবাদিক গুড়াক অনেক সেমানে মধ্য তাকে শুটিং ফুটিং করি করি প্রচার প্রসার লগাইছিলে 2019 আমি সেঠু 800 ভেরাইটি পলিথিন সেট প্রদর্শন করেছিল সেটি মধ্যে হরবাল ফেয়ার হয়েছিল ওড়িশার অনুকোণর গুড়ায় বৈদ্য তাঙ্ক স্টল গুড়াক নিয়ে গুড়ায় ঔষধ নিজ তৈরি যে পারম্পরিক স্তরের যে ঔষধ গুড়া তৈরি করে আমার বৈদ্য মানে মানে স্টল মাধ্যমে প্রচার প্রসার করছেন তাঙ্কু তাঙ্কু এই গছ গুড়াক ইয়াদ করিবা পাই সেইটি আমি প্রদর্শন করেছিল আউ সে গছ গুড়াক কেউ সিজনরে কলেকশন করা হব তারপরে সমুদ্র পতনর কেতে দূরিয়া হব গছর উচ্চতা কেতে কেউ পরিবার গছ কেউ সিজনে তার ছেলি কলেকশন করা হব তো সে সবু গুড়াক সবু সাংবাদিক গুড়াক মো নাটা এটি প্রচার প্রসার পাই সহযোগ মধ্যে করেছিলে তারপরে ভোপাল ভোপাল 2008 আমি তাঙ্কর হরবাল ফেয়ার দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ ভোপাল সেইটু মো ট্রেনরে 200 ভেরাইটি রিয়ার প্লান্ট পলিথিন সেট সহ আম ওড়িশা কালাহান্ডি ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনরে মো নিজে আনি আনিছিলি যেটা কি আম ওড়িশারে মেলেনি তাকু মধ্যে আমি বঞ্চিত রাখিছু সেই সংগ্রহালয়ে এমতি কাম গুড়া কলে হি
2: সাথীও পটেল জি যে অভি হামসে কে রে হ্যায় ও ইয়ে কি উন ও সবসে পেরে তো দেশ কে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি কা বহুত বহুত ধন্যবাদ করতে হ্যায় কি উন্হোনে না কেবল উনকো পরিচয় উনকো পেহচানা উনকে কাবিলিয়ত কো পেহচানা লেকিন উনকে কার্যক্রম মন কি বাত মে ভি উন্হোনে উনকা জিক্র কিয়া হ্যায় पटेल साहू जी के परिश्रम का जिक्र किया है और साथ ही पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। लेकिन पटेल साहू जी इस कार्य को आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2008 में उन्होंने बताया कि वो भोपाल में गए थे जहां पर उन्होंने हर्बल फेस्टिवल में लगभग 200 वैरायटी पौधे लेकर के वो वहां पहुंचे थे। फिर ऐसे ही उन्होंने बताया उड़ीसा में प्रतिवर्ष हर्बल फेस्टिवल होता है और 2019 में हुए फेस्टिवल में सरकार ने देखा कि पटेल जी ने कितने सारे पेड़ पौधों को संरक्षण दी है और उसके द्वारा किस प्रकार से वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के सतत प्रयास की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर बहुत कठिनाइयां हैं, पेड़ पौधों को पालना, उनको बड़ा करना, उन्हें संरक्षण देना बहुत मेहनत का काम होता है। ऐसे एक सतत प्रयास में जुटे हुए एक, मैं तो कहूंगा तपस्वी हैं, जो कि सतत प्रयास के द्वारा इन पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, इनके द्वारा लोगों की जिंदगियों को बचा रहे हैं। तो ऐसे पटेल जी को फिर सरकार ने हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। पटेल जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप, आपके पूर्वज, इन सबको इन जड़ी बूटियों का ज्ञान था, पेड़ पौधों का ज्ञान था, तो वो इसका सही उपयोग जीवन में कर पाते थे। सिर्फ उपयोग ही नहीं, इन पेड़ पौधों का सम्मान भी करते थे। लेकिन आज की पीढ़ी में, या मैं खुद की भी बात करूं, तो मुझे पेड़ पौधों के बारे में शायद इतना नहीं पता। मुझे कोई पौधा देख करके लगता होगा कि ये तो घास है और मैं शायद उसको उखाड़ के फेंक देता हूँ, या ये तो जंगली लगता है, इसमें क्या ही है। हो सकता है कि कई ऐसे पेड़ पौधे जो हैं वो जंगली भले हैं, लेकिन वो औषधीय गुण होंगे उसमें, इसका हमको ज्ञान नहीं होता। तो आप वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप युवाओं को, यंग लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: ओ, परिवेश नष्ट होइबा द्वारा उत्ताप बढ़ी जाऊची। तापरे ए जो केमिकल व्यवहार करिबा द्वारा खाद्य पेय विषाक्त दुनिया गोटे माने अन्य प्रकार स्थिति सृष्टि करुची। ता द्वारा विभिन्न रोग सृष्टि होउची। जो रोग एमती सृष्टि हबो जे तापे खुद देखिला बेलकू ए आधुनिक औषध मध्ये काम देवनी। ए भलिया जिनिस गुडा प्रकृति ही प्रकृतरे सेटा विश्व को बचेबा पई गोटे महान माने सूत्र। एठी मु कहिबी जे आमर गोटे हिंदी गोटे प्रवाद अछि मु पढ़ीची, देश का मिट्टी देश का हवा, देश का पानी देश का दवा। जे जेउ देश रे जन्म होइछंती सेही देशर जलवायु रे उत्पन्न होउथिबा जड़ीबूटी बा खाद्य पेय एगुडा व्यवहार कले रोग हेइ पारिबन कि रोग रोगर प्रादुर्भाव बढ़िबनि। जेहेतु आमर रोग निरोधक शक्ति मध्य आजिकाली परिवेश नष्ट हेबारु आमर रोग निरोधक शक्ति मध्य कमी जाउथिबारु रोग सहजरे माने प्राणी जगत को एफेक्ट कला परे आउ ता ता कोनसे औषध मध्य व्यवहार कला परे किछ काम नै।
2: जो पटेल जी कह रहे हैं दोस्तों, वो कितना सुंदर है। उन्होंने हिंदी की ही एक बात को आगे रखी, देश की मिट्टी देश का हवा देश का पानी देश का दवा। तो उनके हिसाब से अगर पटेल साहू जी के अनुभव को हम समझें, तो वो कह रहे हैं कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहां की मिट्टी वहां की पानी वहां के आबो हवा में ही आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को उन्नत करने का, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का सारा मटेरियल होता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम देसी जो साधन हमारे पास होते हैं उनसे हम खुद को थोड़ा विमुख कर लेते हैं, और नतीजा हमारे सामने होता है कि हम खुद को कमजोर पाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृति में हर वो साधन जो मौजूद है वो हमारे जीवन की संवर्धना के लिए है, हमारे जीवन के संरक्षण के लिए है। लेकिन अगर हम प्रकृति को न समझें और अगर हम प्रकृति का प्रॉपर सम्मान न करें, तो हम हमारे समस्याओं से उलझे रहेंगे, कभी उससे बाहर नहीं आ सकते। तो पटेल जी, आज तो आपके सामने बहुत ऐसे लोग होंगे जो जानते ही नहीं है कौन सा पौधा क्या है, उसकी क्या बेनिफिट है, उसका क्या नीड है, मेरे जीवन में उसका क्या फायदा है। तो इस अज्ञानता को कम करने का क्या तरीका है? आपको क्या लगता है कैसे ये अज्ञानता को हम कम कर सकते हैं?
3: युवा पीढ़ी को मु गोटे कथा कहिबी आगो को केमती परिवेश माने सृष्टि करके ताको बंची के रखियो। वर्तमान भी जंगल मान कर पूरा संपूर्ण निया फिया लगे दी नष्ट कर देलेनी। जदी आगामी पीढ़ी पाई जदी आमे एबे जदी चेष्टा न करिबा ताले युवा पीढ़ी पाई बहुत माने कष्टदायक हबो। आउ माने उत्ताप बढ़ी जीवो। वर्षा समय वर्षा हेबनी, शीत समय शीत हेबनी। तापर जोटी वर्षा हवा कथा सेठी अधिक उत्ताप हेबो। ए सब लेकिन तो एणु गुड़े आगामी पीढ़ी की मु अनुरोध करुची जे केमती परिवेश सृष्टि करी परिवेश संतुलन रखा जीवो। एणु आगामी पीढ़ी को कहूँ सेमाने केमती एबेठू जदि सचेतन न हेबे ताहाले चिरदिन पई समग्र विश्व ध्वंस हबाटे एटा किछि माने किछि आशंका करा जाई पारे। एणु करी अनुरोध करुछि सेमाने केमती परिवेश को सृष्टि नुआ परिवेश सृष्टि करा जीव नष्ट त हेइछि। हाँ एणु करी सेमानको मु अनुरोध करि कहुछि सेमाने केमती परिवेश सृष्टि करिबे। आगामी आमर आगामी पीढ़ी जो माने आसिबे सेमानको तार दिग्दर्शन देबे। एणु करी मु सेमानको अनुरोध करुछि।
2: दोस्तों, पटेल साहू जी ने अपने इस उत्तर में न केवल एक ज्वलंत समस्या का जिक्र किया, जो कि है क्लाइमेट चेंज या परिवेश का जो बदलना है, आबो हवा का बदलना, उसके बारे में जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक अनुरोध भी किया हमारे युवा पीढ़ियों से। उन्होंने कहा कि जिस रीति से आज हम दोहन कर रहे हैं हमारे प्रकृति का, हमारे साधनों का, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जहां वृष्टि होनी चाहिए, बरसात होनी चाहिए, वहां पर सूखा पड़ेगा। जहां सूखा होना चाहिए, वहां बाढ़ आ रहा है। मतलब इस प्रकार का जो असंतुलन है, जो कि प्रकृति में, परिवेश में हम देख रहे हैं, उसके कारण ये समझ में आता है कि हम एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचती। इसलिए पटेल जी का विशेष रूप से सभी युवा साथियों से, सभी जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, हमसे इनका ये अनुरोध है कि अपने आसपास के परिवेश को, अपने आसपास की प्रकृति को सम्मान करें, अपने आसपास में इस प्रकार का एक परिवेश तैयार करें, एक वातावरण तैयार करें, जिसके द्वारा न केवल प्रकृति की सेवा हो रही है, लेकिन प्रकृति की सेवा के द्वारा आने वाली पीढ़ी की भी सेवा हो रही है। क्योंकि अगर आज हम प्रकृति की पालना नहीं करें, उसका संरक्षण, उसकी संवर्धना न करें, तो कल देख पाना मेरे लिए, आपके लिए मुश्किल है, और आने वाली पीढ़ी के लिए कल का सोच पाना भी बहुत मुश्किल होगा। पटेल जी, आप और भी कुछ कहना चाह रहे थे?
3: तो इसलिए हम सारा विश्व को आज सचेतन के लिए बता रहा हूँ कि जो पेड़ पौधे संपूर्ण नष्ट नष्ट हवा पाई बसीची सेटा केमती बचे के रही पारे जमती कि सारा माने विश्व रो डायनासोर संपूर्ण लुप्त हो गला गुड़ा एमती बहुत किसी पेड़ पौधे मध्य नष्ट हो गले जोटा कि असाध्य रोग चिकित्सा करा असाध्य रोग कैंसर महामारी एबे जो जो भारत रे जो जो आइसला कोविड एगुड़ाक सब पुरातन निर्घंट रे सब रही ऋषि मुनि माने से दर्शाई देखी जाइछंती तापरे जदि आमे को रिसर्च करके पेड़ पौधा खोजी के जदि बंचेबा ताहेले परिवेश रो मध्य रक्षा हो पारिबो आउ एही देश रे एही माटी रे एही मां माटी रे जो मान जन्म होइछंती सेटा भी निरोगी रही पारिबो आउ जो चास करा जाउची केमिकल देकी तो ताकू न करी आमर जो जैविक पद्धति जैविक पद्धति अवलंबन कला परे सही खाद्य जदि आम खाइबो ताले आमको रोग मध्य भविष्य इफेक्ट करिवनी एणु को समस्त अनुरोध करी आगामी पीढ़ी पाई केमती पेड़ पौधा करके ताको बंचे रखिबा
2: जो पटेल जी कह रहे हैं वो ये कि आज अगर हम हमारे पेड़ पौधों की रक्षा ना करें तो हमारे लिए भी खतरा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने ये बताया कि कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में न जानने के कारण हमने उन पेड़ पौधों को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, और आज हम वंचित हैं उन पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो भी औषधीय गुण होते हैं, उनसे आज हम वंचित हो गए हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इनको संरक्षण देना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज जिस प्रकार का भोजन हम कर रहे हैं, जो कि रासायनिक पद्धति से किए गए कृषि से निकल के आता है, इस भोजन को खा करके हम हमारे जीवन को दुर्बल बना रहे हैं, हम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने पूरे उद्यान में, जो उनका हर्बल उद्यान है, उसको जैविक कृषि के माध्यम से उन्होंने उन पौधों का संरक्षण किया है। और वो ये मानते हैं कि जैविक कृषि के द्वारा न केवल हम अच्छा भोजन पाते हैं, लेकिन प्रकृति का और मिट्टी का भी सेहत अच्छा रहता है। और प्रकृति के इस सेहत के लिए अगर हम सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे सेहत पे भी इसका असर जरूर पड़ता है। पटेल जी, आपसे मेरे को एक एग्जाम्पल जानना है। जैसे मान लीजिए आपने बताया कई पेड़ पौधे जो हैं वो आज नहीं है, खत्म हो गए हैं, क्या कोई एक ऐसा पेड़ या ऐसा औषधि या जड़ी बूटी आपके दिमाग में आता है जो बचपन में आपने देखा है और आपके दादाजी को यूज करते हुए देखा है, लेकिन आज वो नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास?
3: हाँ, उदाहरण है
2: जी बताइए।
3: क्योंकि आमर कते गच रही जोटा कैंसर पाई कि शरीर भितर कौन सी घा पाई गला रोदंती संपूर्ण नष्ट हो गलानी आउ गोटे अच्छे आमर जो रासना रासना जो जोटा संपूर्ण नष्ट नहीं गुडाक जोटा 84 प्रकार बात रोग महौषधी तो
2: एक एक करके, जैसे आपने पहला पौधा जो बताया उसका
3: हाँ
2: नाम
3: हाँ
2: क्या बताया, कैंसर, ये वाला अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा
3: कैंसर के
2: रहेगा।
3: लिए ये जो रोदन
2: हाँ जी
3: थी रोदंती फल, रोदंती फल।
2: अच्छा, तो ये
3: तो
2: वाला अगर आप हिंदी में
3: हाँ,
2: बोल सकते हैं तो इतना आप हिंदी में जरूर बोलिए इसका उदाहरण।
3: वो रोदंती फल कैंसर में आता है, टीबी में आता है। रोदंती फल तो हमारे उड़ीसा में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बाहर से मंगा लेते हैं। वो रोदंती का जो मेडिसिन तैयार करके हम रोगी को देखो, 100% सफल भी हो गया। और वो जो रासना जिसके तार साइंटिफिक ना प्लीचुअलेंसियल होता, आउट ऑफ जो ब्लफारिस परमम सक्सेस है, ये जो दुई प्रकार रासना अच्छी संपूर्ण नष्ट हो गलानी, एटा केमती बंचिबो। आओ इसको तो हमारा उड़ीसा में जो दुष्ट प्रकृति लोग जंगल को नियाल लगाने से नष्ट कर देते हैं, वो चास कर देते हैं, कोर चास करते हैं, छोटा छोटा जो पेड़ पौधे को काट के नियाल जला देते हैं, इसीलिए ये भी संपूर्ण नष्ट हो गया। और ये जो सीड्स तो अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि तो बड़ा गाछ होने से सीड्स मिलेगा, इसीलिए इसको जैविक को अंगज माध्यम रे, पेड़ पौधे को कलमी माध्यम रे, जो हम कलेक्शन किया, अनुसंधान भी किया। ये तो बहुत किसी मेडिसिन हमारा भारत जन माटी लुप्त हो जा रही, एणुकर केमती ये गुड़ाक बटिक रखी हम तार कोशिश हमें चल रही छो।
2: दोस्तों, जो पटेल जी ने दो पौधों का उन्होंने उदाहरण दिया, एक तो जिसका फल जो है वो
3: फल
2: कैंसर, रोडंती फल जो कैंसर और कितने ही टीबी जैसे बीमारियों के लिए बहुत ही पावरफुल दवाई क्रिएट कर सकता था, आज वो उड़ीसा की जमीन से खत्म हो चुका है। ऐसे उन्होंने फिर कासना फल के बारे में, पौधे के बारे में भी बताया, जिसके द्वारा उन्होंने पहले उड़िया में बोला था कि लगभग 80 प्रकार के जो पेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बात रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये बताया इसका कारण ये है कि लोग चूंकि अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं कौन से पौधे से क्या बेनिफिट मिलता है, वो उन्हें काट देते हैं, जला देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। दूसरा, जब वो उन पौधों को इस्तेमाल करते हैं तो जब वो बहुत नन्हे होते हैं तभी वो उनको काट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर पौधा बढ़ेगा ही नहीं तो फल कैसे आएगा, फल नहीं आएगा तो बीज कैसे आएगा, और अगर बीज नहीं होगा दोस्तों तो फिर आगे की पीढ़ी उस पौधे की बढ़ेगी कैसे। तो इसलिए आज इनमें से कई पौधे जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। दुर्लभ तो थे ही लेकिन साथ में आज वो खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका बीज ही नहीं है। तो ऐसे कई पेड़ पौधों को पटेल साहू जी ने अपने उड़ीसा के छोटे से गांव में पनाह दी है, जहां पर वो ये पौधे पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, संरक्षण पा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। साहू जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी कोई एक बीमार व्यक्ति आता है और वो अपने बीमारी के बारे में बताता है, तो आप उसके इलाज के लिए जब कोई पेड़ पौधा इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए किसी पेड़ की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्टली जाकर के पेड़ों से लेकर क्या के इसको यूज करते हैं, या उसको पहले से तैयार करके रखते हैं, या आपको कितना टाइम लगता है किसी पौधे को पहचान करके उसका इस्तेमाल करने में?
3: चिन्हा पाई कम समय लगे, कहीं की ना तो मो जो अजा थे से तो से केमती गच चिन्हट करा जो सूत्र से मते बते दी जाई चंती। तो जते पेशेंट गुडा का ऑप्शन छ हम एटा करो समान को कौ समय रे चेहरा मध्य दउचू। तो एबे जने महिला रो गुटी छुआ है छि खिरो होनी गरी छुआटा से आधुनिक औषध खाई पारियो ने, तो आम जो संग्रहालय जो पेड़ पौधे रही छि सेठी 7-8 दिन रो कोर्स आकरे जा चेहरा फेरो दउचू। ए जो जोटा सतावरी, तो शतावरी आम उन्नत किस्म शतावरी गुड़ा जो हिमालय प्राय हुए, आम ये जो शतावरी निकृष्ट से हिमालय शतावरी गुड़ाक आम ये से जगह मानकर बंचिक रखीचु। से प्रसूति समय रे से माँ को क्षीर वृद्धि पाई शतावरी दिया जाए, ये भलिया गुड़ा उदाहरण रही।
2: तो जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि उनके जो दादाजी हैं उनसे सीखा हुआ ज्ञान और लंबे समय तक का जो उनका अनुभव रहा है, उसकी वजह से वो बहुत कम समय में ही पेड़ पौधों को पहचान करके औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया जैसे शतावरी है, शतावरी जो उड़ीसा में होता है, वो एक अलग प्रकार का है, और जो हिमालय में शतावरी होती है वो एक दूसरे प्रकार की शतावरी होती है। तो उन्होंने हिमालय वाले शतावरी को भी यहाँ पर ला करके जगह दी और उसमें से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पटेल जी, जैसे आपको तो ज्ञान है, आपने अपने दादाजी से सीखा है, लोग जानते नहीं हैं, और जहां तक हमने पता किया है आपने एक किताब भी लिखी है, आपका जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को आपने उस किताब में सीमित समाहित करने का प्रयास किया है। तो उस किताब को आपने क्या उड़िया भाषा में लिखा है, या कैसे दूसरे लोग कैसे उस किताब तक पहुंच सकते हैं?
3: हम उड़िया भाषा लिखी तो सैंटिफिकेशन ना गुड़ा को दिया कितने इंग्लीश रे मध्य किछ आम लिखीचु कहीं ना बोले मुटा जो पुरातन आयुर्वेद कॉलेज मानक जोटा से इंग्लीश दर्शाई से प्राय मझी मझी मत डाकती तो डॉक्टर स्टूडेंट मानक नहीं प्राक्टिकाल विभिन्न जंगल मध्य बुले कि गच्छ चिन्हट करके सेठी प्राक्टिकाल मध्य करा जाउची और एटा एही गच्छ संपूर्ण नष्ट होबार बसी यार साइंटिफिकेशन नाम एटा एटा केमती बंचिकरे रहिबो एबुले सेमानक मध्य तार साइंटिफिकेशन ना दिया होची संस्कृत ना दिया होची ओ ओडिया ना बता होची कोउ जागारे मिलिबो समुद्र पत्तन रु केते माने उपरे गच्छटा हबो एटा डिटेल सेमानक तथ्य दिया होची एभलिया आमर जो बोटनिक स्टूडेंट माने अछंती आम स्टेट ओडिशा रे से मानको मध्य ए भलिया आमे सब जिनिस गुडाक शिक्षा माध्यम रे सिखौछु।
2: तो जो पटेल जी ने कहा वो ये कि उन्होंने स्टूडेंट्स के सहायता के लिए और जो लोग पढ़ाई करते हैं औषधीय पेड़ पौधों के बारे में, उनके लिए इस किताब में इंग्लिश में जो साइंटिफिक नेम होता है, उनका वैज्ञानिक नाम होता है, वो भी रखा है। संस्कृत का जो आदि नाम है वो भी रखा है, जो उड़िया भाषा में बोला जाता है वो नाम भी रखा है। तो उन्होंने अपनी किताब में इंग्लिश और उड़िया दोनों के माध्यम से लोगों तक ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ दोस्तों, जब ये किताब प्रकाशित हो जाएगी और जब ये अवेलेबल होगी आपके और मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ ये समाज का बहुत बड़ा उद्धार करेगी, बहुत मदद करेगी। जाते जाते पटेल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप भारत देश में रहते हैं, भारत भूमि के लिए आपको इतना प्यार है, भारत में जो पेड़ पौधे हैं, जो संसाधन है औषधीय पेड़ पौधों का, उसको आप इतना आगे बढ़ा रहे हैं, आप पूरे भारत के लिए अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: तो हम भारत को संदेश कैसे पेड़ पौधे चीर दिन के लिए आमर आगामी पीढ़ी पे केमती आम बचे रखू सेटा मुझे संदेश दूची आउ निज घर बाड़ी में पारंपरिक स्तर में 15-20टा उदाहरण स्वरूप 15-20टा पेड़ पौधे जमी औषधीय गच लगे रखिए जमती कि उदाहरण स्वरूप ये गोटे उदाहरण दूची जड़े लोक काश है ताकू गोटे औषध दिहला चंद्रामृत रस एटा कफ रोग नाश सेटा शास्त्र लेखा ही जे याकू बासंग पत्र सरसरे दिन को गोटे गोटे बटिका दुई थर दे 5-7 दिन ये जो काश रोग समूल नष्ट ये जो जिनिस गुडा बासंग जोटा आम कहू बासा हिंदी बासा कहते तो ये गुड़ा तो जदि कर गुड़ा खाली माने ये बटिका खाईदे तो हम नहीं रोग छाड़बनी अनुपान भेद जदि औषध व्यवहार कर ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट गुड़ाक रही प्राय तो अनुपान भेद औषधा व्यवहार हुए रोग को साध्य असाध्य रोग साध्य करे ये सूत्र गुड़ाक आगामी पीढ़ी एवं आम मान प्रचार प्रसार जोरसोर चल गाँ गाँ को यहाँ प्रति डिस्ट्रिक्ट वैद्य संघ गठन हम से मानू एकत्र करके केमी सचेतन हे ये आम प्रयास चलती।
2: जो पटेल जी ने कहा वो ये कि पूरे भारत के लिए उनका यही संदेश है कि अपने आसपास के पेड़ पौधों का सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि हमारे ही आसपास में हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारा साधन छुपा हुआ है। उन्होंने बोला कि हर घर में कम से कम छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत हर्बल गार्डन जरूर होना चाहिए, एक पारंपरिक उद्यान जैसा जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने दो पौधों के नाम लिए, अगर ये दो पौधे शास्त्रों के हिसाब से भी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके जो छोटे मोटे बीमारियां होती हैं इनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज उन्होंने ये कहा कि गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप छोटा छोटा संग्रहालय बनाते हैं जहां पर कि पेड़ पौधों को आप संग्रहित करते हैं, ये उस पर्टिकुलर पूरे गांव के लिए भी बहुत सुविधा और बहुत सहज हो जाता है संरक्षण करने का और अपने लिए भी। पटेल जी, अगर आपको कोई ऐसे 5 पौधों के नाम लेने हो जो कि मान लीजिए आज हमारे श्रोता सुन रहे हैं और उनको लगता है कि अच्छा मैं अपने घर की बालकनी में या अपने घर के आंगन में थोड़ा सा पेड़ पौधा लगाना चाहूंगा, तो कौन से ऐसे 5 पौधों के आप नाम बताएंगे जो कि उनको लगाना भी सहज हो और उससे उनके लिए कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो कौन से वो ऐसे 5 पौधे होंगे अगर आप वो बता सके? हिंदी में बताएंगे तो भी चलेगा।
3: तुलसी, बासम, बासा, अग
4: नीम,
3: नीम, अग्निमंथा और निर्गुंडी,
2: तो पहला था
3: बेल,
2: तुलसी, दूसरा है
3: हाँ,
2: बासर, तीसरा है
3: बासम,
2: अग्निमंत्र, चौथा
3: हाँ
2: है
3: हाँ
2: नीम और पांचवा
3: नीम, निर्गुंडी,
2: निर्गुंडी। तो तुलसी के
3: हाँ
2: कुछ फायदे बता दीजिए। तुलसी के फायदे तो खैर लोगों को बहुत सारा पता ही है, लेकिन कोई एक ऐसा फायदा तुलसी का जो लोगों को नहीं पता और आपको ही पता है?
3: ओ
4: लेकिन
3: जो घर तुलसी अच्छी सेठी माने ये जो बिजुली बिजुली ताको एफेक्ट करी बनी पुराना तुलसी कथा दे अच्छे जो बिजुली होची वर्षा समय रे ये ताको एफेक्ट करी बनी
2: अच्छा,
3: तापर तुलसी
2: तो पटेल जी का
3: कथा
2: कहना है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर बिजली जो गिरती है, जो बरसात के समय
3: मैजिक
2: तेज बारिश के समय जो बिजली होती है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उस घर पे कम पड़ता है। बहुत अच्छा। और तुलसी के कुछ और फायदे?
3: और तुलसी यदि घरे अच्छी माने ये जो मशा जो मलेरिया जो जो बाहक से माने साहस करेंगे नहीं
2: मच्छर
3: तो
2: से, मच्छरों को आप अपने घर से दूर रख सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास तुलसी का पौधा है। अच्छा, दूसरा जो आपने दूसरे पौधे बताए जैसे कि नीम, नीम तो बड़ा पेड़ होता है, अगर उसको छोटे साइज में भी कोई अपने घर के बालकनी में लगाता है तो उसका कुछ बेनिफिट होता है उसको?
3: ओ लीम पत्र डायबिटीज पाई हमें डेली 5-5 टा डायबिटीज पेशेंट मान को कहू जो को गरीब आदमी माने आधुनिक औषध खाई पार ना जो इंसुलिन लो जंती डेली जदी 5-5 टा लीम पत्र चोबे के जदी खाइबे ताहेले डायबिटीज मध्ये कंट्रोल हबो तापर आउ गोटे कथा छि जोठी निम्ब गछ अछि तो निम्ब गछ रता जो ये चेरो चेरो रो छाली रे जदी आमे माने मशा मान को गोड़ेबा पन जदी निया तार धुआं देव ताहले से धुआं से गुड़ाक मध्य मरीजे तापरे निम्ब पत्र रो गुड़ाए आमर शस्य पाई जो कीटनाशक औषध आम तैयार करूचु शस्य रक्षा पाई सेटा निम्ब पत्र रो कुआथ मध्य शस्य रे सिंचन करके सेठी मध्य रखा जा
2: तो
3: दे
2: एक
3: पारिबो एमती
2: नीम,
3: गुड़ाए जिन
2: तो पटेल जी कह रहे हैं एक नीम के कितने ही फायदे हैं। वैसे तो नीम जो है वो जगन्नाथ जी के आकृति को तैयार करने के लिए नीम का ही इस्तेमाल किया जाता है। नीम के लकड़ी से ही जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी का निर्माण होता है। तो नीम तो बहुत ही पौराणिक और बहुत ही पवित्र पेड़ है। लेकिन अगर आप नीम का बहुत बड़ा पेड़ नहीं भी उगा सकते, अगर छोटा मोटा पौधा भी आपके पास है तो आपको बहुत फायदा कर सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि नीम के पत्ते, अगर कोई व्यक्ति 5 पत्ते लगभग रोज खाता है और अगर
3: हाँ
2: उसके पास इंसुलिन जैसे महंगे दवाई का पैसा नहीं है तो वो मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी से निजात पा सकता है, बहुत कंट्रोल कर सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि नीम के जो छाल होते हैं उन छाल को अगर आप जलाते हैं सूखे हुए छाल को तो मच्छर और कई कीट जो हैं वो आपके घर में नहीं आएंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि नीम के पत्ते जो हैं उसका पाउडर बना करके वो अपने जैविक कृषि में भी इस्तेमाल करते हैं एज ए कीटनाशक।
3: बिल्कुल
2: तो एक नीम के उन्होंने इतने फायदे बता दिए। मैं दोस्तों, मैं समझता हूँ अगर हम उनसे बातचीत करेंगे तो हम हर पौधे के बारे में ऐसे कितने करामती चीजें जान पाएंगे। आपने तीसरा पौधा बोला था चिरगुंडी, चिरगुंडी बोला था, सॉरी
3: निर्गुंडी निर्गुंडी
2: निर्गुंडी। निर्गुंडी कौन सा पौधा होता है और इसका क्या बेनिफिट है?
3: ओ निर्गुंडी हो जो जो हमारा घर में जो शस्य संग्रहित रखा है वो निर्गुंडी पत्ता सुखा के गुण देने के रखने से वो कीट पतंग
4: अच्छा,
3: से सुरक्षित रहते हैं
2: तो निर्गुंडी एक ऐसा पौधा है
3: आर्डर
2: जिसके सूखे पत्तों को अगर आप अपने चावल, दाल और जो भी आपके साधन है घर में उनमें अगर आप रखते हैं तो उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऐसे तो आपके पास खजाना है पट्टा जी, जिसके बारे में अगर हम सुनना शुरू करें तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक शब्द में पूछना चाहूं आपको, आपने 3,000 से भी ज्यादा पौधों को संरक्षण दी है, आपके हिसाब से आपका सबसे प्रिय औषधीय पौधा कौन सा है, आपका फेवरेट?
3: ब्रह्म कमल।
2: ब्रह्म कमल। लेकिन ब्रह्म कमल ही आपका फेवरेट क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: हमारा प्रिय पौधा कमल और नागवेल, जो जहाँ को आमे पानोरी बोली कहूँ, से थिले सर्प आसीबनी। तापर आउ गोटे अच्छी दयना, एठी साप जदि आसीब बोले नागदन बोली हिंदी कहउछन्ती, सर्प अंध होइजो आउ सेठी जाई पारिबनी। एमती ए गछ गुडा प्राय मु विशेष किछि कलेक्शन करी रखिछि अछि। एटा तो अगाध
2: पटेल
3: समुद्र
2: पटेल जी ने बोला कि कई पौधे उनके प्रिय हैं, जैसे कि नागदंड है और भी कुछ पौधों के नाम लिए, जो अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में सांप आदि नहीं आते, लेकिन उनका प्रिय पौधा उन्होंने ब्रह्म कमल बोला। तो ब्रह्म कमल आपका फेवरेट क्यों है, आपको सबसे अच्छा वो क्यों लगता
3: ब्रह्म
2: है?
3: कमल तो ये एक मैंने सौभाग्य सौभाग्य कवच के बारे में हम व्यवहार किया है। तो ब्रह्म कमल जो चेर हमारा पास था, तो हमारे पास कोई कुदृष्टि नहीं आया, इसीलिए हम ब्रह्म कमल को अच्छी मान रहे हैं।
2: तो ब्रह्म कमल जो है उनके लिए बहुत दिल के करीब है, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म कमल जो है बुरी दृष्टि से आपको बचाता है और आपको गुड लक या आपके लिए सौभाग्य लाता है। इसलिए आज वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनका जो ज्ञान जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया, वो आज वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं और उसके द्वारा पूरे भारत देश की सेवा कर रहे हैं। पटेल जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे जानने को बहुत कुछ मिल रहा है। मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथी जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें भी आपसे आज जानने को बहुत कुछ मिला है। हम उम्मीद करेंगे कभी आप माउंट आबू आए हमारे बीच में, हमारे सभी श्रोता साथियों से मिले। साथ ही साथ हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे
3: जरूर
2: पेड़ पौधों को, सभी पेड़ पौधों को संरक्षण देते रहें, छोटे
3: जरूर
2: छोटे बच्चों से लेकर के बड़े युवाओं तक को, सबको सिखाएं, सबको समझाएं और सबके द्वारा माँ प्रकृति की सेवा कैसे की जा सकती है, इस सेवा में सबको लगाएं। आप खुद सदैव सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, सुखी रहें, ये हमारी सबकी आपके प्रति शुभकामना है। रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से, हमारे सभी श्रोता साथी हमारे परिवार हैं, तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से इतना निस्वार्थ सेवा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यशस्वी भारत के वो यशस्वी पुत्र हैं जो न केवल भारत भूमि की लेकिन पूरे प्रकृति की बहुत सेवा कर रहे हैं। आपका आज हमारे साथ हमारे बीच समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वास्तव में
3: जी
2: भारत का यशस्वी मणि हैं, वो चमकता सितारा हैं जिसकी वजह से भारत भारत बनता है। धन्यवाद।
3: जी नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे पटेल साहू जी को, जो कि हमारे बीच में कालाहांडी ओडिशा से जुड़े थे, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पटेल जी के प्रयास ने लगभग 3,000 से भी ज्यादा औषधीय पेड़ पौधों को संरक्षणा दी है और इनमें से कई ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं जिन्हें आज ये बचा रहे हैं। ये एक पारंपरिक चिकित्सक हैं और ये पारंपरिक चिकित्सा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, कोई उससे मूल्य नहीं लेते। उनका पूरा परिवार उनकी सेवा भावना से जुड़ा हुआ है और लोग प्यार से जो भी उन्हें लाके देते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, किसी से वो पैसे नहीं लेते। आज की दुनिया में दोस्तों इस प्रकार का एक त्यागी तपस्वी चिकित्सक देख पाना बहुत दुर्लभ हो जाता है। मैं समझता हूँ जैसे पटेल जी कई औषधीय पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, इस प्रकार की सेवा भावना जिन लोगों में होती है उन लोगों को भी बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास में कोई ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर सेवा की बहुत सुंदर भावना है, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका सम्मान, उनको संरक्षण, उनको सुरक्षा, उनको संसाधन पहुंचाना अगर आपके बस में है तो जरूर करें। और पटेल जी ने जो दो बातें हमें शेयर की, एक कि अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ पौधों का सम्मान करें, और दूसरा अपने घर के आंगन में, बालकनी में, छत पे कुछ नहीं तो कम से कम 5 औषधीय पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों, जाते जाते उन्होंने हमें एक और बहुत सुंदर बात बताई कि हर पेड़ हर पौधे में कोई ना कोई गुण बहुत गुह्य रूप में छुपा हुआ होता है। उसके साथ समय बिताएंगे तो उस गुण का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक नीम के बारे में ही उन्होंने कितना कुछ बता दिया, एक तुलसी के बारे में कितना कुछ बता दिया। हमने तो एटलीस्ट मुझे तो मैं नहीं समझता, शायद आप में से कईयों को ये पता था कि तुलसी का पौधा अगर घर पे हो तो बिजली का प्रभाव कम पड़ता है या नहीं होता है। ऐसी कई चीजें हमारे भारत देश में छिपे हुए इन रत्नों के पास में हैं, जिनसे हम बार बार मिलते रहेंगे। यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए एक रेडियो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को

0: ने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
1: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं, या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
2: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
1: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ
2: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज क्वालिटीज जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इन माई सेल्फ एंड द रिजल्ट ऑफ दैट विल बी कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
1: डिप्लीटेड
2: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ये तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। तो इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain.
1: खुद किस situation में है तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएंगे?
2: That's the point. तो जैसे ही आपका relationship उसके साथ जुड़ता है जो इतना powerful है तो उससे आपको vibration कौन सी आएगी? आज एक parent भी एक बच्चे के साथ ये relationship जोड़ सकता है, not like God, but if a parent has the power कि वो unconditional love दे stability के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है? वी ऑल लव ईच अदर वी से बट सो मेनी कंडीशंस वी अप्लाई एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिसएम्पावर्ड। लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, यू नो जस्ट लुक एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, वी आर लुकिंग एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
1: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, वंडरफुल,
2: नो पेन, राइट, नो एंगर, नो स्ट्रेस, नन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवर पावरफुल, एवर प्योर, एवर पीसफुल, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर? That I will start experiencing कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, ही डजंट डू लाइक दिस मैजिक, लेकिन भगवान से जो वो अनकंडीशनल पावर लव प्योरिटी मिलती है दैट हेल्प्स मी टू ओवरकम माई पेन एंड ओवरकम माई ओल्ड संस्कार एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप विद गॉड का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी, लेकिन यस being in the company of that ever pure, मुझे वो इतनी vibration, इतनी power मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ,
1: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। Wonderful, this is a beautiful way to look at the relationship. अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है, मेरे जैसे आप हैं आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में, कोई भी है मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल?
2: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है. एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन. हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच. एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच. अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है. लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी. और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ. मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल. एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन. यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए. लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं, तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन? अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. सो आई कैन शेयर, बट आई डोंट गेट द पावर जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ. अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है. नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ. रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ. आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन,
1: ये होना ही था,
2: या आपने ऐसा कर दिया,
1: ये आप इस हद तक,
2: या यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं. ठीक है, इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर. तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता. लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
1: वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
2: वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया. अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा?
1: एंड
2: जब हम दर्द में होते हैं, हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है? वी नीड लॉट ऑफ लव. आई नीड अ सोल हु विल गिव मी सो मच लव दैट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन. लेकिन आज हम किसी से भी अपना पेन शेयर करें तो हमें रिटर्न में कोई, यू नो, वी स्टिल गेटिंग पेन. सो व्हेन आई शेयर माई प्रॉब्लम, माई कॉन्फ्लिक्ट, माई पेन विद हिम, इट इज़ नॉट दैट, यू नो, जस्ट द शेयरिंग डज द वर्क. एक तो शेयरिंग करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो इन रिटर्न मुझे फिर भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती कि आप जो हो, जैसे हो, आई स्टिल लव यू, दिस हेल्प्स मी टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल ओवर अगैन. तो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं. तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पड़नी पड़ती. पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. माई एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माई थॉट. बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट? ये तो मुझे क्रिएट करना है, आई क्रिएट द थॉट. लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते हैं।
1: मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है।
2: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है। परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती। तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई, और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने की। जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवरपावर करता है। अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवरपावर करती है, एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
1: उनका फोन आ जाता
2: तो है। वो कब होता है, जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है। सो बेसिकली ही इज एवर रेडी।
1: अच्छा, ही इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड। यू नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू You are there personally. But if I want to get connected to my daughter or
2: see,
1: like anyone
2: I may
1: else,
2: not be there personally. Sometimes I could be sitting here, but I'm not here if my mind is there. Mera man ho sakta na, main aapse baat kar rahi hoon, lekin man kahin aur hai. To aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga. Kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain?
1: To main hi janna chahti hu, log bhi ye janna chahenge ki when I get connected to him, matlab jab main unko yaad karu, to kya wo connected mujhse hai hamesha?
2: Absolutely.
1: This is what I think, some reassurance.
2: Wo to hamesha hi connected hai. You know, it's like a transmitter जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है। अब सिर्फ रोल किसका बचा है?
1: मेरा,
2: रिसीवर। कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए। अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया? बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी। मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया? ऑफिस याद आया। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा?
1: परमात्मा,
2: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया था।
1: अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही था।
2: वो तो है ही है, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, वो तो है ही है। लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड आई डिडंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू। अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीजें मिल गई, कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके I am a pure soul. तो soul को याद कौन आएगा? Supreme soul. फिर वो अनुभव करना, He is already there. लेकिन the minute I tune in, I will start experiencing the flow. तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं. पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माय कर्मा. अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम अब उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं स्व परिवर्तन करते. तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारे थॉट्स को पुट असाइड करें सब कॉन्शियस माइंड में जाएं जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए. फिर परमात्मा की वो शक्ति वो एक एक जो पावर है हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं. वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम. फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है. नाउ आई एम चेंजिंग इट आई एम अ प्योर सोल चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ शांति के सागर का बच्चा हूँ. आई वॉन्ट के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए लेकिन इसको एम्बेड कहाँ करना पड़ेगा
1: सबकॉन्शियस
2: यहाँ सब कॉन्शियस में. तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर कॉन्शियस थॉट साइड पे कर सब कॉन्शियस लेयर को जैसे यू नो ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते उसमें से पुराने बिलीव्स के बदले ये नया जो सत्यता है अभी वो बिलीफ ही है उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते. तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम. अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें फिर माइंड को साइलेंट करें उसके साथ कनेक्ट करें अपना काम करें. कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं कोई डिसीशन आपको लेना है कुछ भी करना है कनेक्ट टू हिम. कोई बात बोझ है शेयर विद हिम. तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
1: बाकी सब.
2: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए. वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माई रिलेशनशिप. फिर जो मेरा पर्पज ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना तो वो करना
1: आसान
2: बहुत ईजी हो जाएगा. एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन लव एंड बिकॉज आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आई विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आई गिव एंड व्हेन आई गिव माई रिलेशनशिप्स बिकम वेरी क्लोज. जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन फैकल्टीज हैं माइंड इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस संस्कार ये तीनों फैकल्टीज अपना अपना रोल प्ले करते. माइंड क्रिएट्स अ थॉट इंटेलेक्ट उसको तुरंत विजुअलाइज करता है. जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी तुरंत पिक्चर आ जाएगी तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया गॉड परमात्मा सुप्रीम सोल तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट. आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो अभी कहाँ पर है क्या कर रहे हैं. तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते तो वो कहाँ पर है तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता. तो घर याद आता कि घर हमारा द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट कंप्लीट प्योरिटी एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं. जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं. तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा. मन थॉट क्रिएट करेगा इंटेलेक्ट उसको हल्के से डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग. इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है. यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
1: फिर
2: वो मन वहां चला जाएगा. तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देमसेल्फ, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा. तो इट्स नॉट अ पिक्चर. एज लॉन्ग एज आपके इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली. मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है. ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं. यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है. दिस इज ऑल मैटर. आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति. ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिकुटी के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस. यहाँ से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूँ. मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ. ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है. संबंध अनुभव करने वाली मैं शक्ति हूँ. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. I am a pure soul. Purity, divinity, ये तो मेरी अपनी नेचर है. I see myself अपने घर की तरफ चलते हुए, अपने आप को देखे वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है. धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ. गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस. आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी. आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ. अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा. इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर, वाइब्रेटिंग ऑल ओवर. मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ. आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था. मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ. मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं. मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूँ. देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है, और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ. ओम शांति.
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनेमिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है। बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनेमिक हो सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 09993444 6098736555 09997445। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें हर बार की तरह आपको यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे सवाल होते हैं, जो भी हम प्रोग्राम में करते हैं, फीडबैक आप ही से मिलता है। आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचता है और साथ ही आपके सवाल भी आते हैं। इन सवालों का हम हर बार स्वागत करते हैं और आज इस कड़ी में इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में आप ही के सवालों पर आधारित बहुत सी बातें और करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक्यूप्रेशर देताली, पात्र परिचय, वरदान पंकज, दृष्टि आकाश, वेदांत यश और आदित्य, लेखिका सुधापुरी।
2: चलो चलो आज नुक्कड़ नाटक खेलते हैं।
3: हाँ बड़ा मजा आएगा, और अगर अच्छा गया तो हम अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उन्हें दिखाएंगे।
4: ठीक है,
5: मैं भागकर अपनी दादी की ढोलक ले आता हूँ।
6: ठीक है, और मैं मंजीरे।
7: बाकी हम सब तालियों की एक मधुर ताल बजा बजा कर बीच बीच में संगीत देंगे।
3: मतलब कैसे?
7: हम ऐसे ताली बजाएंगे ना, 1 2 1 2 3।
8: ठीक है, देखो हम सब उधर से ताली बजाते बजाते आएंगे और इधर आकर एक गोला बना लेंगे, फिर अपनी अपनी बात कहेंगे एक एक बार बीच में आकर।
6: दीदी उस दिन मैं कुछ कविताएं लिख रहा था, उन्हें भी इस्तेमाल कर लेंगे।
8: ठीक है, हम सब कुछ कुछ लिख के लाते हैं और फिर सबके आइडिया को मिलाकर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं।
2: दीदी इस बार हम अपने नाटक में एक डांस भी रखेंगे।
3: हाँ पर कोई लोक नृत्य।
4: ठीक है, सबसे मजा तो गरबा में आता है, मुझे तो छोटी छोटी डंडियों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है।
5: इस डांस को गुजरात के नवरात्र में हर सोसाइटी या कॉलोनी में किया जाता है।
6: ओ तब तो पूरे पूरे पार्क इसके लिए सजे होते होंगे।
8: हाँ पता है, कई पंडाल भी खास इसी नृत्य के लिए सजे होते हैं और हर उम्र के लोग मिल मिल के साथ डांस करते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, बस जिस किसी को भी डांस आता है वो साथ में मिल जाता है।
3: तो हमारे राजस्थान में घूमर भी तो इसी तरह का नृत्य होता है।

0: हाँ, कई समानताएं हैं। दोनों गुजरात का गरबा और डांडिया घूमर जैसे ही गोल गोल एक दायरे में होता है। दोनों ही खुशी के मौके पर परिवार में सब मिलकर करते हैं।
1: पर एक बात मुझे भी पता है।
2: क्या? गरबा तो ताली बजा बजा कर होता है और डांडिया छोटी छोटी डंडियों से।
3: चलो, बात तय हुई, सब कल ही कुछ लिख के लाएंगे और हम उधर पार्क के उस कोने में रोज प्रैक्टिस किया करेंगे। पर आज का समय यूं ही वेस्ट नहीं करते, आओ हम तरह तरह की तालियां बजाने की प्रैक्टिस करेंगे।
4: हाँ दीदी, अलग अलग ट्यून निकाली जा सकती है तालियों की भी। देखो, मैं दो बार हाथ से मारूंगा और दो बार स्टेबल पर, तो देखो कैसा मजेदार लगता है।
2: ये सब करके तो मुझे सपने पिक्चर का वो गाना याद आ रहा है, आवार भवरे जो हौले हौले गाए।

0: मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी तरह से बताया गया है कि हमारे प्रकृति में कितना मधुर संगीत भरा हुआ है।
1: बात फिर वही है ना, ध्यान।
2: आपका मतलब है जो हम योग में सीखते हैं?
1: और क्या, जब साइकिल चलानी सीख ली तो कोई भी मॉडल हो तो चला सकते हैं ना, क्यों?
3: या तैरना सीख लिया तो कोई भी तरण ताल हो, क्या फर्क पड़ता है?
4: या क्रिकेट आता हो तो कोई भी मैदान,
1: या बैडमिंटन आता हो तो कोई भी बैडमिंटन कोर्ट,
2: या पढ़ना आता हो तो कोई भी किताब।
1: अरे बस बस बस, लगे मस्करी करने।
5: पर एक बात है, ये हमारा ऐसे ताली बजाना तो मुझे योग के एक्यूप्रेशर की याद दिलाता है।
0: हाँ मुझे भी।
1: तो कई बार लोग किसी भी ताल पर ताली बजाकर बगीचों में भजन वगैरह गाते नहीं दिखते क्या?
2: तो ये भी एक तरीका हुआ तनाव दूर करने का।
1: वो तो है ही, अभी ही देख लो, हम सब ने अलग अलग तरीके से तालियां बजाई हैं, तो कितनी ताजगी सी भरी हुई लग रही है।
6: हाँ, बिल्कुल ठीक,
7: सही है।
1: यानी अगर हम नुक्कड़ नाटक करते भी हैं, तो नाटक का नाटक और एक्यूप्रेशर का एक्यूप्रेशर होगा।
8: यानी एक पंथ दो काज।
3: जी नहीं, एक पंथ हजारों काज।
1: बच्चों ये हंसने की बात नहीं है, अगर हम कहें कि ताली बजाने से स्वास्थ्य को लाभ होता है तो यह मजाक लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल सही है और लाभदायक भी।
7: वो कैसे दीदी?
1: तुम सबने देखा होगा, आमतौर पर हम किसी को खुश करने या फिर प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाते हैं।
5: तो खुश और उत्साहित होने पर हम खुद भी तो ताली बजाते हैं।
8: बहुत से लोग गाते हुए भी ताली बजाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, ताली बजाने में मजा आता है, इसलिए बच्चे ताली बजाना पसंद करते हैं।
8: हाँ दीदी, मेरे पापा कहते हैं ताली बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।
1: वो इसलिए कि ताली बजाने से हाथों के सारे बिंदु दब जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में व्याप्त रोगों का सुधार होता है।
3: मेरी नानी रोज कई देर तक ताली बजाकर भजन करती है, कहती है ताली बजाने से आपको हृदय रोग और अस्थमा संबंधित समस्याओं से राहत पाने में बहुत मदद मिलती है।
4: और मेरे दादाजी कहते हैं हृदय, लिवर, फेफड़ों आदि से जुड़ी नसों के लिए यह बहुत मददगार साबित होता है।
1: वो इसलिए कि अगर आप ताली बजाते हैं तो नसों को बेहतर कार्य करने में मदद मिलती है, इससे आप बेहतर और अधिक आराम महसूस करते हैं।
9: मेरे स्पोर्ट्स के सर बता रहे थे कि ताली बजाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यह आपके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है जो किसी भी बीमारी से आपके शरीर की रक्षा करते हैं।
1: वैसे भी यह बच्चों में कौशल बढ़ाने और एकेडमिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद तो करता ही है, मतलब ताली बजाना।
5: हमारी सोसाइटी में तो कुछ अंकल रोज ताली बजाते हैं। एक ने बताया था ताली बजाने से रक्त संचरण बढ़ता है और नसों तथा धमनियों से खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सारे अवरोध हट जाते हैं।
0: मैंने एक मैगजीन में भी पढ़ा था, अगर आप एक दिन में 1500 बार ताली बजाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और यही नहीं, हाथ से ताली बजाने से बच्चों का हस्त कौशल सुधरता है, जिससे उनकी लिखावट साफ हो सकती है, वे बेहतर लिख सकते हैं और स्पेलिंग संबंधित त्रुटियां भी कम होती है।
1: ये। अरे मैंने तो खुद करके देखा है, हर रोज भोजन करने के बाद 1 घंटे के लिए ताली बजाएं। इससे आप गर्मी महसूस करेंगे और आपके हाथों और पैरों पर पसीना भी आ सकता है। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेशन, अस्थमा, जुखाम, गठिया, सिर दर्द, अनिद्रा और बालों का झड़ना आदि बीमारियों का इलाज ताली बजाने से किया जा सकता है।
3: तो क्यों साथियों, अब तो हम कह सकते हैं ना?
1: क्या?
3: वही, ताली बजाने से एक पंथ और हजारों काज होते हैं।

शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता

0: तो जर्नी कैसी होती है उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल, हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आला आला आला,
3: अहो काय आला
2: आला आला, आवाज रेडियो चा।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

गोपुरी का पुस्तकालय। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य विनोबा भावे उपस्थित थे। वहां बैठे आचार्य महाप्रज्ञ ने विनोबा जी से प्रश्न किया, क्या आप ध्यान करते हैं? उत्तर में विनोबा जी ने कहा, ध्यान नहीं तो और क्या करता हूं। फिर प्रश्न आया, सुना है कि निष्क्रिय होकर ध्यान करना ठीक नहीं, क्रियाशीलता में जो होता है वो ठीक होता है। विनोबा जी बोले, नहीं नहीं, दोनों प्रकार से संभव है। मेरे पास ऑक्सफोर्ड की एक किताब है, उसमें एक भी गलती नहीं है, और यहां ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिसमें गलती ना हो। ये ध्यान की कमी है। फिर अगला प्रश्न था, आप कितना समय ध्यान में लगाते हैं? विनोबा जी ने जवाब दिया, पता नहीं मैं ध्यान के बिना कितनी देर रहता हूं। असल में ध्यान कोई करने की बात नहीं है, वो साधना है, और साधना सहज होती है। अध्यात्म की भाषा में साम्य योगी और राजनीति की भाषा में साम्यवादी या समाजवादी कलेवर वाले विनोबा जी अपनी आंतरिक करुणा के कारण भारतीय समाज में आज भी उसी शिद्दत से याद किए जाते हैं। विनोबा जी का समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसे एक घटना से हम समझ सकते हैं। एक बार एक बच्चा विनोबा जी के पास आया। उसके कान में दर्द था और वो रो रहा था। विनोबा जी बोले, बेटा, दर्द तो तुम्हारे कान में है, फिर तुम्हारी आंख से पानी क्यों आ रहा है? और दूसरे ही क्षण उसे समझाते हुए कहा, कान और आंख में एक तत्व की धारा प्रवाहित हो रही है, यही तो जीवित शरीर का लक्षण है। इसी तरह समाज के एक व्यक्ति के दर्द को दूसरे व्यक्ति द्वारा महसूस करना जीवित समाज का लक्षण है। जीवन की इसी परिभाषा को उन्होंने भूदान यज्ञ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। एक ऐसा महायज्ञ जिसमें उन्होंने अधिक साधन वाले लोगों से अंश प्राप्त करके उसे गरीबों और वंचितों को उपलब्ध कराया। ये थी इस देश को समझने की उनकी आध्यात्मिक दृष्टि। एक ऐसा विचार जिसमें अंतर और बाह्य दोनों जगत स्पष्ट है, जिसमें सत्य स्वयं प्रतिबिंबित होता है। 11 सितंबर सन 1895 को रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव गागोदा में जन्मे विनोबा बचपन से ही संस्कारों में पल्लवित और पोषित हुए। उनके पिता नरहरि राव बड़ौदा में कपड़ा मिल में टेक्नीशियन थे। उन्होंने खाकी कपड़े की तकनीक खोजी, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने सिपाहियों की वर्दी के लिए चुना। विनोबा जी की माता रुक्मिणी देवी घर में मराठी संतों की वाणियां गुनगुनाती रहती थीं। इन वाणियों का विनोबा जी के जीवन के निर्माण में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।

आरंभिक शिक्षा गांव में पूरी करके वे पिता के पास बड़ौदा चले गए। वहां सन 1913 में मैट्रिक की परीक्षा पास करके इंटरमीडिएट में दाखिला ले लिया। विनोबा जी की स्मृति विलक्षण थी। बड़ौदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय में जाकर धर्म, साहित्य और इतिहास की पुस्तकें पढ़ना उनकी दिनचर्या थी। कॉलेज की पढ़ाई से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, वे वहां से काशी चले आए। यहां आकर उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन करना आरंभ किया। संस्कृत के साथ गणित भी उनका प्रिय विषय था, इसीलिए उनके विचार, लेखन और वर्तन में हर चीज नपी तुली आती है। उनके भाषण भी संयमित होते थे। काशी के दुर्गा घाट पर एक मकान में वो अपने दो मित्रों के साथ रहते थे। काशी के प्रसिद्ध म्योर लाइब्रेरी में संस्कृत और हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों का भंडार था। विनोबा जी ने उनका गहन अध्ययन किया। उन्हीं दिनों बनारस में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। इसमें उद्घाटन भाषण के लिए महात्मा गांधी पधारे थे। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी का ये पहला सार्वजनिक भाषण था, जिसमें उन्होंने देश के तमाम संपन्न लोगों से आग्रह किया था कि वे हीरे जवाहरात त्याग कर आम जनता के साथ आ मिलें, और यहीं से उन्होंने देश की आजादी के लिए सबका आह्वान किया। विनोबा जी ने दूसरे दिन उनका भाषण अखबार में पढ़ा और उन्हें लगा कि जो उन्हें प्राप्त करना था वो गांधी जी के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। वे काशी छोड़कर गांधी जी के आश्रम पहुंच गए। देश की स्वाधीनता के लिए जो चिंगारी उनके मन में सुलग रही थी, उसे वे कार्य रूप में परिणत करना चाहते थे। 6 अप्रैल सन 1921 को विनोबा जी ने वर्धा आश्रम के संचालन का भार संभाल लिया था। तब से उन्होंने गांधी जी के द्वारा चलाए गए अनेक कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया। खादी ग्राम उद्योग, बुनियादी शिक्षा, सफाई अभियान जैसे रचनात्मक कार्यों में भी विनोबा जी ने बहुत योगदान दिया। वर्धा आश्रम में लगभग 12 वर्ष रहकर विनोबा जी नलवाड़ी होते हुए वर्धा से 5 किलोमीटर दूर पवनार गांव में एक टीले पर कुटिया बनाकर रहने लगे। यही कुटिया आज पवनार आश्रम के रूप में जानी जाती है। नागपुर झंडा सत्याग्रह में उन्होंने उत्साह और लगन से भाग लिया था। 17 जून 1923 को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। ये उनकी पहली जेल यात्रा थी। अक्टूबर सन 1940 में भी गांधी जी के सत्याग्रह करने पर प्रथम सत्याग्रही के रूप में वे जेल भेजे गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे गिरफ्तार हुए और 3 वर्ष जेल में रहकर पवनार आश्रम लौटे और ग्राम सेवा में जुट गए। साथ ही देश विभाजन के समय गांधी जी की भांति विनोबा जी ने भी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अथक परिश्रम किया और मानवता की अभूतपूर्व सेवा की।

विनोबा जी बचपन से ही साहित्य के बहुत प्रेमी थे। धर्म ग्रंथों का अखंड वाचन, सतत चिंतन, इसी में उन्होंने 30 से 50 वर्ष व्यतीत किए। वर्धा में उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन नाम से लेख लिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमालय जैसा पर्वत नहीं और उपनिषद जैसा ग्रंथ नहीं। सन 1929 में गांधी जी पूना के अस्पताल में थे। विनोबा जी उनसे मिलने गए, तब गांधी जी ने कहा, उपनिषदों का सार ग्रंथ यानी ईशावास्य उपनिषद पर तुम कुछ लिख सको तो लिखना। गुरु की आज्ञा मान विनोबा जी ने पुस्तक तैयार की, जो ईशावास्य कृति नाम से प्रकाशित हुई। एक बार उनकी मां ने उनसे कहा था, बेटा मुझे संस्कृत भगवद गीता समझ में नहीं आती, तू मेरे लिए सरल मराठी में गीता लिख दे। मां के जीवित रहते तो वे इसे नहीं कर सके, किंतु 1930 में उन्होंने अपनी अलौकिक कृति गीताई की रचना की। सन 1932 में धुलिया जेल में रहते हुए उन्होंने बंदी भाई बहनों के सामने जब गीता पर प्रवचन दिए, तो उन्हें साने गुरुजी ने लिख कर रख लिया था, जो बाद में गीता प्रवचन के रूप में प्रकाशित हुई, जिसका भारत और विश्व की 22 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सन 1944 में मध्य प्रदेश के सिवनी जेल में गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों पर विनोबा जी ने प्रवचन किए, जो स्थित प्रज्ञ दर्शन नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। सर्वधर्म समन्वय का विचार विनोबा जी को अपने दादा से बचपन में ही मिल चुका था, इसीलिए उन्होंने देश और दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उसका सार निकाला और सबके सामने रखा। कुरान का 50 साल तक गहराई से अध्ययन करके उन्होंने कुरान सार नामक पुस्तक लिखी, जिसे रूहुल कुरान नाम दिया गया। बौद्ध धर्म का ग्रंथ धम्मपद का विश्लेषण उन्होंने धम्मपद नव संहिता नाम से प्रकाशित किया। इसी तरह बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का अध्ययन कर उन्होंने संस्कृत श्लोकों में ग्रंथ सूत्रम नाम देकर इसे लिखा। इन्हीं की विवेचना बाद में ख्रिस्त धर्मसार पुस्तक के रूप में सामने आई। अपनी कश्मीर यात्रा में उन्होंने सिख धर्म ग्रंथ जप्पू जी साहब का अध्ययन किया और इस पर व्याख्यान दिए, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। तुलसीदास की विनय पत्रिका, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के भजन और महाराष्ट्र के संतों के भजन को भी पुस्तक का रूप देकर विनोबा जी ने संकलन के रूप में प्रकाशित किया। शब्द साहित्य की विशाल ज्ञान गंगा सरीखी अनेक गंगाएं उनके अंतर में वास करती थीं। अपनी विलक्षण नम्रता से वे लिखते हैं, मैंने जो कुछ भी लिखा है लिखता हूं कि वो मेरा नहीं है। बड़ों के पास से जो कुछ भी मुझे मिला है वही मैं वितरित करता हूं। गांधी जी ने कहा था कि जब तक देश में एक आंख भी आंसुओं से गीली है, तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं आएगी। विनोबा जी इसी भावना के तहत भूदान आंदोलन लेकर देश भर की पदयात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने 40,000 मील की पदयात्रा की और 3,00,000 छोटे बड़े भूमि मालिकों से 22,23,47,000 एकड़ भूमि प्राप्त कर भूमिहीनों में बांट दी। ये भूदान यज्ञ अपने आप में एक अनोखा आंदोलन था। वे कहते थे, सेवा व्यक्ति की होना चाहिए और भक्ति समाज की। जितना समाज शास्त्र राष्ट्र में है, उतना एक कुटुंब में आ जाता है। हमारे संतों ने आत्मविश्वास के साथ काम किया है। दूसरों का दोष बताने और अपने गुण सामने रखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही प्रेममयी सेवा से समाज और राष्ट्र उन्नत होता है। भारत रत्न से सम्मानित ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, परिकल्पना एवं मार्गदर्शक श्री मनोज श्रीवास्तव, समन्वय किया संजय यादव ने और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।
1: ये वतन का
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पान घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परिहारी बोली।

0: Sunny's World.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister, आपका स्वागत है Being Bliss में.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति. कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रश्न पूछना था आपसे. ये जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स की आप बात कर रहे थे, तो कल मैं सोच रहा था कहीं ये एक मेरे लिए बहाना तो नहीं बन गया, चलो पिछले जन्म का है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि इसका मीनिंग मैं प्रॉपरली समझा नहीं.
2: सी, बहुत बार अपने जीवन को देखकर या आसपास किसी और के जीवन को देखकर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इतने ऑनेस्ट है, इतने हार्ड वर्किंग है, अपना 100% से ज्यादा लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही. दूसरी तरफ कोई और दिखाई देता है जो शायद दूसरे तरह के तरीके यूज कर रहे हैं, उतने ऑनेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है कि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है. कोई है बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई हेल्दी है, कोई बचपन से बीमार, तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस उठते हैं. और फिर उठता है कि ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन, मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य, मेरा फेट, ये डिसाइड करने वाला कौन. और जब नहीं मिलता कि किस पर उसका ब्लेम लगाएं या किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, तो हम कहेंगे परमात्मा ने डिसाइड किया.
1: सिस्टर, मेरी किस्मत ऐसी है, भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत बनाई, अब क्या करे, भगवान शायद नाराज है, पता नहीं क्या मुझसे, मैंने पिछले जन्मों का पाप है, क्या अजीब अजीब थॉट्स आती है ना.
2: राइट, मेरी किस्मत ऐसी है इज ओके. किस्मत मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा भाग्य, माय डेस्टिनी. मेरी किस्मत ऐसी है, ये इज फाइन, दिख रही है मुझे कि ये मेरी किस्मत ऐसी है, लेकिन ये किस्मत बनाई किसने, वो आंसर अगर ठीक मिल जाए तो एटलीस्ट उस किस्मत में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें ये पता होगा कि हमें किसके पास जाना है. तो दो बिलीफ सिस्टम, अगेन वी सेड बिलीफ सिस्टम, थॉट, डेस्टिनी, राइट. तो दो बिलीफ्स है इसमें जो हमने बचपन से सुने. दो बिलीफ्स क्या, जो आपने एक कहा भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी, सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है. दिस वॉज वन बिलीफ सिस्टम which we heard as children. Second belief system was, जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा. दोनों belief system सुने हैं, दोनों belief system हर religion में है आज.
1: English में भी कहते हैं as you sow, so you reap.
2: And ये भी कहते हैं everything is happening according to God's will.
1: हाँ.
2: तो दोनों कहते हैं.
1: शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है.
2: अब आप सोचो, पहली बात, ये दोनों बिलीफ सिस्टम चेक करने से पहले पहला तो क्वेश्चन मन में ये उठना चाहिए कि दोनों कैसे वैलिड हो सकते हैं. सी, इफ सपोज आई से योर गॉड राइट नाउ फॉर मी, ओके, सपोज दिस इज एंटिटी गॉड, एंड आई से मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये आपकी मर्जी से हो रहा है, कि मैंने आपको वो पावर दे दी, परमात्मा गॉड, आपकी मर्जी से मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, आपकी मर्जी से. ये वन बिलीफ सिस्टम. दूसरा बिलीफ सिस्टम, जैसा कर्म मैं कर रही हूँ वैसा फल मुझे मिल रहा है, तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है. तो दोनों बिलीफ सिस्टम इतने कॉन्ट्रडिक्टरी है, इतने अलग है, कि एक बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल आपका है कि आपकी मर्जी से सब कुछ, और दूसरे बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल मेरा है और आपका बिल्कुल नहीं है. एंड वंडरफुल इज कि हम बचपन से दोनों बिलीफ सिस्टम को सुनते हैं और दोनों को एक्सेप्ट किया है.
1: एक्सेप्ट तो हम भगवान वाले को कर लेते हैं ना, कुछ भी बुरा हुआ तो यार भगवान की मर्जी थी.
2: लेकिन ये वाला भी सब मानते हैं ना, जैसा कर्म, अच्छे कर्म किए होंगे, इसका अच्छा भाग्य है, ये श्रेष्ठ कर्म करके आया होगा. कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गलत कर्म नहीं करो, इसका रिटर्न अच्छा नहीं होगा. दोनों चल रहे हैं, सारा दिन दोनों चल रहे हैं. सिर्फ जब कोई बहुत बड़ी बात होती है, वो इट्स इजियर टू से भगवान की मर्जी. तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बिलीफ सिस्टम्स को सुनते हैं तो पहले चेक तो करें कौन सा राइट है, कौन सा सच है, वो तो सेकेंडरी बात, लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को कैसे सच मान सकते हैं.
1: सही बात.
2: क्वेश्चन भी नहीं किया मन ने कभी कि दोनों बातें सही कैसे हो सकती है.
1: हाँ, ये सही कह रहे हैं आप.
2: ये तो प्रश्न
1: क्यों नहीं किया,
2: नहीं करते क्वेश्चन,
1: मतलब बुद्धि नहीं चलती है जब बिलीफ सिस्टम में.
2: नहीं, ऐसा नहीं सुनते हैं.
1: मुझे अभी ये दिख रहा है आपसे बात करते करते कि बिलीफ सिस्टम इतना हावी हो जाता है, इतना स्ट्रांग और इतना हेवी हो जाता है सर, कि हमने कभी अपना मन उसमें बुद्धि लड़ाई नहीं कि ये लॉजिक देखिए,
2: देखो बिलीफ सिस्टम हावी होता है वो तो फैक्ट है, बिलीफ सिस्टम ही हावी होने वाला है. हावी मीन्स स्ट्रॉन्ग. सी इट्स लाइक आपका कंप्यूटर, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पावरफुल चीज है. आप या विंडोज यूज कर रहे हैं या आप मैक यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्लैरिटी, एक बार आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया और अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल किया, अब आप जो कुछ करेंगे उस कंप्यूटर पर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेगा. सॉफ्टवेयर्स भी वो वाले ही चलेंगे जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे. लेकिन आप कहें मैं ये भी चलाऊं ये नहीं होगा.
1: इसीलिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओएस लेते हैं ना अभी, ताकि दूसरे
2: एब्सोल्युटली
1: अब सॉफ्टवेयर्स मिल जाएं,
2: दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी उस पे,
1: नहीं तो पुराने ओएस पे नए सॉफ्टवेयर नहीं आते,
2: नहीं चलेंगे. और फिर समय के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए.
1: दैट्स अ नाइस वन,
2: राइट? यू हैव टू अपग्रेड. अपग्रेड मींस चेक कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए कंफर्टेबल है. देखो समय बदलता है, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है.
1: लेकिन जैसे आपने कहा उस दिन कुछ ना कुछ सुबह उठ के पढ़ लेना चाहिए, समथिंग स्पिरिचुअल, ये भी तो अपग्रेड होता ही है ना इसी इन चीजों से.
2: नेचुरली
1: सफाई भी होती है, हम जो क्लीन भी करते हैं
2: एब्सोल्युटली
1: अपने डिस्क को, और जो भी आप कहते हैं
2: हार्ड डिस्क को क्लीन नहीं करेंगे अगर, तो इतना कुछ सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मशीन भी हाईली एफिशिएंट है, लेकिन क्लटर्ड है, टू मच डेटा है एंड यूजलेस डेटा है, तो वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. तो इसलिए जो आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, यस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है सो वी हैव टू बी केयरफुल कि राइट ऑपरेटिंग सिस्टम हो. क्योंकि लाइक वी सॉ बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी, विच मीन्स बिलीफ सिस्टम विल क्रिएट डेस्टिनी. अगर मैं अपने जीवन में एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलूं तो उसका प्रभाव डायरेक्ट मेरे भाग्य पर आ रहा है. इसलिए बिलीफ सिस्टम की चेकिंग बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है.
1: मान्यता वैसा भाग्य,
2: वैसा भाग्य जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सब थॉट्स चल रहे हैं. मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो और मैं थॉट को चेंज, जैसे बहुत कॉमन है गुस्सा नेसेसरी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम. थॉट्स पे, नहीं नहीं आज मुझे प्यार से बात करनी है, आज मुझे शांति से सबके साथ चलना है, वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं. एक बार
1: बिलीफ सिस्टम को कैसे निकालें फिर?
2: बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, थॉट को नहीं चेंज कर सकते. मतलब थॉट को अगर चेंज करेंगे एक बार होगा, दूसरी बार फिर गुस्सा करेंगे.
1: पता नहीं कितने जन्मों से बिलीफ सिस्टम आया हुआ है, बचपन से आया हुआ है, ये जाता नहीं है ना फिर.
2: जाता नहीं, इट्स अ प्रोग्राम. बिलीफ सिस्टम भी एक प्रोग्रामिंग ही है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? एक नया बिलीफ सिस्टम लेंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ काफी समय से चल रहे हैं, डेस्टिनी देखी क्या बनी.
1: इसको पैरेलल चलाएं
2: थोड़े दिन के लिए,
1: इसको
2: पुराने वाले को साइड पर रखिए. क्यों पैरेलल नहीं चल सकता? क्योंकि पुराना वाला बहुत स्ट्रांग है. इफ आई से गुस्सा नेसेसरी है एंड अब आई से प्यार से सबसे अच्छा काम हो सकता है, तो मैं अब दो को ऑपोजिट को पैरेलल नहीं चला सकते ना. हम ये कह सकते हैं थोड़े दिन के लिए मैं एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हूँ, लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट.
1: सही बात.
2: इफ मेरा काम हो गया अच्छी तरह से, मेरे रिश्ते अच्छे होने लगे, मुझे अच्छा होने
1: लगना,
2: लाइट फील लगने लगा, देन आई विल से दिस बिलीफ सिस्टम इज बेटर, हेल्दी, दिस इज द ट्रूथ. तब हम पुराने वाले को हटा देंगे.
1: ट्राई करने में क्या है?
2: ट्राई करने में क्या है? यही तो स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन. स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन, अभी तक जो आपने बोला ना, हमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई उस पर? क्योंकि हमने क्या किया, किताब पढ़ी, सत्संग में गए, कहाँ ले रहे हैं विजडम? ऐसी जगहों पर जाएंगे ना, या किसी का प्रवचन सुना और ऐसे ऐसे किया.
1: वाह वाह,
2: यस नहीं, यस अच्छा लगा सुनते हुए. देखो कहीं भी कोई बात सुनेंगे जो पॉजिटिव होगी, पावरफुल होगी,
1: अच्छी म्यूजिक भी सुनते तो इतना अच्छा मजा आता है, मन
2: तो अच्छी लगे,
1: हो जाता है
2: मन को. एक जैसे यू नो, जिसको कहेंगे सूदिंग, जैसे कोई मसाज कर रहा है मेरे मन को. मन इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है, कोई आकर उस पे मसाज कर रहा है माइंड को, ब्यूटीफुल वर्ड्स, अच्छे भजन, सूदिंग लेक्चर, बहुत अच्छा लगता है। अब वो सूदिंग इफेक्ट में इतना हम खो जाते हैं कि उसके ऊपर लॉजिक कई बार नहीं यूज करते हैं कि ये राइट या ये राइट, दिस इज कंफर्टेबल और नॉट, वी जस्ट से हाँ सो ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे ऐसे चले जाते हैं।
1: जैसे एक मधुमक्खी सनफ्लावर में मस्त हो जाती है ना, जब खाती खाती खाती ये भी भूल जाती कि सनसेट होने वाला है और फ्लावर बंद हो जाता है, वो बेचारी अंदर ही मर जाती है उसी में, और वो समझती है कि आई एम सूदिंग सूदिंग सूदिंग। तो हम सारा जीवन ऐसे ही कर रहे हैं।
2: नहीं तो इसमें हुआ क्या, वो सूदिंग में इतने खो गए।
1: तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या अपने सारा जिंदगी सारा जीवन सूदिंग सूदिंग में खो जाऊं और ऐसे ही मर जाऊं, तो व्हेन विल आई ग्रो, मेरा ये अपग्रेड कब होगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम।
2: जो भी हम वर्कशॉप अटेंड करेंगे या किताब अच्छी कोई पढ़ेंगे या सत्संग सुनेंगे, उसमें कभी कोई गलत बात तो मिलेगी नहीं। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, इज टू अंडरस्टैंड इट द राइट वे। सी अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग,
1: पहले सुनाने वाले को भी तो अंडरस्टैंड होना चाहिए,
2: वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप सुना रहे हैं, नहीं कई बार ये भी होता है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो।
1: हाँ।
2: आप एक लाइन लेंगे,
1: हर आदमी अलग अलग मीनिंग निकालेगा।
2: आप हमें इतने अच्छे अच्छे बातें ढूंढ के लेकर आते हैं, अब ये कहीं लिखी हुई है ना जहां से आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा, आपने और 100 लोगों के साथ शेयर किया, बात एक ही है लेकिन बात की अंडरस्टैंडिंग, बात की तह तक डेप्थ में जाकर उसकी मीनिंग को समझना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस बात को इम्प्लीमेंट करके देख लेना। सूदिंग था, बातें सूदिंग थी जो हर जगह सुनी, राइट थी रॉन्ग थी चेक हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में नहीं लेकर आए उन बातों को। हम गए, इट्स लाइक यू नो, गए मसाज किया, अच्छा लगा, बैक टू वर्क, अपना ऑफिस, अपना काम, अपने वहां तो प्रॉब्लम्स है ही, फिर कल सुबह जाएंगे, फिर अच्छा अच्छा फील करेंगे, फिर आएंगे। तो इसलिए चेकिंग तो हुई नहीं ना कि व्हाट वर्क्स फॉर मी व्हाट डजंट वर्क फॉर मी, क्योंकि आई डिडंट डू एनीथिंग विद इट, आई ओनली वेंट, फेल्ट नाइस, केम बैक। अब क्या होगा, कौन सा बिलीफ सिस्टम मेरे लिए राइट है, मेरे लिए नहीं राइट है, वो तब पता चलेगा। सुना, उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके आई विल डिसाइड। हो सकता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि गुस्सा नेसेसरी है, आज मैंने दूसरा वाला यूज किया, मुझे यूज करके नहीं ठीक लगा। हो सकता है, बिकॉज उसमें भी कितना समझा, किस तरह से यूज किया, कितनी डिटर्मिनेशन से यूज किया, और क्या उसका मुझे रिजल्ट मिला। अगर मुझे रिजल्ट मिला, देन आई विल से लव वर्क्स फॉर मी, नहीं मुझे वो रिजल्ट मिला, आई विल से नहीं, मेरे से नहीं होता, मेरे लिए वही वाला ठीक है।
1: सपोजिंग मैं, मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि गुस्से के बिना यार काम नहीं चलता आज के बिना, और इतने बच्चे हैं, इतने नौकर, इतना स्टाफ है, किस किस को प्यार करूं मैं, अब रूल बनाओ, डांट दो और अपना मिलिट्री बनाओ। तो मैं ये सोच रहा था आपसे बात करते करते कि जब रिजल्ट तो चलो पॉजिटिव सपोजिंग मिल भी गया, लेकिन मेरी सेहत, वो रिजल्ट, वेल इज इट वर्थ इट, कि मैं सारा गुस्सा करके अपनी सेहत खराब करके अपना कर्म, जैसे आपने अभी बनाया बताया पास्ट कार्मिक अकाउंट भी बना रहा हूँ, सेहत भी खराब कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ स्टाफ को और फिर डॉक्टर को भी दे रहा हूँ, फिर बाद में अंत में मेरा रिजल्ट निकल रहा है जो मैं चाहता हूँ।
2: रिजल्ट मतलब सिर्फ वो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट यही इम्पोर्टेंट है। सी दिस इज क्लैरिटी, जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि इस बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट डजंट मीन सिर्फ काम हुआ कि नहीं ना। अब दिस इज इंटेलिजेंस, कोई अगर लिमिटेड आउटलुक से है, विजन से है, वो रिजल्ट सिर्फ यही चेक करेगा, और शुरू शुरू में वो बोलेंगे काम नहीं हो रहा, लोग बिगड़ गए, लोग कहना नहीं मानते, लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट की डेफिनेशन सिर्फ उतनी है कि काम हुआ कि नहीं।
1: क्या है?
2: आपने अभी जो रिजल्ट की डेफिनेशन सुनाई,
1: नहीं मैंने कहा आपसे कि सपोजिंग मैं अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से कि गुस्से के बिना काम नहीं होता, करने के बिना मेरी फैक्ट्री चल गई, मेरी पिक्चर बन गई, मेरा घर का सब काम पूरा हो गया, बराबर गाड़ी में पेट्रोल था, ये था वो था, सब लोग अपने काम करने लग गए, लेकिन उसका असर जो मुझ पर हुआ, दिस वर्सेस दैट पूछ रहा हूँ मैं।
2: इट्स नॉट दिस वर्सेस दैट, इट इज रिजल्ट ऑफ माई बिलीफ सिस्टम।
1: मैंने क्या खो दिया?
2: रिजल्ट, जब मुझे देखना है ये बिलीफ सिस्टम है और ये उसका रिजल्ट है, तो नाउ आई विल चेक कि गुस्सा आउट, प्यार से, पेशेंस से, अंडरस्टैंडिंग से काम सारे हो जाते हैं. नाउ टेक, स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, शुरू शुरू में ये भी हो सकता है कि काम पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी, जैसे कोई दवाई हम लेते हैं. ठीक है, शुरू शुरू में बहुत कुछ होगा, कोई साइड इफेक्ट भी आ जाएगा, कोई दवाई थोड़ी सी रिएक्ट भी कर जाएगी, कोई कुछ भी, लेकिन आप अपनी डोज लेते रहेंगे और फाइनली इतनी डोज लेने के बाद आपको, अगर डॉक्टर को आप बोलो भी ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलेगा वेट, कंटिन्यू टेकिंग एटलीस्ट फॉर 3 डेज. आप 3 दिन लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको दवाई सूट कर रही है कि नहीं. ऐसे नहीं पहले दिन ही ली, पहली डोज ली और आपने कहा, क्योंकि बॉडी एक नई चीज ले रही है, उसको भी उसके साथ एडजस्ट होने में वो दवाई का अपना का. सिमिलरली एक नया बिलीफ सिस्टम, पहले दिन प्यार से बात की, व्यक्ति ने काम ही नहीं किया मेरा. हम कहेंगे ये क्या है, ये थोड़ी वर्क करता है काम ऐसे, मैं नहीं. कांट गिव अप लाइक दिस, कांट गिव अप लाइक दिस. सो वी हैव टू फिक्स अ टाइम पीरियड कि इतने टाइम तो ये डोज लेनी है नई वाली. एंड फिर रिजल्ट की डेफिनेशन, कि जब रिजल्ट को चेक करना है कि डिड दिस बिलीफ सिस्टम वर्क, तो ये सब पैरामीटर्स पे चेक करना है जो आपने अभी बताया. मन लाइट फील कर रहा है, शरीर तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, मन खुश है तो लोगों के साथ मेरा रिश्ता बेटर होता जाएगा, काम डेफिनेटली होता जाएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने कहा, कार्मिक अकाउंट मेरे जो क्रिएट हो रहे हैं सबके साथ. आज काम होता गया होता गया, लेकिन हर आत्मा के साथ कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता गया. दर्द देते गए, दर्द आता जाएगा, दर्द देते जाएंगे, दर्द आता जाएगा, काम होता गया, काम होता गया.
1: ये जो दर्द देते गए और दर्द आता जाएगा, इस साइकिल में मेरा जब दर्द बढ़ता है तो मेरा और गुस्सा, फिर और इरिटेशन नहीं बढ़ेगा
2: नेचुरली.
1: वो पॉइंट तो सोचा ही नहीं था.
2: नेचुरली है ना,
1: सपोज दर्द आपको दिया, फिर आया, फिर दिया, फिर आया.
2: सी, अगर
1: तो फिर
2: मैंने,
1: और चिड़चिड़ा हो जाऊंगा मैं, और पकता जाएगा.
2: क्यों? क्योंकि अभी मैंने गुस्सा किया. मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अभी गुस्सा किया, गुस्सा करते ही मेरी बैटरी थोड़ी कम हुई, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की, फिर दर्द क्रिएट हुआ, मतलब पावर, आत्मा की पावर थोड़ी सी कम हुई, फिर आपको दिया. तो आपने भी मेरे बारे में कैसा सोचा, फिर
1: आपको लौटाया अंदर से.
2: लौटाया
1: मीन्स
2: आपने मेरे बारे में गलत सोचा. गलत नहीं भी सोचा, आप सिर्फ हर्ट ही हो गए उस बात से, उदास ही हो गए, तो आपकी वाइब्रेशन तो है, व्हाट विल गो विल कम बैक. तो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो मेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा. अब मैंने आपके साथ किया, फिर एक और के साथ किया, फिर और के साथ किया, धीरे धीरे वो मेरा बन गया संस्कार. अब ये संस्कार बड़ी बातों में नहीं, छोटी बातों में भी आने लगा. अब हर बार जब ये आया, हर बार ये मेरी पावर को कम किया. अब ये एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गुस्सा कर करके मेरी पावर जो कम होती है, वो संस्कार की सिर्फ बात नहीं है, वो ओवरऑल आत्मा की पावर कम होती है. सी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, एक ही सोर्स है. ऐसे नहीं ये काम के लिए अलग, ये काम के लिए अलग, ये रिश्ते के लिए अलग. चलो ये रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे बाकी रिश्ते

0: इफेक्टिव है इस टाइम, तो जो लीकेज है कंपेयर टू द चार्जिंग बहुत फास्ट होती है. अब एक बार ये लीकेज होने शुरू हो जाती है, मतलब सोल पावर कम हो रही है. इट्स पावर ऑफ द सोल, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट वन क्वालिटी ओनली. जैसे हम कहेंगे गुस्सा किया तो शांति कम हो रही है, राइट? नफरत किया तो प्यार कम हो रहा है. इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स लाइक ये किया तो आत्मिक शक्ति कम हो रही है
1: और कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है.
0: कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है. ये आत्मिक शक्ति कम होने से उसका इफेक्ट हमारी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर आएगा. पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली होना होगा. अब जब ये आत्मिक शक्ति कम होगी तो विल पावर पे भी इफेक्ट होगा. आज क्यों लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े संस्कारों को छोड़ने का, अभी तो हम छोटी आदत भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि सोल पावर कम है.
1: इसलिए हिंदी में कहते हैं ना आत्मिक बल.
0: आत्मिक बल, सोल पावर. इसलिए जब हम कहेंगे कि नए बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट, तो रिजल्ट तो इतना लॉन्ग टर्म है कि वी विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट दैट वी गेट. एंड ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चल रहा था उसका रिजल्ट भी कितने सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ रहा था विच वी वर नॉट अवेयर. तो इसीलिए फिक्स टाइम करते हैं, एक नया बिलीफ सिस्टम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट ऑन अ बिग पिक्चर. एंड एक बार हमें रिजल्ट मिलेगा, हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के पास नहीं जाएंगे.
1: We will like the result.
0: तो ये जो आपने कहा कि हमने दो बिलीफ सिस्टम सुने और फिर भी हमने उसके ऊपर चिंतन ही नहीं किया, वर्क नहीं किया. अब हो तब क्या हुआ, हम आउट ऑफ कन्वीनियंस दोनों में से किसी को भी यूज करते गए.
1: जब मर्जी है उसको यूज कर ली, जब मर्जी उसको यूज कर ली.
0: जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है, मैंने कहा कर्म ही ऐसे किए थे. कर्म ऐसे किए थे, क्या क्या उसने किया है, होना ही था ऐसा. मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया.
1: ना इंसाफी.
0: अपने साथ नहीं बोलेंगे मैंने कर्म ऐसे किए थे. सी, सो वी स्टार्टेड यूजिंग बोथ. बोथ फॉर वैलिड फॉर अस, कि कब क्या यूज करना, कब क्या अप्लाई करना. अब हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लें कि कौन सा यूज करना है. वो वाला यूज करें जो आपको एम्पावर करेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा. दोनों की चेकिंग कर लें. भगवान हमारा भाग्य लिखता है, गॉड राइट्स आर डेस्टिनी, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा. इट विल बी अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी, परफेक्ट डेस्टिनी.
1: एक सत्संग में सिस्टर एक आदमी ने बोला था कि एक आदमी था जो बार बार बोलता था, चोरी करता था, बोलता मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भगवान करवाता है मुझसे चोरी. फिर दूसरे दिन करते, तीसरे दिन, तो फिर उसको उसके सत्संग में बोला उसको कि ठीक है, जब पुलिस पकड़ के मारेगी, जेल में डालेगी, तब भी यही कहना कि देखो ये भी भगवान ने लिखा, और वो भी एक्सेप्ट करना. फिर वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं.
0: एक्चुअली ये क्यों सिखाया, सी दिस इज ऑल्सो के रिलीजन ने या फिलोसोफर्स ने हमें क्यों सिखाया. ये इतनी सुंदर बात आपने बताई है. जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारा बहुत चिंतन चलता है कि क्यों क्यों क्यों. इम्पोर्टेंट, एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले चाहिए होती है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उलझन में होते हैं. परिस्थिति एज इट इज को एक्सेप्ट करना, जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होता है. अब हम कर नहीं पाते थे तो फिर किसी ने कहा भगवान ने की मर्जी, एक्सेप्ट कर लो, ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे. फिर उसको और मोटिवेट करने के लिए हमें कहा भगवान ऐसी बात देता ही उसको है जिसके अंदर उसको फेस करने की पावर होती है. दिस वॉज ऑल बींग डन विथ चिल्ड्रेन, यू नो, एक बच्चे के साथ कैसे हम बोलते हैं बाहर नहीं जाना, रात को भूत है, क्योंकि शायद उसको उस समय, उस एज में उससे ज्यादा गहरी बात समझ में नहीं आएगी. इसीलिए इंटेंशन क्या है, बस वो जाए नहीं ना अंधकार में. इसलिए किसी भी तरह रोक दिया उसको, क्लैरिटी तो नहीं दी उसको. इसी तरह हमें गलत कर्म करने से बचाना था तो कहा भगवान हर एक के अंदर है, भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है. तो ये सब करने से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, इंटेंशन बहुत सुंदर था.
1: लेकिन मुझे आप वाली बात ज्यादा सूट करती है कि जब मैं कहता हूँ कि हाँ

0: मैं आज जो चीज भी जिस चीज से सपोज मैं दुख वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, सुख का नहीं, चलो आज मुझे कोई दुख दे रहा है, ठीक है, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट के साथ था, तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को, तो दर्द तो हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई, पुराना कार्मिक अकाउंट है और मेरा ही किया हुआ है।
1: Absolutely.
0: मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि मेरे से मेरी गाड़ी का कहीं लग जाए ना थोड़ा स्क्रैच, तो मैं बोलूंगा हाँ यार लग गया मुझसे।
1: Very good.
0: मेरी नई गाड़ी, मेरा ड्राइवर बोले दिखता नहीं, ये नहीं वो नहीं, निकाल दूंगा, पैसे काट दूंगा, कितना गुस्सा आता है। तो वैसे मुझे जब एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ भाई मैंने किया था, मुझसे गिर गया दूध, मुझसे नुकसान हो गया, मेरे से कांच टूट गया, मुझसे ये कपड़े मेरे खराब हो गए, एयरहोस्टेस प्लेन में मुझ पे गिरा दी और मेरे से गिर जाए, चाहे कितना अंतर हो जाए,
1: कितना अंतर।
0: तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी बात कि भाई ठीक है मैंने किया, आज मैं भुगत रहा हूँ बोलूं या फेस कर रहा हूँ बोलूं या कम्प्लीशन कर रहा हूँ बोलूं, जैसे मैंने लोन लिया बैंक से आज चुका रहा हूँ।
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि
0: ये बहुत पसंद आया, इंस्टेड ऑफ दैट फॉल्स बिलीफ से, तो ये मुझे क्लैरिटी देती है।
1: इट्स नॉट ओनली फॉल्स बिलीफ, इट इज डेस्टिनी चेंज हो जाती है ना, अगर हम ये बिलीफ लेकर चले कि परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा? हर स्टेप पे बातें आएंगी, हम कहेंगे भगवान मेरे से खुश नहीं, भगवान की मर्जी से, वेट करो भगवान अच्छा करेगा ही, भगवान पर फेथ रखो, भगवान सब ठीक कर देगा, मतलब फिर भगवान को बोलेंगे सब ठीक कर दो, डेस्टिनी। और यही दूसरा बिलीफ सिस्टम कि मैंने, जैसे आपने कहा, मेरा कोई किया हुआ कर्म है जो मेरे सामने आया है, अब मुझे इसको प्यार से फेस भी करना है और आगे के लिए ठीक
0: भी करना है,
1: ठीक भी करना है, अब डेस्टिनी अलग। सो इट्स गोइंग टू बी टू कम्प्लीटली, जो भगवान की मर्जी से चल रहा है वो डेस्टिनी में आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, मेरे हाथ में कुछ नहीं, वेट करो भगवान ने प्रॉब्लम दी, इंतजार करो भगवान ठीक करेगा।
0: दुख भी,
1: दुख तो होगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम ठीक भी तो नहीं हो रही, हम जब ठीक करेंगे नहीं तो वो ठीक होगी नहीं। आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप ऐसे लेकर बैठ जाओ, हाय भगवान ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया, ऐसा क्यों किया, फिर रोज उसको पूजा करो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, नहीं भगवान जरूर ठीक करेगा, हम उसके बच्चे हैं, वो जरूर ठीक करेगा, वेट एंड वॉच। और एक है, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ है, मैंने गलत बटन दबाया था, अब मैं बेटर डू समथिंग टू इट एंड जल्दी उसको ठीक करूं, टू डिफरेंट थिंग्स, आई विल गेट सेट टू डूइंग इट राइट, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ठीक मुझे करना है। हाँ, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तरीका सीखेंगे, ज्ञान लेंगे, लेकिन उसको ठीक मुझे करना है, तो फिर डेस्टिनी अलग। आपका चाहे आपके सामने कितने भी कार्मिक अकाउंट्स आए, बड़े बड़े आ जाए, आज सुबह ही मुझे एक बहन कह रही थी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी पहले ही रेडी वेट कर रहे हैं, कहते ये कब खत्म होगा। सो ये खत्म नहीं होना है, ये खत्म नहीं होना है, ये कार्मिक अकाउंट है जो सामने आएंगे, लेकिन इक्वेशन राइट है तो पता है जीवन की जर्नी क्या है, पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाना और नए करने वाले कर्म पर ध्यान रखना। अब इसमें भी देखो, जो कहेगा भगवान की मर्जी से, वो अपने नए कर्मों पर भी अटेंशन नहीं रखेगा, लेकिन जिसको ये अवेयरनेस होगी अब सारा दिन कि कार्मिक अकाउंट कितनी पावरफुल चीज है, तो वो पुराने को तो सेटल करेगा ही, लेकिन प्रेजेंट में कितना अटेंशन रखेगा कि अब ना मेरे से कुछ किसी को दुख मिले, अब ना मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे सामने फिर बहुत भारी होकर आए, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी।
0: ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला सिस्टर, लेकिन हमें अगले एपिसोड में डिस्कस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। थैंक यू।
2: थॉट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ सिस्टम्स। एवरी सिचुएशन विल बी परसीव्ड थ्रू द बिलीफ सिस्टम। एंगर इज नेसेसरी, happiness is an achievement, stress is natural, life is a competition, are some of our belief systems today. Even one wrong belief system reduces the power of the soul. If we hold the belief system, anger is necessary, then we will use anger to get work done. Even if we decide to work peacefully, it will be temporary. we need to create a new belief system. Anger is damaging. Love is the way to get work done. When we experiment with a belief system, check if we are feeling lighter, health is improving, relationships are becoming simpler, and karmic accounts are settling. Then that belief system is right.
3: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
4: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार आला.
3: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जात.
5: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
3: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकत. त्याच सोबत
6: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
3: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
7: पहला नशा, पहला खुमार.
3: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
4: ओम
3: शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: थैंक यू सो मच।
3: बीइंग डिवाइन में आप बता रही थी अबाउट संस्कार्स, तो इतने सारे संस्कार हैं, कोई स्थूल है कोई सूक्ष्म है, आप बात कर रहे थे, तो मैं कल सोच रहा था कि कितने हैं टाइप ऑफ संस्कार्स हैं, मतलब
4: स्थूल संस्कार और सूक्ष्म संस्कार हम किसको कहेंगे। स्थूल मतलब फिजिकल, सूक्ष्म मतलब सटल। स्थूल संस्कार मतलब जो बाहर दिखते हैं, जो बाहर दिखते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, ये ऐसे खाते हैं, ये खाते हैं, ये सब संस्कार बाहर दिखते हैं, तो स्थूल संस्कार। सूक्ष्म संस्कार सटल, जो दिखते नहीं हैं, इट्स अबाउट यहाँ क्या चल रहा है रिकॉर्डिंग, इट्स अबाउट द पर्सनालिटी वी आर, इट्स अबाउट आर एटीट्यूड इन एवरी सीन, सूक्ष्म संस्कार। लेकिन जैसे हमने पिछली बार देखा कि ब्रॉडली 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स, राइट, पास्ट लाइफ संस्कार, फैमिली के संस्कार, फैमिली से मिले संस्कार, वातावरण से बने संस्कार, एंड वेरी पावरफुल इच्छा शक्ति, विल पावर से मिले संस्कार। लेकिन ये जो 4 सेट ऑफ संस्कार्स हैं, ये सारे अक्वायर्ड हैं, सारे अक्वायर्ड हैं। इनमें कुछ संस्कार बहुत ब्यूटीफुल हैं, कुछ संस्कार उतने कंफर्टेबल नहीं है।
3: लेकिन जब से मैंने ये होमवर्क शुरू किया कि भाई इसके संस्कार ऐसे, कोई बात नहीं एक्सेप्ट करो इसके संस्कार, तो मुझे ना सिर्फ संस्कारों का मीनिंग नॉट द गुड वंस पे ही जा रहा है। चलो इसके संस्कार ऐसे ऐसे बोल दिया तो छोड़ दो। तो मैं जब से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या संस्कार सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव ही हैं।
4: वो तो इसलिए क्योंकि हमारा अटेंशन लोगों के नेगेटिव संस्कारों पे जाता है। जो लोगों के अच्छे संस्कार होते हैं वो हमें यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी सपोज आप आराम से बैठे हुए, तो आई एम फाइन, तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू नोटिस, आई एम नॉट इवन गोइंग टू ऑब्जर्व कि ये बहुत अच्छे से बैठने का संस्कार है। आई डोंट क्रिएट अ थॉट, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ नहीं तो कोई थॉट क्रिएट नहीं की। लेकिन अभी सपोज आप थोड़ा सा गलत तरह से बैठे, जो मेरी डेफिनेशन से गलत है, तो आपको वैसा बैठते हुए देख यहाँ कुछ चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों बैठे, रोज बताओ तो भी ऐसा बैठे, मतलब इतना भी नहीं आता, ऐसे बैठना चाहिए, दिस इज माय एक एक थॉट जो चलनी शुरू होगी। जब सही बैठे थे यहाँ कोई थॉट नहीं चली, लेकिन जब सही नहीं बैठे थे तो यहाँ बहुत सारी थॉट्स चलने लगी। ये जो बहुत सारी थॉट्स थी ये मुझे अनकंफर्टेबल बनाने लगी, क्योंकि दे आर नॉट गुड क्वालिटी थॉट्स। अब जैसे ही मुझे वो अनकंफर्टेबल बनाने लगी तो मैंने ये थॉट क्रिएट की, चलो छोड़ो ना उनके संस्कार हैं, तो मुझे ज्यादा रजिस्टर कौन से संस्कार हो रहे हैं जो अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि जो कंफर्टेबल हैं वो तो ऑब्जर्वेशन में ही नहीं आते, कभी कभी आते भी हैं सारा दिन।
3: संतों के पास जाते, कोई अच्छा गुरु होता है, बहुत ही एकदम डिवाइन पर्सन होता है, तो लगता है कितने अच्छे संस्कार है।
4: सारा दिन में भी आपको बहुत अच्छे संस्कार दिखेंगे, आपको कोई दिखेगा जो बहुत हार्डवर्किंग है, हाँ। आपको कोई दिखेगा बहुत सिंसियर है,
3: स्टाफ में होता है।
4: आपको अपने स्टाफ में दिखेगा कोई बहुत केयरिंग है, औरों से डिफरेंट है, कोई दिखेगा जिसके अंदर बहुत बिलोंगिंगनेस है अपने काम के लिए, यू नो, बिना बताए भी वो काम कर देगा, वो काम को अपना समझ के करेगा, ये भी एक संस्कार है, सबके अंदर नहीं होता। कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता है, किसी के अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है, कोई बहुत पंक्चुअल है, बहुत सारे संस्कार हैं।
3: सही बात है। मेरे पास एक ड्राइवर था जिसके लिए एक कॉन्फिडेंस था, 4 बजे सुबह आना है, 3:30 बजे आ जाना, 4 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती थी, इतना मुझे फेथ था।
4: हाँ, लेकिन जो अच्छे संस्कार होते हैं लोगों के अंदर, उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये तो है ही ना, वी डोंट इवन थिंक एंड टॉक अबाउट इट मच। लेकिन जो अनकंफर्टेबल संस्कार जो हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, वो हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं क्योंकि चोट लगती है। इट्स अ सिंपल थिंग, अगर हम इस गार्डन से वॉक कर रहे हैं तो अगर हम आराम से क्रॉस कर गए तो हम ये नहीं कहेंगे ये पत्थर बहुत अच्छे से पड़ा था, ये रोड बहुत अच्छे से बनी थी। नहीं, हम बस नॉर्मल प्यार से वॉक करेंगे, सेइंग इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
3: खड्डा हो या कांटा चुभ जाए,
4: हाँ दिस मतलब कहीं चोट लगे तब रजिस्टर होगा कि ये रोड ऐसी क्यों थी, इट्स फाइन। लेकिन अगर हम ये भी एक संस्कार बना लें कि लोगों के अंदर जो ब्यूटीफुल संस्कार है उसकी तरफ अटेंशन देना शुरू करें, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। क्योंकि जहां हम देखेंगे, जहां अटेंशन जाएगी एनर्जी वहां फ्लो होगी। हमें सिखाते हैं कि जिसका आप जो संस्कार देखोगे वो आपका हिस्सा बन जाएगा।
3: बाप रे,
4: क्यों ऐसा? मैं आपके अंदर जिस चीज को देखूंगी वो यहां सोचने लगूंगी, यहां सोचने लगूंगी तो वो संस्कार अब यहां नहीं, मेरे चित्त का हिस्सा बन गया। सपोज मैं कह रही हूं ये ऐसे क्यों बैठे, ऐसे क्यों बैठे, ऐसे क्यों बैठे। नाउ इट्स नो मोर अबाउट यू सिटिंग, इट्स अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मैंने वो कमजोरी को क्या कर लिया, अपने चित्त पर बिठा लिया।
3: ये इतनी सुंदर लाइन आपने बोली, इट्स नो मोर अबाउट योर डूइंग और सिटिंग और
4: व्हाटएवर, इट्स अबाउट द वे आई एम थिंकिंग,
3: इट इज दैट कंटीन्यूअस वे ऑफ माय थिंकिंग। उसने तो एक ही बार कर दिया।
4: हाँ, वो भी बात है, उसने हाँ, तो एक ही बार कर दिया।
3: yes. कुछ भी खाने की टेबल पे उसने yes. मतलब झूठा yes. हाथ डाल दिया खाने में। लेकिन मैं तो
4: फिर भी मोटे मोटे स्थूल
3: वही मैं वर्ड फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ
4: yeah.
3: तो उसके बाद कितना मैं सोच सोच के,
4: तो वो अब आपका संस्कार नहीं रहा ना, वो मेरे चित्त का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग हो गई, बिकॉज वट एवर वी थिंक वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम जितना हमारे अंदर संस्कार होगा दूसरों की कमजोरियां देखने का, तो मैं आत्मा कमजोर होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ कमजोरी ही रजिस्टर करते जा रहे हूँ।
3: एक किताब में लिखा था सिस्टर, मेरे स्कूल में, कि गुरु ने अपने शिष्य को बोला ऐसे टीच करने के लिए कि तू इस कोठरी में, छोटा सा दरवाजा होता ना मेडिटेशन का पुराने जमाने का, उसको केव जैसा, वहां बैठ जा और तू सबसे जो तुझे पसंद है ना उसकी चिंतन कर। तो बोलता मुझे मेरी भैंस बहुत अच्छी लगती है। ठीक है सर, भैंस को याद करता रहा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन के मेडिटेशन के बाद अब गुरु ने बोला अच्छा अभी आ जा बाहर। तो बोला गुरुजी मैं बाहर कैसे हूँ, मेरे सींग इतने बड़े हैं।
4: सी,
3: तो मेरे इतने बड़े बड़े सींग है, और मैं हंसता था, बोले ये कोई कहानी है।
4: उसका भाव, जिसका चिंतन करोगे वैसे बनते जाओगे।
3: तो देखिए इन स्टोरीज में भी कितना दम है,
4: स्टोरीज में बहुत मीनिंग है, अगर हम उस मीनिंग को ले लें स्टोरी से और फिर उसको जीवन में लेकर आए। भैंस को याद करते करते भैंस ही कॉन्शियसनेस में आ गई है। तो इसका मतलब अगर हम औरों की कमजोरियों को याद करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो वो कमजोरियां हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएंगी।
3: बट दिस इज वेरी फ्राइटनिंग,
4: दिस इज अ फैक्ट, नो इट्स एनर्जी, वी कैन सी इट, कि जो देखा उसको यहाँ रखा, उसका चिंतन किया, तो वो यहाँ की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया।
3: बट फ्राइटनिंग इसलिए कि मेरा तो फिर गोल गया।
4: गोल क्यों गया?
3: मेरा गोल जो है कि मेरा प्योर सोल वापस प्योरिटी में आने का और सोल कॉन्शियसनेस में आने का, वो तो ये सब चिंतन
4: तो
3: करूंगा,
4: बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ की प्योरिटी को बढ़ाना है। तो मतलब यहाँ क्या रखना चाहिए हमें?
3: ये सब नहीं रखना
4: चाहिए। पर रखना क्या चाहिए?
3: The qualities of the soul.
4: Qualities of me, but qualities of other people also.
3: Okay.
4: कमजोरियों को देखेंगे तो वो चित्त का हिस्सा बन जाएंगे, विशेषताओं को देखेंगे तो वो चित्त का हिस्सा बन जाएंगे। कितना इजी है, आज हम इसको होमवर्क कर सकते हैं। जो मिले, जो याद आए, उसकी पहले एक विशेषता देखनी है। इवन अगर हम सेम विशेषता रोज देख रहे हैं, डजंट मैटर, एक विशेषता हर एक के अंदर रोज देखनी है। क्योंकि विशेषता को देखा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग किस चीज की हो गई, विशेषता की थॉट की रिकॉर्डिंग हो गई। सामने वाले को एनर्जी कौन सी गई? प्योर एनर्जी गई, क्योंकि हमने उसकी विशेषता देखी। सामने वाले की विशेषता भी क्या हो गई? बढ़ गई। कितना सिंपल है, खुद की प्योरिटी को भी बढ़ाना, औरों की प्योरिटी को भी बढ़ाना।
3: अभी आपसे सुनते सुनते मैं सोच रहा था कि एक इंसान के बारे में उसकी विशेषता देखूं, तो मुझे ढूंढनी पड़ रही है कौन सी है। अगर उसको ऑपोजिट आप बोलते मैं 10 गिना देता।
4: क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपके पास कॉन्शियस लेयर पे उसकी कमजोरियां क्यों रिकॉर्डेड है? क्योंकि हमने कई बार उनकी कमजोरियां ही देखी है। कोई बात नहीं,
3: वो तो रेडी है मेरे पास।
4: वो रेडी क्यों है? क्योंकि वो बहुत बार देखी है, तो वो यहाँ रेडी है। अब दिस इज अ प्रूफ कि वो आपके चित का हिस्सा है, वो कमजोरियां, ये प्रूफ है।
3: नहीं बाबा, मुझे वैसा बनना नहीं है।
4: वैसा बनना नहीं है,
3: बन जाऊंगा अगर, तो
4: आपके चित का हिस्सा है वो कमजोरी, इसीलिए तो एक क्षण में याद आ गई। याद इमिजिएटली यहाँ क्या दिखेगा? जो पड़ा हुआ है।
3: हाँ।
4: विशेषता क्यों नहीं दिख रही अभी? पड़ी नहीं हुई,
3: पड़ रही है।
4: पड़ी हुई नहीं है ना इधर। इमिजिएटली क्या दिखता है? कबर्ड खोलो, इमिजिएटली क्या दिखेगा? जो आगे आगे रखा हुआ है, जो रखा ही नहीं है या बहुत पीछे है, वो इमिजिएटली खोलते ही दिखेगा नहीं। यहाँ इमिजिएटली क्या दिखा? अब अगर आप आज विशेष अभ्यास करें, उनकी विशेषता देखनी है, फिर कमजोरी आएगी ध्यान में। उनकी विशेषता देखनी है, ये उनकी विशेषता, ये उनकी विशेषता, ये थोड़े दिन के बाद कबर्ड में आगे क्या आ जाएगा? उनकी विशेषताएं आ जाएंगी। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है ना जिसके अंदर विशेषताएं नहीं है। सिर्फ कमजोरी ने हमें डिस्टर्ब किया, तो हमने कमजोरी रिकॉर्ड कर ली। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन कि हमारा ध्यान जिन बातों पर जाएगा, वो बातें हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएंगी। औरों के अंदर हम क्या देखते हैं, औरों से हम कैसे बात करते हैं, सुनते क्या है हम औरों से, ये सब कुछ हमारे चित्त का हिस्सा बन जाता है। सो वी शुड टेक केयर। अगर मैं आत्मा अपनी प्योरिटी को बढ़ाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ प्योर चीजें रखनी है, सिर्फ प्योर चीजें रखनी है। और अगर अभी थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही है उनकी विशेषताएं देखने में, तो ये लाइन तो याद रखनी है ना कि वो आत्मा कैसी है,
3: ओरिजिनल क्या है,
4: प्योर आत्मा है। जब भी उसका नाम लें, उस व्यक्ति का, आप कहें प्योर आत्मा सो एंड सो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर आत्मा सो एंड सो, ताकि धीरे धीरे आप उसके नाम के साथ प्योरिटी के वर्ड को कनेक्ट कर दें। पीसफुल आत्मा सो एंड सो।
3: मैं ये छोटे छोटे जो बच्चे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको बोलता हूँ माय हैप्पी सोल, माय प्योर सोल, बड़े हंसते हैं। उनको बोल सकता हूँ, बड़ों को नहीं बोलता हूँ।
4: तो उनको बोलते हैं ना?
3: उनको तो बोलता हूँ रोज।
4: अब उनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है कि ये हैप्पी सोल है, नहीं तो हैप्पी सोल वर्ड कहाँ से आएगा, प्योर सोल वर्ड कहाँ से आएगा, ज्ञान है। लेकिन उनके साथ उनकी एनर्जी हमें अच्छी लग रही है, तो उनको हम वो वर्ड बोल पा रहे हैं, हैप्पी सोल, प्योर सोल। लेकिन जहां हमें जिसके साथ थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, वहां हम क्यों नहीं बोल रहे?
3: पेनफुल सोल,
4: पेनफुल सोल नहीं बोल रहे। अब आज चेंज करें उसको, प्योर सोल, प्योर सोल, नाम ही प्योर सोल रख दो। ये ग्रूव चेंज हो रहा है, ये लगता है कि ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, बोलने से भी हो जाएगा। क्योंकि बोलने से हमने बार बार बार बार उसको कौन सी एनर्जी दी और अपने यहाँ कौन सी एनर्जी रिकॉर्ड की। संस्कार परिवर्तन हमारे जीवन का लक्ष्य है अब, दैट इज आवर गोल, दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो हमें एक एक संस्कार को सूक्ष्म, जितना सेल्फ क्रिटिसिज्म का आपका संस्कार बना हुआ है, उस वजह से औरों को क्रिटिसाइज करते हैं।
3: सेल्फ क्रिटिसिज्म से आप इम्प्रूव नहीं करते क्या?
4: क्रिटिसिज्म का संस्कार बन गया ना, रिकॉर्डिंग किस चीज की हो गई? क्रिटिसिज्म की।
3: इम्प्रूवमेंट की नहीं है, बट क्रिटिसिज्म की है।
4: तो क्रिटिसिज्म की रिकॉर्डिंग हो गई, तो फिर हर आत्मा के प्रति वही रिकॉर्डिंग चलने लगेगी। क्योंकि अपने अंदर भी विशेषताएं नहीं देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं।
3: आई एम अ प्योर सोल एंड आई लव माई सेल्फ पहले आना चाहिए।
4: दैट जब अपने साथ कोई चीज की जाएगी, वो वाला रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो औरों के साथ करना इजी हो जाएगा। जब अपने आप के अंदर कमजोरी देखेंगे, औरों के अंदर कमजोरी दिखेगी। अपने को क्रिटिसाइज करेंगे, औरों को भी क्रिटिसाइज करेंगे। जब अपने आप को किसी गलती के लिए कोसेंगे, औरों को भी कोसेंगे। और अगर अपने आप को क्षमा करेंगे औरों को भी क्षमा करेंगे, अपनी विशेषता देखेंगे तो औरों की भी विशेषता देखेंगे। संस्कार है ना, संस्कार चेंज नहीं होता इसके लिए ये इसके लिए, वो संस्कार है, हमारे लेंस का कलर है। वो लेंस के थ्रू हम अपने को भी देखेंगे, वो लेंस के थ्रू हम दूसरों को भी देखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमें कोई कमजोरियां दिख भी रही हैं, व्हाई डू वी ऑलवेज से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। क्या मीनिंग है एक्सेप्टेंस का? क्योंकि कई बार कुछ भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती है उसके अंदर, उसको भी एक्सेप्ट, काम नहीं कर रहा उसको भी एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या? वो चीज सामने दिख रही है, ये ऐसा है, ये दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उसको अपने चित पर नहीं रखा। लेट्स सी हाउ टू डू
3: इट। तुमने ये बुरा किया नहीं बोला, लेकिन इसको ऐसे कर दो,
4: दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी। फर्स्ट स्टेज एक्सेप्टेंस मीन्स सामने जो दिख रहा है वो सामने ही रहे, मेरे चित का हिस्सा नहीं बने। यू सी हाउ टू डू दैट। जो दिख रहा है वो सामने रहे, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, मेरे चित का हिस्सा नहीं बने। विच मीन्स मेरा उस बारे में चिंतन नहीं चले, वो चीज वहीं रहे, यहां का हिस्सा नहीं बन जाए। दैट मीन्स उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया।
3: एग्जाम्पल देंगे?
4: एग्जाम्पल, ये फ्लावर्स है
3: जी,
4: ये घास है, कांटे भी हैं, ठीक है, कुछ झाड़ियां भी हैं, ये है, ये है, अभी ये यही है सिर्फ, ये यहां है। लेकिन अगर मैंने इसका चिंतन करना शुरू कर दिया, इतने कांटे हैं, चुभ गया तो ध्यान भी नहीं रखते हैं, अभी ये यहां थे, चिंतन करने से ये यहां का हिस्सा बन गए। लेकिन अगर वो सिर्फ वहां रहे और मैं उसके बारे में चिंतन नहीं करूं, वो यहां का हिस्सा नहीं बनेगा। डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी। तो कांटे हैं, है।
3: तो इसी तरह से किसी के संस्कारों को भी
4: अपने चित का हिस्सा नहीं बनाना है। सपोज आपके पास कोई स्टाफ है, लेट आता है, लेट आता है, मालूम है जी, मालूम है, रोज आता है, मालूम है, मालूम है, उसके साथ कैसे चलना है वो भी देख लेंगे। लेकिन अगर रोज उसके वो संस्कार का चिंतन किया, इवन अगर 5 थॉट्स रोज क्रिएट कर दे, ओनली 5, एंड 5 थॉट्स इज नथिंग, हमें लगता है 5 थॉट्स तो हम ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं। रोज लेट आता है, कल भी बोला था, कहीं जाना हो तो इस पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, इसको कितना भी समझाओ, सैलरी मांगने तो फटाफट आ जाता है, टाइम पे बोलो तो ये आता नहीं है, 5 थॉट्स। वो लेट आता है, वो संस्कार वहां है, उसके साथ कैसे चलना है वो भी देखना है। चिंतन कर लिया, मेरे चित का हिस्सा बन गया। चिंतन, औरों के संस्कारों का चिंतन आत्मा की पावर को डिप्लीट करता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये सारा दिन कर रहे हैं। एंड एक्सेप्टेंस मीन्स वो संस्कार है, मुझे उसके साथ कैसे चलना है, दैट ऑल्सो आई विल टेक केयर, लेकिन वो संस्कार मेरे चित पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस डजंट मीन ठीक है आप रोज लेट आओ।
3: एक्सेप्टेंस को कई बार मैं सप्रेशन में समझता था।
4: एक्सेप्टेंस मीन्स उसका चिंतन नहीं करते हैं। अगर चिंतन किया, चिंतन किया तो वो सप्रेशन है।
3: चिंतन सप्रेशन कैसे हो गया?
4: आपने चिंतन करके फिर दबा दिया, बोला नहीं, चिंतन तो किया ना,
3: बोल के भी तो चिंतन करते हैं कई बार।
4: हाँ, बोल दिया तो वो कर्म में ही आ गया, एक्शन में आ गया, लेकिन चिंतन किया और अंदर तक रख लिया तो सप्रेशन।
3: बोल बोल बोल के थक जाते हैं, फिर चिंतन भी करते, सुनता ही नहीं है,
4: तो वो तो फिर रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया ना। ये इसको आज एक लाइन लेते हैं, पकड़ते हैं और इसको आज प्रैक्टिस करते हैं। पहले फिजिकल चीजों के साथ करते हैं, फिर लोगों के संस्कारों के साथ करते हैं, क्योंकि आज हमें ये करने की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि हम आसपास के लोगों के संस्कारों का चिंतन कर रहे हैं, जो लोग हम सिर्फ मीडिया में देख रहे हैं जिसके बारे में, उसका भी चिंतन कर रहे हैं। हमें लगता है नॉर्मल है ना उनके बारे में सोचना, वो वहां है इस समय, मेरे लिए वो व्यक्ति टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन उसका चिंतन करके मैंने उसको यहाँ का हिस्सा बना दिया।
3: कई लड़कियां जो सिर्फ एक को नहीं, जो मिले उसको, मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसी, मेरे साथ एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, फ्रेंड है उसको भी बोल दिया, अपनी मदर को भी बोल दिया।
4: बोल दिया तो वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो गया।
3: नहीं मतलब चिंतन करते जाना, यही बात
4: चिंतन
3: बोलते जाना।
4: तो सारा दिन चल रहा ना, इसीलिए तो वो बोल में बहुत बार आ रहा है। जो हम ज्यादा सोचते हैं उसको फिर हम बोल देते हैं। सपोज अब फिर से देखते हैं, ये फूल और कांटे हैं, ये उधर हैं। पहले मैंने उसको अपने चित पर रखा, चिंतन किया, फिर मैंने आपको सुनाया। अब जैसे ही मैंने आपको सुनाया और अगर आपने यहां रख लिया, एक है कोई बात को सुनना, जिसके लिए कहते हैं सुनी अनसुनी कर दो। सुनी अनसुनी कर दो मतलब सुन तो रहे हैं कानों से, चित पर नहीं रखो। लेकिन अगर मैंने आपको सुनाया और आपने भी यहाँ रख लिया, तो मैंने क्या किया, अपने चित से कचरा उठाया और दूसरे के भी चित पर रख दिया।
3: अब ये पेरेंट्स का क्या यहाँ पर रोल है कि जब वो बच्चे आके आपको सुनाते हैं?
4: अगर मैं आपको आके सुनाऊं कितने कांटे हैं इधर, चुभ ही जाएगा, ये कोई जगह है काम करने की? कांटे कांटे, सफाई भी नहीं किया है, साफ तो रखना चाहिए। आई एम गोइंग ऑन स्पीकिंग ना,
3: तो मैं आपसे ये बोलूंगा फिर जो नहीं है बाकी चीजों पे ध्यान दो, वो अपने आप
4: बोलूंगी। लेकिन कांटे हैं,
3: वो हैं, उनको रहने दो, उस तरफ आप मत जाओ।
4: क्या देखूं फिर मैं, क्या देखने?
3: आप उसके आसपास कितनी सुंदरता है वो देखो ना।
4: बस यही करना है पेरेंट्स को, वो पेरेंट्स को भी यही करना है, क्योंकि बेटी घर आके कांटे सुना रही है, लेकिन कोई आत्मा तो ऐसी नहीं है जिसके अंदर सिर्फ कांटे हैं।
3: मगर ऐसा सब करने लग जाए तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी।
4: तो लाइफ ही तो अच्छी बनानी है, ऐसा
3: पेरेंट्स भी जो उसको एंडोर्स करते, अच्छा उसने ऐसा बोला,
4: तो वो क्या होता है उसके कांटों को फिर और पक्का। अभी मैं ऑलरेडी फील कर रही हूँ यहाँ इतने कांटे हैं, आई एम नॉट फीलिंग नाइस। कांटे हैं कांटे हैं। अगर आपको मैंने सुना है देखो ना कितने कांटे हैं, और आपने ऊपर से कहा बेकार जगह है, कितने कांटे हैं, यू सी मेरी फीलिंग कितनी इंडोर्स हो जाएगी उसके बाद।
3: नहीं बट इस पे मेरा एक और संस्कार है, देखो फालतू बातें मेरे साथ नहीं करना, आई गेट इरिटेटेड, छोड़ दो।
4: लेकिन तो आपने क्या किया, आपने कहा मत सुनाओ, तो आपने अपने चित पर नहीं लिया, लेकिन आपने मेरे चित से साफ करने की कोशिश नहीं की। अगर आप मेरे को एक मिनट देके सिर्फ मेरा अटेंशन कांटों से फूलों की तरफ ले जाएंगे, ये आपकी मेरे ऊपर दुआ होगी, क्योंकि यू विल बी रिलीजिंग मी ऑफ अ लॉट ऑफ पेन। मैं कांटा कांटा कांटा ही दिख रहा हूँ। क्या होता है, जैसे आपने कहा ना किसी एक को याद किया, उसकी कमजोरी दिख गई, सिर्फ विशेषता दिखी नहीं, लेकिन ऐसे ही जो आपको आके सुना रहा है उसको सिर्फ कमजोरी दिख रही है, तो हमारा रोल है ना उसको भी विशेषता दिखा देना, फिर वो फिर कमजोरी सुनाएंगे, हम फिर विशेषता दिखाएंगे, वो फिर सुनाएंगे, हम फिर दिखाएंगे, दिखाते दिखाते उनको भी कभी कभी धीरे धीरे विशेषता दिखनी शुरू हो जाएगी। इट विल हैपन। कमजोरी कोई सुना रहा है उसको इंडोर्स नहीं करना, इवन चुपचाप नहीं सुनना। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने ऊपर से कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुन लिया तो इंडोर्स कर दिया। जैसे गॉसिप करते हैं, गॉसिप करे बैठे किसी के भी बारे में, इधर उधर इंडोर्स कर दिया। ये बहुत डीप कर्मा है कि किसी एक आत्मा को लिया, उसकी कमजोरियां या उसके बारे में जो हम सोचते हैं वो डिस्कस किया, उसको अपने चित पर रखा, फिर वो औरों के चित पर रखा, फिर उन सब ने वो नेगेटिव वाइब्रेशन उस आत्मा को भेजी, उस आत्मा की वो नेगेटिविटी बढ़ी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी?
3: उस आत्मा की नेगेटिविटी कैसे बढ़ती है?
4: जैसे आपने कहा किसी घर में बेटी आई, उसने घर आकर चार लोगों को अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बातें नेगेटिव सुना दी, ठीक है, वो ऐसे हैं, व्हाटएवर। जैसे ही चार लोगों को सुनाई, चार लोगों के चित पर बैठी, तो चार लोगों ने भी वैसी वाली थॉट क्रिएट की, तो ये पांच लोग जो चिंतन करेंगे तो पांच लोगों की नेगेटिव एनर्जी जाएगी उस आत्मा की तरफ। कैन यू इमेजिन 5 पीपल सेंडिंग यू नेगेटिव थॉट्स, व्हाट विल हैपन?
3: चार तीर आ गए मेरे पास,
4: चार नहीं आते ना, चार आत्माओं से अनेक नेगेटिव तीर आते हैं। कोई एक थॉट थोड़ी क्रिएट करता है, कोई एक थोड़ी क्रिएट करता है, कोई सिर्फ उस टाइम थोड़ी क्रिएट करता है, क्योंकि अब हमने वो कचरा तो उनके चित्त पर रख ही दिया। अब वो तो कितनी बार सोचेंगे उस बारे में, कैसे ये कॉन्शियसनेस बनती है इतनी नेगेटिव।
3: हम क्यों नहीं सीखे जब हमारी मदर से, जब उन्होंने वो दंदा दा पिसिया बच सकता है, लेकिन थॉट्स का पिसिया कभी नहीं बचता।
4: दांत से पीसा बच सकता है, थॉट से पीसा नहीं बच सकता। मीनिंग क्या, दांत से किसी को काटेंगे तो यही चोट लगेगी सिर्फ, ठीक हो जाएगी चार दिन के अंदर, लेकिन थॉट से किसी को काटा तो वो थॉट्स मेरे चित पर पहुंची, इधर की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गई।
3: आज समझ में आया तो इट्स टू लेट।
4: नो, कैंसर, रॉन्ग लाइन, इट्स टू लेट। नो, नॉट एट ऑल। जिस क्षण शुरू किया इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बर्थ, इट्स एन अवेकनिंग। कभी टू लेट नहीं, ये भी रॉन्ग लाइन रिकॉर्ड हो जाएगी, टू लेट नहीं। वी शुड से थैंक यू टू हिम कि हमें वो ये ज्ञान देता है जिससे हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। आज एक होमवर्क पक्का करते हैं, किसी को भी देखते हुए उस आत्मा की विशेषता को देखेंगे। किसी की कमजोरी दिख रही है, दिख गई है, उसके साथ कैसे चलना है वो देख लेंगे, कमजोरी को चित्त पर नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर मैंने कमजोरी चित्त पर रखी तो वो मेरे चित्त का हिस्सा बन जाएगी। कमजोरी दूसरों को जाकर नहीं सुनाएंगे, इज वेरी रिस्की। क्योंकि अगर कमजोरी दूसरों को जाकर सुनाई तो हमने दूसरों के भी चित्त पर रख दी। हम जिम्मेवार बने हैं नेगेटिविटी फैलाने के, डीप कर्मा, डीप कर्मा। तो दूसरों के चित्त पर नहीं रखना है। दूसरे आकर अगर हमें किसी की कमजोरी सुना रहे हैं तो उसको अपने चित्त पर ग्रहण नहीं करना है। धीरे से उनको, उनके चित्त को भी कहाँ लेकर जाना है, उनकी विशेषताओं की तरफ लेकर जाना है। एक दूसरों को दुआएं भेजनी है। हर एक के कचरा कचरा कचरा यहाँ रखते रखते हमारा मन ही फिर उदास और परेशान होने लग गया है, क्योंकि वहां कोई अच्छी चीज ही नहीं बची हुई। अभी सबकी कमजोरी कमजोरी कमजोरी रखते रखते हम कमजोर हो चुके हैं। तो कितना अटेंशन रखने की जरूरत है,
3: बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।
4: ओम शांति।
3: थैंक यू।
5: ग्रॉस संस्कार्स आर फिजिकल हैबिट्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। सटल संस्कार्स आर इमोशनल and ways of thinking and feeling, like habit of caring, sharing, humility, complaining, criticizing, anger, etc. Our attention is normally focused more on those sanskars of others which we feel are not right. We create irritation, anger, jealousy, hurt or hatred when we have to face their sanskars. And so, negative sanskars in others are noticed more than their good sanskars. When we notice others' weaknesses and start thinking about it, it is no more only their sanskar. It has now become a part of our thought process. We need to always remember, as we think, so we become, and consciously focus our attention to the beautiful qualities in people around us. Accepting others' sanskars means being aware that the soul has a particular sanskar, preparing ourselves to live and work with them, but not keep thinking or talking about their sanskar.
6: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 FM पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अंतरिक्ष दिव्यता का।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: नमस्ते, ओम शांति, मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज के इस प्रोग्राम में, करियर ऑप्शन कार्यक्रम में, विशेष अमृतपाल जी हमारे साथ हैं, दिल्ली से आप जुड़े हुए हैं और HR मैनेजर हैं आप, और HR में आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग करियर इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं, जो एक विभाग है जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की जो विशेष क्वालिटी होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और इस डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए या इस तरह के कार्य करने के लिए आपको किन किन चीज़ों के ध्यान रखने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कौन से स्ट्रीम से आप इस फील्ड में आ सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आप सभी की तरफ से अमृत कौर पाल का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
5: जी बिल्कुल ठीक, ओम शांति।
4: ओम शांति। अमृत जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा शुरुआत करते हैं हम लोग करियर के बारे में, कि ह्यूमन रिसोर्स में कैसे हम लोग काम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी जीवन की यात्रा हमारे साथ थोड़ा सा साझा करें, और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुई उसके बारे में बताइए।
5: जी जरूर, मेरा पूरा नाम अमृतपाल कौर है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सारी स्टडीज मेरी दिल्ली से ही हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है इंग्लिश ऑनर्स में, एंड उसके बाद मैं पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और HR का एक जो डिवीजन होता है स्टाफिंग, उसमें काम करती हूँ एज अ मैनेजर।
4: जी जी। अच्छा, आपकी स्कूलिंग की या कॉलेज की कुछ बातें हमें साझा कराइए, ताकि हमें कुछ आपके बारे में पता चल सके, और जैसे स्कूल या कॉलेज में भी हमारा मन चलता है कि हमें ये बनना है, तो आपका बचपन में किस तरह की बातें थी, क्या बनना चाहते थे आप, वो भी बताइए हमें।
5: ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या टिकी पार्ट हो सकता है, बिकॉज कई बार हम चाहते कुछ है लेकिन होता कुछ है। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट काफी हद तक अकाउंट्स की तरफ था, लेकिन उस टाइम में जब मैं पढ़ती थी तो गर्ल्स को इतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता था पढ़ने के लिए, सिर्फ एक ही बात होती थी कि ग्रेजुएशन करो, शादी करो और जाओ।
6: अच्छा,
5: लिहाज से चाहे मैंने अपनी स्कूलिंग में 11th 12th जो है वो कॉमर्स में करी थी, लेकिन मुझे पुश नहीं किया गया और हम इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं होते थे उस वक्त कि हम लड़कर या कन्विंस करके अपनी स्ट्रीम को चूज कर सके, तो जैसा कहा जाता था वैसा कर लेते थे। मैंने मुझे पुश किया गया क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो मुझे कहा गया कि आप इंग्लिश ऑनर्स कर लो, लिटरेचर पढ़ो, आपके लिए बहुत अच्छा है, और सो वही किया इंग्लिश ऑनर्स में। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, तो लिटरेचर में मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट भी बहुत था, लिटरेचर इन द सेंस मुझे कुछ भी पढ़ने को मिल जाए मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। खासतौर पर मेरा इंटरेस्ट जो था वो स्पिरिचुअलिटी मैं कह सकती हूँ। द रीजन इज कि जैसे लाइफ डेथ के बाद क्या होता है, मैं क्यों हूँ, क्या है मेरे आसपास, ये सब है क्या, क्यों होता है, हम रिश्तों में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या किसी किसी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, तो समझ नहीं आता था, लेकिन उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट रहता था। बट बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं फोकस नहीं था, क्योंकि उस वक्त का एनवायरमेंट ऐसा था सोसाइटी में कि जब लड़कियों को इतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता था और इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी कि तुम्हें भी कुछ करना है।
6: जी जी जी।
5: तो बस उसके बाद फिर शादी, फैमिली, बच्चे, वो सब चीजें। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से मुझे काम के लिए आगे बढ़ना पड़ा, तब मैं इस फील्ड में आई।
6: जी जी। अच्छा, कॉलेज के या स्कूल टाइम में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे बच्चे भाग लेते हैं, कॉम्पिटिशन हो या कल्चरल इवेंट हो, तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप करते थे क्या, स्पोर्ट्स हो?
5: मैं स्पोर्ट्स में तो नहीं, लेकिन जैसे कॉलेज में कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो उसमें जैसे हेल्प करनी होती है कंटेंट में, कि कंटेंट थोड़ा बहुत क्रिएट किया, मतलब
6: बैकएंड पे आप हेल्प करते थे।
5: हाँ जी, कि भी अगर स्किट लिखना है तो उसमें हेल्प कर दी या उनके एड्रेसेस वगैरह में हेल्प कर दी, मतलब क्रिएटिव साइड में मेरा काफी रुझान था। मतलब फ्रंट पे आने का मेरा कोई एज सच शौक नहीं था कि मैं स्टेज पे आऊँ, बट हाँ जैसे कोऑर्डिनेशन होती है, स्टेज कोऑर्डिनेशन, इस तरह की चीजें मैं करना पसंद करती थी, लेकिन मैं ये नहीं करती थी कि कोई प्ले हो रहा है तो मैं उसमें लीड रोल करूं या मैं सपोर्टिंग रोल करूं, इस तरह से नहीं।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और कुछ इवेंट जो आप बैकएंड पे भी हेल्प कर रहे हो, ऐसे कुछ इवेंट जो याद रहे आपको, याद है बहुत अच्छा आपको फील हुआ हो, ऐसे कुछ बातें हो तो बताइए।
5: काफी टाइम हो चुका है तो थोड़ा सा दिमाग में,
6: या फिर ऐसा होता है ना कुछ हमें किसी ने डांट दिया टीचर ने, या फिर कुछ हमारे साथ हुआ मस्ती वाले हो या कंप्लेन वाले हो, जो कुछ याद हो तो कुछ ऐसे।
5: हाँ जी बिल्कुल। मतलब उस टाइम में तो देखिए हम लोगों का एक ही एंटरटेनमेंट होता था, टीवी वगैरह बहुत मतलब एक्टिव होते थे, लेकिन कॉलेज से बंक करके पिक्चर देखना ये हमारा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होता था।
6: जी, जी, जी,
5: तो एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे आज भी याद है, मतलब कॉलेज से रिलेटेड तो नहीं है, बट क्योंकि हम बहुत बंक मारते थे तो एक पिक्चर डॉन करके बहुत फेमस थी।
6: अच्छा अच्छा। हाँ, तो, हाँ, हाँ.
5: देखी भी हुई थी, बट फिर भी हमारे कॉलेज के पास वो उस पे लगी हुई थी, किसी थिएटर पे लगी हुई थी, तो और हम फ्रेंड्स ने प्लान किया कि आज क्लासेस बंद करेंगे और हम पिक्चर देखने जाएंगे। पिक्चर देख ली, सब कुछ हुआ, घर आ गए वापस। अब मेरे ब्रदर भी डॉन के बहुत फैन थे।
6: अच्छा, अच्छा,
5: और भाई मेरे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बड़े भाई, तो उन्होंने उस दिन उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने मुझे बिना बताए मेरे घर पहुंचने से पहले टिकट्स बुक करवाई हुई थी सेम थिएटर पे, सेम पिक्चर।
6: अच्छा अच्छा।
5: और अब 3 घंटे हम सुबह देखते रहे हैं और सेम पिक्चर हमने पहले भी देखी हुई थी, बट डॉन अच्छी लग रही और ऊपर से वो नाइट शो था और मैं ये भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि मैं तो कॉलेज गई थी।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो वो मुझे आज तक नहीं भूला और उसके बाद मैंने झूठ बोलना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, झूठा तो नहीं लेकिन ये एक वाक्या मुझे मतलब कि झूठ बोलने के परिणाम कभी कभी
6: बड़े मुश्किल हो जाते हैं,
5: बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पिक्चर
6: तीन बार देखना
5: पड़ता है, दिन में देखना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ।
6: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने, क्योंकि हमारे जीवन के कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें सबक भी देते हैं, हमें बताते भी है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हर लेसन हमको जो है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ नई सीख मिल जाती है, तो वो हमारे जीवन में एक अच्छा जो है छाप छोड़ जाते हैं, भले मस्ती वाले हो या झूठ हमने बोला हो, लेकिन वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अग्रसर करते हैं कि आपको झूठ बोलने से ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इस मुश्किल से बचना है तो झूठ नहीं बोलना है, तो वहां से हमको सीख मिलती है। तो अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, और मैं चाहूंगा कि एक जैसे कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो उनके पढ़ाने में जो है ना, कोई एक टीचर का पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है, वो याद भी रह जाता है हमें। तो ऐसे कुछ किसी टीचर के बारे में आप बताइए जो आपको याद अभी भी है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इंग्लिश की टीचर जो थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत ही इतने प्यार से पढ़ाती थी, और मैं उनकी फेवरेट टीचर थी, और यही एक रीजन था कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी थी। चाहे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े थे, लेकिन मेरा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में उनकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रहा, इन कंपैरिजन टू अपने आसपास के मतलब बच्चे जो मेरी क्लास के थे या मेरे स्कूल के बच्चे थे। तो वो मुझे मतलब बहुत खुश भी करती थी, और उनको लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ अपनी लाइफ में लिटरेचर को लेकर। तो इनिशियली तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये उनकी एक कह लो कि जो बेस बनी मेरी इंग्लिश की
6: जी,
5: वो मिसेज मारंग करके हमारी टीचर थी, तो उनकी वजह से मतलब उन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग बहुत अच्छे से करी, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश की तरफ रुझान या लिटरेचर की तरफ रुझान बहुत अच्छा रहा।
6: बहुत बढ़िया जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं अमृत और पाल से। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि करियर इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके पहले हमने अमृता जी के बारे में जानने की कोशिश की, कैसे उनकी स्कूलिंग रही, बचपन की कुछ बातें। आशा करूंगा आप सभी को भी अपने बचपन की बातें याद आ रही होगी, तो आइए बचपन के इस यादों को और खूबसूरत बनाते हैं इस गीत के साथ में। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और हमारे साथ अमृत कौर पाल जी उपस्थित हैं, जिनसे बातें हो रही हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अपने करियर के लिए क्या पहले से सोच के रखा था, जैसे शुरुआत में आपने बताया, तो आप एचआर में कैसे जुड़े और किस तरह से ये चीजें बनी, थोड़ा सा बताइए अपनी करियर यात्रा के बारे में।
1: जी जरूर। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं मतलब एचआर क्या है या एचआर के बारे में,
0: जी।
1: मेरी लाइफ जर्नी में एक ब्रेक आया था जिसमें मतलब मैं कोई काम नहीं कर रही थी, और उसके बाद जब मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हुए तो मैं इस लाइफ में आई। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एचआर का नहीं था, लेकिन मुझे ट्रेनिंग के वजह से मेरी कंपनी ने ट्रेनिंग दी थी,
0: अच्छा,
1: तो तब मैं इस डिपार्टमेंट में, इस फील्ड में आई हूँ। और मैं फ्रंट एंड एचआर में हूँ। फ्रंट एंड एचआर से मेरा मतलब है कि दो तरह के एचआर पोजीशंस होती हैं। एक होता है
0: हाँ
1: कोर एचआर और एक होता है जिसमें आप क्लाइंट्स के लिए हायरिंग करते हैं। तो मेरा जो है वो फ्रंट एंड का रोल है।
0: बिल्कुल।
1: तो मतलब मेरी कंपनी ने मुझे, जब मुझे जरूरत थी तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी प्रॉपर इसकी, और उस ट्रेनिंग के बिहाफ पे ही मैं जो कुछ भी हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उस मैनेजर की जिन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग करी। और आज मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला पा रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अमृता जी, जैसे कि आज हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं, जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एचआर में, तो उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी होगी, किस तरह की मेंटली और फिजिकल या फिर पढ़ाई की बात अगर कहें, तो कौन सी चीजें उनके लिए ज्यादा बेटर होगी?
1: एक्चुअली एचआर फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें जो हैं वो जरूर आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। पहली चीज है कि आपको लोगों से बात करना पसंद हो, कॉन्फिडेंस हो, और इंग्लिश के ऊपर कमांड हो। क्योंकि जब आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, पहली कॉल किसी एचआर की ही जाती है किसी भी कैंडिडेट को, तो कंपनी कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट को अपनी एचआर के रोल में नहीं देती। तो कॉन्फिडेंस और लोगों से बात करने की एक जिसको कला बोलते हैं, ये दो चीजें, और आपका इंटरेस्ट लोगों से बात करने का, जल्दी से कनेक्ट कर लेने का लोगों के साथ, ये बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो प्रॉबेबली उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई वुड से ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और लोगों से जुड़ने की कला, ये दो चीजें बेयर मिनिमम है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एचआर में काफी सारे स्ट्रीम्स हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप एमबीए इन एचआर कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो साइकोलॉजी में भी एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं, और इसमें भी कॉर्पोरेट साइकोलॉजी और इंटरनल साइकोलॉजी, आई मीन बिजनेस साइकोलॉजी, ये दो चीजें होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आपको सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स में ही अपना करियर बनाना है और आपको बहुत क्लैरिटी है इस बात पे, तो एमबीए इन एचआर आप बड़े आराम से कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और ग्रेजुएशन में भी

0: का ऑप्शन होता है, आप वो भी कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आप कैसे करना चाहेंगे। और एक बार आप कर लेते हैं तो इसमें कुछ स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं जो कुछ कुछ कंपनियां प्राइवेट लेवल पे करवाती हैं, जिसमें वो सर्टिफिकेशन देती हैं, जैसे कैसे स्क्रिप्ट वगैरह बनाना, अप्रेजल कैसे करते हैं, HRMS पोर्टल कैसे चलाया जाता है, वो सब चीजें भी वो लोग सिखाते हैं। ऑब्वियसली मेहनत, मतलब अगर हम सोचें कि सिर्फ लोगों से बात करनी है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि HR का सबसे बड़ा रोल होता है, जब वो किसी को हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए तो उनका कल्चरल फिट भी देखना बहुत जरूरी होता है। कल्चरल फिट से मतलब है कि हर कंपनी का अपना अपना एक रोल होता है, तो उनका कल्चर होता है, उस कल्चर में वो बच्चा फिट होगा या नहीं होगा, ये बड़ा जरूरी होता है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हर चीज को जो है हमें देखना पड़ता है, और ग्रेजुएशन के बाद भी HR वाला जो कार्य है वो कर सकते हैं, ये आपने बताया। आइए इसके साथ में एक और बात आती है कि HR में जैसे कि कौन कौन सी जगह पे हमारा जो है रिक्रूटमेंट हो सकता है, किन किन जगह पे ज़्यादातर, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये पार्ट है या फिर प्राइवेट में है, तो कहाँ कहाँ हम लोग नौकरी पा सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएं।
0: ओके, तो HR डिपार्टमेंट हर कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंपनी की बैकबोन होती है, क्योंकि HR जो होता है वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है उसके बीच का एक ब्रिज होता है। तो हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको HR हर जगह मिलेंगे। HR डिपार्टमेंट के बिना कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता, कारण बहुत क्लियर होता है कि हर चीज मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को नहीं बता सकती, लेकिन जो फर्स्ट हैंड कम्युनिकेशन होती है वो HR डिपार्टमेंट के थ्रू ही सब एम्प्लॉयज को जाती है। और वही जितने भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, चाहे आप घर में रहें चाहे कहीं भी रहें, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उनको रेजोल्यूशन देना और उनको एक कह लीजिए कि अगर कंपनी पिता है तो HR माँ है, तो घर में जैसे होता है मम्मी चीजें संभाल लेती हैं, समझा देती हैं और ज्यादा एस्केलेट नहीं करने देती और जरूरत पड़ती है तो डांट भी देती हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली HR का यही रोल होता है। इसमें मेल और फीमेल की बात नहीं है, लेकिन HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपनी को जोड़कर रखने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, आज के समय में जैसे कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहाँ ज्यादा ऑप्शन है?
0: HR डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि हर कंपनी को जरूरत है, चाहे कोई छोटी कंपनी हो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो। अगर कंपनी के 10 एम्प्लॉई हैं तो ओनर जो है वो खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन 20-25 लोगों को डेली चीजें समझाना और उनकी प्रॉब्लम्स को अगर वो सॉल्यूशन करने में लग जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है कंपनी को ग्रो करना। तो कोई भी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो बड़ी कंपनीज हो चाहे वो 10 लोगों की कंपनी हो, HR का रोल हर जगह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अक्सर जो कंपनियां 25-50 या 100 लोगों से काम करवाती हैं, उनका HR डिपार्टमेंट होता ही होता है, क्योंकि इतने लोगों को डेली हैंडल करना, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, उनकी हर चीज के लिए ध्यान रखना, वो सब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए HR फील्ड बहुत वास्ट है, इसमें कुछ लोग स्पेशलाइज कर जाते हैं किसी किसी चीज में, कि वो सिर्फ अप्रेजल्स में काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पेरोल में काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ जिसको बोलते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट HR के बिना कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो HR एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।
1: अच्छा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि HR का जो विशेष रोल है उसके बारे में आपने जिक्र किया है, और निश्चित तौर पे हमारे जो श्रोता है, दर्शक मित्र है, उन सभी को भी ये बातें पसंद आ रही होंगी। अब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जो विद्यार्थी मित्र है जिनको हमें जो है विशेष इन बातों का ध्यान रखना है, तो जैसे कि एक बार हम लोग समझते हैं कि भाई इस फील्ड में मुझे जाना है क्योंकि ये हर जगह जरूरत है इसकी, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपके अंदर एज ए ह्यूमन क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: जी जरूर। तो पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत जरूरी है। इंग्लिश के ऊपर कमांड होनी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी अपने आप पर, और जिसको बोलते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन हो उसको उसमें घबराना नहीं, क्योंकि लोग आपसे सीनियर भी होंगे, लोग आपसे जूनियर भी होंगे, एज में, ओहदे में, हर तरह से। लेकिन एचआर का रोल जो है वो कंपनी को जोड़ कर रखना होता है अपने एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं कम्युनिकेट करना। ऑनबोर्डिंग आसान है, लेकिन किसी को अगर आपने निकालना है, उसके जो लॉज होते हैं, किस तरह से उनको निकालना है, क्यों निकालना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उससे पहले की जो प्रोसेस होती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो कंपनी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है कि आप लॉज के हिसाब से उनको समझाएं, उनसे बात करें, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करें कि इनसे क्या बात हुई है। वो सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और कुछ हद तक कंपनी लॉज के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि हमारे इंडियन ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। तो वो सब चीजें एज एन एचआर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको वो पढ़ाई जाती हैं। और कुछ लोग सीएससी यानी कि कंपनी सेक्रेटरी काइंड ऑफ एक स्ट्रीम होती है, वो करके भी एचआर उसमें आ सकते हैं। तो ये सीएस करके आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में भी इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर बिना लॉस के छोटी कंपनी तो अपने लॉस खुद बनाती हैं 90%, और 10% वो गवर्नमेंट लॉस के हिसाब से चलती हैं। लेकिन बड़ी कंपनी जैसे पीएसयू वगैरह होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं,
1: जी जी
0: वहां
1: जी
0: पे सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। तो वहां पर भी वहां पर कंपनी के लॉ जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं उस सेक्टर पे, उसकी नॉलेज होना भी बड़ी जरूरी होती है। तो जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको इन चीजों की समझ आने लग जाती है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरह का।
1: बिल्कुल, काफी अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एचआर में किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं इसके बारे में काफी डीप और अच्छी नॉलेज आप सभी को मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो वो नोट करके रखे और किस तरह की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स में अगर काम करना है तो ह्यूमन वैल्यूज को भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है कि आप अगर वैल्यू अपने आप को देंगे और सामने वालों को देंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो चाहे कोई भी बंदा आपके पास आता है, अगर आप जॉब पे हैं और आपको रिक्रूटमेंट के लिए रखा गया है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं लेके आपके पास आता है। तो सभी को पूरा करना भी मुश्किल है, लेकिन सभी के साथ एक अच्छी जो बातचीत है वो आप जारी कर सकते हैं। इससे आप जो है उनके दिल में जगह बना पाएंगे और उन्हें एक मोटिवेशन देके अगर हम लोग सब काम निपटा लेते हैं तो वो सारी चीजें जो है आसान हो जाती हैं। तो आपके शब्दों का भी तालमेल जो है बहुत काम करता है। जैसे अभी अमृत जी ने बताया कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी कम्युनिकेटर बनिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए, तो ये आपके करियर के लिए बहुत, इवन ह्यूमन रिसोर्स को छोड़िए अन्य और कहीं भी जगह भी आप जाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बूस्टर का काम करेगा। तो आइए, वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, अभी एक और ब्रेक ले लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अमृत कौर पाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और आप एचआर में अपनी सेवा दे रहे हैं एज ए मैनेजर। और निश्चित तौर पे आप बहुत समय से हैं तो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा आपके पास जानकारी है। जैसे आपने शुरू में भी बताया था कि इसमें दो अलग अलग कैटेगरी होती है, एक कोर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है और एक रिक्रूटमेंट वाली बात होती है। और इसमें जैसे कि अंदर में भी कई लोगों को जो है अपग्रेड करने के लिए भी काम होता है। जैसे कोई बंदा अच्छा एक्सेल करता है और अच्छी चीज़ें करता है तो उसको अपग्रेड करके दूसरी डिपार्टमेंट में भी हमें प्रमोशन के लिए भेजना पड़ता है, तो इस तरह के भी काम होते हैं। और दूसरा जो आते हैं, कुछ ट्रेनिंग पार्ट भी होता है क्या इसमें? क्या जो नए आते हैं और उनको जैसे कि रिक्रूटमेंट पे रखते हैं तो कोई भी कंपनी जो है डायरेक्टली उसको मेन स्ट्रीम में नहीं डालकर उसे कुछ प्रोबेशनल पीरियड होता है या फिर अप्रेंटिस होता है और फिर उनकी ट्रेनिंग भी शायद अच्छा ही करता है, तो ऐसा कुछ है क्या, वो थोड़ा सा बताइए।
2: जी बिल्कुल। एक तो हम इस टीम में, जैसे मैंने बताया कि हम एजुकेशन के बेस पे कोर एचआर में आते हैं। कोर एचआर में आपका जितना बैकएंड का काम होता है और कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट से मेरा मतलब है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ एज एन एचआर, उसी कंपनी की जो इंटरनल हायरिंग होती है उसमें काम करती हूँ। तो इसके लिए आपको बेसिक एजुकेशन होनी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी पहले से ही बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ वो सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब चीजें काम आती हैं, डिग्रीज काम आती हैं। लेकिन इसका एक और भी पहलू है जिसको हम कहते हैं कोर रिक्रूटमेंट या स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे विप्रो। विप्रो काफी बड़ी कंपनी है, तो ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि ये अपनी का इंटरनल एचआर डिपार्टमेंट होते हुए भी इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग होती है, अब स्टाफिंग से भी दो तरह की स्टाफिंग होती है। एक होती है फुल टाइम, आप कंपनी में ज्वाइन किए और आपको एक फुल सैलरी मिलती है, और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग जिसमें ये होता है कि आपको हर घंटे का काम करने के बेस पे किया जाता है, करते वो भी पूरा काम है 5 दिन हफ्ते के, लेकिन वो उसको कंपनी के जैसे पर्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में हमारा क्या कहना चाहिए, एक वर्ड होता है जिसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स जिसमें पीएफ वगैरह कटता है, तो वो सब नहीं होता, लेकिन बाकी काम फुल टाइम होते हैं और आपको घंटों के हिसाब से काम दिया जाता है। इंडिया में ये चीज इतनी पॉपुलर अभी नहीं है, बट हो रही है खासतौर पर टेक्नोलॉजी फील्ड में, जो आईटी के लोग हैं जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें ये होता है। और ये चीजें विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां, एचसीएल, विप्रो या कुछ भी लगा लीजिए, ये लोग इंटरनली नहीं करते, ये इसको आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स से मेरा मतलब है कि बाहर कोई कंपनी है जो, जिसको वो कहते हैं कि हमारी ये टेम्परेरी नीड है, 6 महीने के लिए एक बंदा चाहिए, 10 महीने के लिए चाहिए, 2 साल के लिए एक बंदा चाहिए, लेकिन हम उसे अपने पेरोल पे नहीं रखेंगे। तो ये जो होती है इसको हम कंटिंजेंट स्टाफिंग कहते हैं, और ये 99% आउटसोर्स होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि उसे कल्चरल फिट की बात इतनी नहीं आती जितनी की टेक्निकल स्किल्स की बात आती है। तो उनकी टेक्निकल स्किल्स को कैसे गेज करते हैं, कैसे उनसे बात की जाती है कैंडिडेट से, और कैसे उनकी हायरिंग होती है, ये जो पोर्शन है कंटिंजेंट स्टाफिंग का खासतौर पर, ये ज्यादातर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और ये भी एचआर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खास तौर पर इसको आउटसोर्स कर देती है, क्योंकि उनका जितना मर्जी बड़ा एचआर डिपार्टमेंट हो वो इसको अकेले हैंडल नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी बात आपने बता दिया कि किस तरह से ये चीजें मैनेज होती है, इसके बारे में आपने बताया। अच्छा, एचआर में जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे ही लेकिन आपको जिनसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता हो या ऐसा लगता हो, एचआर का एक सुंदर एग्जाम्पल अगर किसी से सीखा जाए तो वो ये है या ये कंपनी से मिलता है, ऐसा कुछ है?
2: कंपनी से तो मैं क्योंकि
1: बिल्कुल
2: देखिए
1: बिल्कुल
2: प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि हर कोई मैं थोड़ा सा नेगेटिव पोर्शन आपको बताने लगी हूँ कि हर कोई एम्प्लॉई है तो वो अपनी जॉब बचाते हैं,
1: बिल्कुल
2: ठीक है,
1: बिल्कुल
2: तो वो उसी ढंग से काम करेंगे। लेकिन हाँ, जो मेरी मोटिवेशन है, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, तो वहां से मुझे जो पीपल मैनेजमेंट है उसकी बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, क्योंकि हमें सिर्फ लोगों की तारीफें नहीं करनी होती, हमें उन्हें समझाना भी होता है, उनसे काम भी करवाना होता है, और कभी कभी उनको बैड न्यूज भी देनी होती है। बैड न्यूज से मेरा मतलब है कि उनका अप्रेजल नहीं होगा, बैड न्यूज से मतलब है कि किसी से झगड़ा हुआ है तो वो गलत है, या वर्स्ट केस सिनेरियो कि उनको निकालना भी है।
1: बिल्कुल
2: लेकिन
1: बिल्कुल
2: अब जर्नी किसी की अगर कंपनी में खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्थलेस है, या उनसे गलत ढंग से बात की जाए, या उनकी बात को हम नहीं मान रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ही सभ्यता से इन बातों को बताना पड़ता है। किसी को बैड न्यूज क्रैक करना ये भी एक कला है। तो मुझे ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से ये चीजें सीखने को मिली है, तो वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि पीपल स्किल्स ये मैंने वहां से बहुत सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं
1: बिल्कुल
2: किस
1: बिल्कुल
2: तरह से हैंडल करना है। कभी आपको भी गलत न्यूज मिल सकती है, आपने उसको कैसे हैंडल करना है,
1: हाँ
2: और लोगों को गलत न्यूज देनी है तो वो भी कैसे हैंडल करना है बिना एग्रेसिव हुए, यानी कि
1: बिल्कुल
2: सभ्यता
1: बिल्कुल
2: से।
1: बिल्कुल अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और मैं जाते जाते चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक मोटिवेशन या फिर एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: तो एक चीज जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लोगों की नजरों में हो सकता है वो बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन उसी विशेषता के ऊपर काम अगर आप करते हैं, उसी में एक्सेल करते हैं, यानी कि उसी को आप बढ़ाते जाते हैं, तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से सिर उठा के चल सकते हैं। और जिंदगी में कभी भी समस्या को अपनी स्थिति से ऊपर मत जाने दीजिए। समस्याएं तो आती ही रहेंगी, और एचआर डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि समस्याएं कोई दिन ऐसा जा ही नहीं सकता, या मैं कहूँगी कोई घंटा ऐसा नहीं जा सकता जब समस्या ना सामने आती हो, चाहे हम घर में रहें चाहे किसी कंपनी में रहें। तो समस्याएं हमेशा आएंगी, उनको हैंडल करना सीखना पड़ता है, तो वो जरूर सीखिए, और अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत कीजिए, जो मर्जी हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। और चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज अमृतपाल कौर को हमने सुना, कैसे हम अपना जो है करियर ह्यूमन रिसोर्स में बना सकते हैं, इसकी पूरी बेसिक जानकारी भी आपको दी, और उनका कैसे जुड़ना हुआ वो भी उन्होंने बताया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको एक दो बातें जरूर याद रखना है। ह्यूमन रिसोर्स एक अच्छा डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आप, हर कंपनी में ये एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। बाकी ऑफिस व जो वर्क है तो वो तो सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें आजकल जो है रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसके ज़रिए वो सारी चीज़ें सेट हो जाती है, लेकिन फिर भी हर चीज़ को बारीकी से आपको देखना होता है। और जितना अच्छे से आप काम करेंगे, जितना अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे, और वर्कर्स हो या ऑफिसर्स हो, सबके साथ आपका जो है कनेक्टिविटी बन जाता है। तो आज कंपनी में आप रहते ज़रूर हो, लेकिन कंपनी के सारे लोगों से आपका कनेक्टिविटी बना रहता है, तो इसीलिए आपका जिम्मेवारी भी बनता है और आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, ये भी आपका नीड है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, और फिर एक बार अमृत पाल कौर को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव को और करियर इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए और अपना करियर को अच्छा फ्रेम कीजिए, अपना और देश का नाम रोशन कीजिए, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं MP बजोड़ से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: 5th।
0: और उसके बाद युग। युग आप बताओ।
2: मैं सूरत ओराछा से आया हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत ओराछा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9th में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: 2nd।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं MP से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
8: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
9: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना, तो आप संगीत सीखने लगे?
9: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखी है नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
9: मैंने देखी थी एक बार।
0: देखी थी? तो कोई सपना आया आपको?
9: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
9: जग गए?
0: नींद से ही जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं। हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे, वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
5: मैं डॉक्टर बनूंगी।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
5: दीदी, मरीजों का इलाज।
0: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
6: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। करोगे?
8: हाँ।
0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
10: टीचर।
0: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
10: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो बड़े होके, क्या बनोगे?
11: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा। पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है?
9: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
9: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
9: आधा गिटार है, थोड़ा सा दो कड़ी।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष, आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
3: बड़ा होकर CID बनना चाहते
0: हो? CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है मैं बताओ तो?
3: वो देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
0: अच्छा, तो आप क्या करोगे CID बनके?
3: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी ना किसी की सेवा होती है। और ईश्वरी, आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
0: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा, और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं। ईश्वरी, आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं। अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं? कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी?
12: हाँ।
0: क्या सोचते हो बता?
12: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
4: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
5: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या?
6: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
3: किसी को लगता है पर हमें से नहीं
0: लगता। आप में से किसी को भी नहीं लगता?
5: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
5: दी हमको भी यही लगता है
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
5: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे। और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करके ना खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे तो?
4: घुमाऊंगी।
0: तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें याद रखना है ना। अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। और पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग?
9: बड़ा सा घर बनाऊंगा उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, अरे वाह। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना। तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
6: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होकर उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे
5: दीदी? हम
0: आप भी सेवा करोगे। और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है बताओ? फैमिली में कौन कौन है घर पे?
5: मम्मी पापा दादी दादाजी चाची।
0: अरे वाह, आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
5: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
5: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना। और आप बताओ ये?
9: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं
0: इसलिए वो फेवरेट।
9: कैसियो मंगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
9: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा तो उनसे
9: वो,
0: बात
9: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं
0: दादी दादा। अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: मम्मी पापा दादा दादी।
0: और सबसे अच्छा
5: दीदी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
5: मम्मी
0: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
4: दीदी, अग्रजा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
4: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
4: तो मुझे मैं कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
0: अच्छा, और मुस्कान?
6: मेरी फैमिली में मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
6: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा मेरी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
6: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तब भी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
9: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, और आप बताओ?
4: दीदी हमको भी
9: वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
3: कभी कभी होती है।
0: होते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
9: एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
0: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारते हो मुस्कान? क्या करते हो आप? ऐसे शरारत करते हो? बताओ। ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हैं मुस्कान बताओ?
6: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? आयुक बोलो।
9: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
9: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो।
9: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
9: हमारे घर पे तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
9: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वरी, आप कभी गुस्सा होते?
4: नहीं।
0: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहते हैं सब मानते हो?
4: हाँ।
3: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा होता
3: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते? हाँ। हो अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
3: टीवी के लिए मेरी दो बहनें हैं, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते? हाँ। हो और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
3: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
0: अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
4: दीदी मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती तो हम झगड़ते। तो दीदी फिर कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते।
0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
3: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
9: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे करके रहने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
9: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
9: कोई बना रहा होगा, पर मैं तो कह रहा हूँ उसे।
0: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
9: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबके होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हम
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी उनको धक्का देती हूं, फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं।
0: अच्छा, और धक्का दे दो तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ,
1: कभी झगड़ा हो जाता है?
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए।
0: बातचीत करते हुए झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड्स से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बताने का। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तब छुप
0: छुपने छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: उसकी भी जगह बता देते हो?
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी हमारे साथ भी।
0: क्या होता है?
4: दीदी कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है उसके बाद क्या करते हो?
4: कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और यू?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मेरी ताकतवर सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
1: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
1: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
1: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
1: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
1: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी झूठ नहीं बोलते, ले जाते हैं।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता है उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
7: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो?
7: पीछे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
7: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग करना।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो। स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
7: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
7: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
7: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।

0: पायल आप
1: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता है।
0: डांस में बहुत मजा आता है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
1: दीदी सारे गाने पे करते हैं, बहुत सारे गाने आते।
0: सारे बहुत सारे, मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
1: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
2: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता
1: है? दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत इंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को, कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
3: हाँ
0: बताओ।
3: बार एक योगा में कॉम्पिटिशिपेट किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता है तो मजा आता ही है।
3: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
3: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना। हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा अब ये बताओ, आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा, या फ्रेंड्स के साथ, या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
1: नहीं।
0: नहीं?
1: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
1: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
4: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
4: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए।
0: करेला? अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
4: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते
4: हैं। रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
1: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
5: नहीं लगता।
0: और आपको?
6: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
7: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। बाय बाय बच्चों।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जैसा अन्न वैसा मन,

0: तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हुआ भी ऐसा ही। निराशा की काली बदरिया उमड़ घुमड़ कर बरसी तो, लेकिन उसी में आशा की किरण फूट पड़ी और

घुस भर दिया अयो, घुस भर दिया मेरी चाहत में।

बन के गुलगुले जल के बुलबुले, बन के गुलगुले जल के बुलबुले, यार चुलबुले सुन रे पगले, बोले बार बार बोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग, धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग, धोले धोले तू

सोडा साबन रीठा पानी मीठा मीठा इनके उनके कपड़े धोकर सबको बनाते छैला। हमने पाप छिपाए धब्बे सबके मिटाए हमसे सारी दुनिया उजली हमी को समझे मैला। हर बन के बुलबुले दल के बुलबुले याद चुलबुले सुन रे पगले ढोले तू आज अपने

रेशम हो या खादी तब तक लादे लादी सुबह का मैला आंचल धोकर किरणों पर फैलाए। दुनिया का हम कच्चा अपना लोहा सच्चा घेर के धुंधली शाम पे लोहा शाम को भी चमकाए। बन के गुलगुले गल के बुलबुले चार चुलबुले सुन रे पगले डोले तू आज अपने दिल